0: मात्र विषय अध्यास, विषय का जो अध्यास है इसको तो क्या बोलते हैं, तकार बोलते हैं। तकार हट गया तो ऐसे संसार का अध्यास हुआ, किसमें मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा कर लिया, अध्यास कर लिया। तो अध्यास हट गया तो अधिष्ठान का ज्ञान, अध्यास कैसे हटेगा, अधिष्ठान के ज्ञान से। तो अधिष्ठान के ज्ञान जब हो जाएगा तो अध्यास हट जाएगा, अध्यास तो वस्तु की बात हो जाएगा। याद रखना एक बात, आपको ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद भी संसार उड़ गया होगा, जल करके भस्म हो गया होगा, ऐसा नहीं समझना, समझे कि नहीं। अभी जब ऐसा होता है, आज तक कोई ज्ञानी नहीं हुआ क्या, सुखदेव जी महाराज हो गए, अष्टावक्र हो गए, सनक आदि ऋषि हो गए, नारद जी हो गए, ध्रुव हो गए, इतना बड़े बड़े भक्त हो गए, फिर संसार का जैसे का तैसा चल रहा है। तो उनके सामने संसार था कि नहीं था, तो संसार फिर नाश कहाँ हुआ। तो नाश का मतलब होता है बाध होना, याद रखना। संसार ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाता है, बाध का मतलब होता है मिथ्यात्व का निश्चय होता है, बाध का मतलब मिथ्यात्व का निश्चय होगा। जैसे आने बात स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि है ना, तो स्फटिक मणि को तुमने जो लालिमा लाल देखा था, तो जब आपको किसी ने बता दिया नायम रक्त स्फटिका अयम श्वेत स्फटिका, अरे ये लाल स्फटिक नहीं है, सफेद स्फटिक है, तो आपने पूछा तो सफेद होता लाल क्यों दिखता है, बोले लाल दिखता है इसके पास में लाल फूल पड़ा हुआ, जपा कुसुम पड़ा हुआ है, इसके रक्तिमा से ये तो रक्तिमा इसमें आरोपित है, आरोपित माने अध्यस्त है, आरोपित है। तो कैसे उसने दिखा दिया, तो बाद में उसको एक ज्ञान हुआ नायम रक्त स्फटिका तो अपितु श्वेत स्फटिका, श्वेत स्फटिक है। तो श्वेत स्फटिक जब समझ रहा उस समय भी वो लाल दिखेगा या नहीं देखेगा, तो बात क्या हुआ, मिथ्या क्या हुआ, लालिमा की बाध हो गया, स्फटिक में लालिमा की बाध हो गया। ऐसे महापुरुष जो है, महात्मा लोग जो है, ज्ञानी ध्यानी योगी भक्त लोग जो जगत को देखता है, किस रूप में देखता है, जगत दिखेगा जैसा का वैसा रहेगा, जगत चलेगा। जगत को तुम बाध कर सकते हो, बाध माने मिथ्यात्व का निश्चय कर सकते हो, क्यों, जगत को तुमने नहीं बनाया, जगत परमात्मा की माया का कार्य है। जगत क्या चीज है, माया का कार्य है, माया नहीं है, माया का कार्य है। देखो माया नहीं है क्यों कहा मैंने, जैसे जादूगर का खेल देखते हो कि नहीं, तो जादूगर का जादू देखते हो कि खेल देखते हो, जादूगर का खेल देखते हो, जादू नहीं देखते हो, जादूगर को भी देखो, जादू का खेल भी देखो, पर जादू नहीं देखते हो। ऐसे परमेश्वर का साक्षात्कार करोगे, भगवान को भी देखोगे, आत्मा का भी ज्ञान होगा और जगत भी देखोगे, परंतु जिसके द्वारा जगत बनाया गया वो नहीं देखोगे, वो देखोगे माया दिखता है। तो माया है कैसे मालूम पड़ता है, कार्यानुमेया सन्न भी असन्न भी उभयात्मिका नो, सांगा भी अनंगा भी उभयात्मिका नो, भिन्ना भी अभिन्ना भी उभयात्मिका नो, महाद्भुत अनिर्वसनीय रूपा, ये अनिर्वसनीय स्वरूप है। अनिबाग इस शक्ति का साक्षात्कार ऋषियों ने किया था, ख्याल है कि नहीं, इसी में आया था पहले, ते ध्यान दोगा अनुगता अवश्य देवात्मा शक्तिम सगुणैर निगुडाम, वो ऋषियों ने ध्यान योग के द्वारा परमात्मा की अपूर्व अनिर्वचनीय शक्ति का साक्षात्कार किया। देवस्य आत्मनः ईश्वरस्य शक्ति ही आत्मशक्ति ईश्वर की शक्ति ही वो शक्ति का साक्षात्कार किया था। जिस शक्ति के द्वारा अनिर्वचनीय शक्ति के द्वारा परमात्मा ने ये जगत को बनाया, ये विचित्र जगत को बनाया ना किसके द्वारा बनाया, हाँ ये गीता में भी भगवान ने बतलाया क्या है ना, प्रकृति श्रीयते सहसराधरम हेतु न आना कौंतिया जगत विपरी वर्तते है। ये जगत जो बदलता रहता है क्यों बदलता है, माया जो है ना ये कैसी है, बदलने वाली है। सर्वे भावा क्षण परिणामिन रीति की शक्ति एकमात्र चैतन्य शक्ति, हाँ एकमात्र चैतन्य शक्ति के सिवा सब परिवर्तनीय है। क्यों, माया परिवर्तनीय है, बदलती है, माया की स्थिति एक सा नहीं होती है, एक ही स्थिति कल परमात्मा का है और सब के सब बदलने वाली है। क्यों, माया परिवर्तनीय है, माया बदलने वाली है, इसीलिए माया का कार्य भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ होता है।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. Shaivam.org in Anvanda Neyargale, Ningal Ketka Virumbudhu Shiva Keerthanaigal. Paadal Swathi Thirunal Iyatriya Shankara Srigiri. Ragam Hamsandhi. பாடியவர் ஸ்மிருதி ஸ்ரீதர். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஹ.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmanand Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Kartam Rishi Devahuti ne kaha ki aise jhopdi mein aur apne hi guzara hona kitna mushkil ho raha hai aur bacche honge to phir kaise rahenge aur kya hai tumhare paas sadhan? Kuch bhi nahi hai sadhan. Kartam Rishi ne kaha ki tum kyun chinta karti ho? इन सब की चिंता तुम मत करो. तो कहा वो बिंदु सरोवर में जाओ, नहा के आ जाओ. तुम जब तक नहा के आओ बाकी तैयारी हम करते हैं. देवभूति नहाने के लिए चली गई. जाते समय अकेले गई थी, वही एक फटा हुआ कपड़ा था, कोई नया कपड़े कुछ नहीं थे, अकेले थी. जैसे वह सरोवर में उन्होंने डुबकी लगाया, भागवत के प्रसंग आप लोगों ने कई बार सुना हुआ था, ये सुना रहा हूं. जैसे सरोवर में डुबकी लगाई तो वहां अनेक अप्सराएं खड़ी हो गई, दास दासियां खड़े हो गए, उनकी सेवा करने के लग रही है, जय जयकार कर रही हैं, और सब हाथ में कोई अंगराग लेकर खड़ा है, कोई वस्त्र लेकर खड़ा है, कोई आभूषण लेकर खड़ा है. देवहूति को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या हुआ है. कहीं जल के अंदर कोई प्रेत तो छुपकर नहीं बैठा है और वो मुझे इस प्रकार से अपने प्रेत शक्ति के द्वारा सम्मोहित कर तो नहीं रहा है. क्या मैं वही मनु महाराज की पुत्री हूं? क्या मैं वही कर्दम ऋषि की पत्नी हूं? यदि मैं वास्तव में कर्दम ऋषि की पत्नी हूं तो मेरे पति कहां हैं? ये मुझे कोई प्रेत, कोई भूत, कोई प्रेत मुझे छल तो नहीं रहा है. उनके मन में ये शंका हो गई. तो कर्दम ऋषि वहीं खड़े हैं, ये तो चिंता न कर, किसी भूत प्रेत ने इसको तुझे छला नहीं है. लेकिन ये कहां से, ये क्या है? बोले तू चिंता, ये सब मेरी योग शक्ति है, ये मेरे संकल्प से ये सब तैयार हुआ है. ये कपड़ा, ये गहने, ये आभूषण, ये अंगराग, ये दास दासियां, सबके सब ये योग सिद्धि है. मैं तेरा पति यही हूं, तू बिल्कुल चिंता न कर, कोई भूत प्रेतों ने ठगा नहीं है, छला नहीं है तुम्हें. तो बाहर निकली और दिव्य आभूषणों से, अलंकारों से युक्त होकर देवहूति बाहर निकली. जैसे बाहर निकली तो वैसे एक विमान खड़ा है सामने, ऐसा दिव्य विमान देवहूति ने कभी नहीं देखा था. कर्दम ऋषि ने कहा कि चढ़ो विमान के ऊपर, अंदर चढ़ जाओ. देवहूति चढ़ गई और कर्दम ऋषि भी उस विमान में चढ़े. उसके बाद वह विमान इच्छा के अनुसार, कर्दम ऋषि संकल्प करते हैं इच्छा के अनुसार, वह विमान अपने आप गतिशील हो रहा है. कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, विदाउट वीजा अमेरिका चला गया विमान, यूरोप चला गया, लंदन चला गया, पता नहीं कहां कहां चला गया वो विमान. और उस विमान के अंदर सारा का सारा दिव्याति दिव्य एक चक्रवर्ती सम्राट के भोग के सामान वहां विद्यमान है. अनेक कमरे हैं, अनेक दास दासियां हैं, जो संकल्प करो वो उपस्थित हो रहा है. किसी चीज की, कोई चीज की कमी नहीं है. उस विमान में विचरण करते करते 100 वर्ष बीत गए. ये प्रातिभाषिक नहीं है, ये बताने जा रहे हैं. 100 वर्ष बीत गए और उस 100 वर्ष में 9 कन्याएं पैदा हो गई देवहूति के. घूमकर फिर आ गए। कर्दम ऋषि ने संकल्प किया, बढ़िया महल तैयार हो गया पृथ्वी लोक में, कोई चीज की कमी नहीं। उसके बाद कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी अब तुम्हारी इच्छा हो गई, मां बन गई हो, अब हम जाते हैं तपस्या करने। बोले नहीं, अपने पहले प्रतिज्ञा में कहा था कि पुत्र होने के बाद मैं जाऊंगा, ये सब पुत्रियां हुई हैं, पुत्र नहीं हुआ है। एक दार्शनिक पक्ष है ये जितनी भी पुत्रियां हैं ये अनेक शक्तियां हैं, और ये शक्ति तभी सफल हो सकते हैं, फलीभूत हो सकते हैं जब शिवस्वरूप पुत्र पैदा हो जाए। तो वृत्तियां और मन, जैसे एक मन होता है अनेक वृत्तियां होती हैं, मन के बिना वृत्तियों का कोई प्रयोजन नहीं, और वृत्ति के बिना मन अकेला शून्य में चला जाएगा। ये सब सांदर्भिक हैं, दार्शनिक प्रसंग हैं। इसी को प्रकृति और पुरुष, सांख्य ये अर्थ करता है। अनेक भेद वाली प्रकृति है और भेद रहित एक पुरुष है। पुरुष के प्रतीक ही कपिल भगवान है और प्रकृति के प्रतीक ही नव कन्याएं हैं। विद्वानों ने इस तरह व्याख्या की है। तो ये कन्या तो हो गए लेकिन एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। आपने कहा है शब्द उच्चारण किया कि बेटा होने के बाद मैं तपस्या करने जाऊंगा, पुत्र तो हुआ ही नहीं है, ये कन्याएं हैं, ये तो शादी होगा, ये लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और तुम तपस्या करने चले जाओगे, मैं किसके आश्रय में रहूं? कहा भी है कन्या को जब तक शादी नहीं होती है तब तक मां बाप के आश्रय में रहना चाहिए, शादी हो जाने के बाद पति के आश्रय में रहना चाहिए, बच्चे हो जाने के बाद बेटे के आश्रय में रहना चाहिए। ये हमारी नीति वाक्य था लेकिन आगे हम नहीं कहेंगे, आज के जमाने में वो कथनीय नहीं है। और आगे कहा है न स्त्रीम स्वतंत्र मरहती, किसी भी अवस्था में स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, पहले बाप मां के अधीन में रहना चाहिए, बाद में शादी के बाद पति के अधीन में रहना चाहिए, और बच्चे हो जाने के बाद फिर अपने बेटे के अधीन में रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, ये हमारे नीति वाक्य था। तो ये तीसरे अंश को आज छोड़ देना आप लोग, नहीं तो फिर झगड़ा करने लग जाओगे। ये आत्मानंद गिरी भी स्त्री विरोध है, महिला विरोधी है लगता है, आप लोग कहने लग जाओगे, इसीलिए उसको छोड़ देना, नीति यही है। देवहूति इस बात को जानती थी, पहले मैं पिता के अधीन में थी, अब आपके अधीन में हूं, और कन्याएं शादी होकर चली जाएंगी, आप तपस्या करने चले जाओगे, मैं किसके आश्रय में रहूं? तो इसलिए एक बेटा तो होनी चाहिए। तो कपिल भगवान ने, मन कर्दम ऋषि ने कहा कि वो भी इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तब प्रार्थना की गई कि भगवान को आना था, उस निमित्त से भगवान जी आए, कपिल भगवान आए। तो कर्दम ऋषि ने तुरंत घर छोड़ दिया, कहा कि अब तुम इसके आश्रय में रहो, ये कोई साधारण बालक नहीं है, तुम्हें ज्ञान का उपदेश करके इस संसार भव सागर से निकालने वाला यही होगा, तुम चिंता नहीं करना। तो कर्दम ऋषि तपस्या में चले गए। बाद में कपिल भगवान ने जैसे माता देवहूति को जो उपदेश किया, पूरा सांख्य शास्त्र तो वहां खड़ा हो गया, सहेश्वर सांख्यवादी तृतीय स्कंद भागवत का भरा पड़ा है, कपिल गीता, जिस कपिल गीता के श्रवण के माध्यम से देवहूति का कल्याण हो गया, मुक्त हुई देवहूति। ये भागवत के प्रसंग में क्यों उठाया मैंने, क्योंकि महायोगी व जैसे एक समर्थ योगी बिना उपादान कारण के, बिना सहकारी कारण के योग संकल्प से जो कुछ निर्माण करते हैं वह पूरा का पूरा केवल प्रातिभाषिक मात्र न होकर 100% शत प्रतिशत व्यावहारिक होता है। कर्दम ऋषि को घर बनाने के लिए किसी मिस्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी। कर्दम ऋषि को घर बनाने के लिए किसी सीमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी, लकड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ी, सुथार मिस्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी। कर्दम ऋषि को वो दिव्य घर बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता नहीं, कील की आवश्यकता नहीं, हथौड़ी की आवश्यकता नहीं, रेती पत्थर पानी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अकेले थे, संकल्प मात्र से घर बना दिया। वो घर कोई इंद्रजाल का घर जैसा नहीं है कि केवल देखने के लिए हो जाए। देवहूति ने अपना जीवन उस घर में व्यतीत किया, इतना दिव्य व्यवहारिक घर था। इसके अलावा और भी बहुत से उदाहरण हैं। विश्वामित्र ने अपने चेले के लिए स्वतंत्र स्वर्ग का निर्माण कर दिया, जिसका नाम त्रिशंकु हुआ बाद में। विश्वामित्र की इतनी सेवा की कि तब प्रसन्न हो गया। विश्वामित्र प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा तू क्या चाहता है बोल। तो उसने कहा कि गुरुदेव, यूं तो स्वर्ग जाने के लिए बहुत बड़े यज्ञों का विधान है वेद में, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, ज्योतिष्टोम यज्ञ के द्वारा स्वर्ग जाया जा सकता है। वेद में अनेक विधान है, विधि है, उपाय हैं, लेकिन इन यज्ञों के द्वारा जो कुछ भी स्वर्ग जाना चाहेगा, यज्ञ करने के बाद फिर मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा। तो मेरी तो इच्छा यह है कि मुझे कोई यज्ञ भी करना ना पड़े और मरना भी ना पड़े। बिना यज्ञ के, बिना मरे ही मैं सीधा स्वर्ग जा पाऊं। आप प्रसन्न हैं तो वो व्यवस्था मिला दीजिए। तो मिलाना ठीक था, मिला नहीं था तो बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी बेटा, जाओ स्वर्ग, मेरी आज्ञा है, जाओ। गुरु की आज्ञा, विश्वामित्र की आज्ञा थी, तो वो तो चला गया स्वर्ग सशरीर। लेकिन जब देवराज को पता चला तो वहां रहने नहीं दिया, उसने घुसने ही नहीं दिया। मरे बिना तू यहां कैसे आ गया है? ना यज्ञ किया, यहां तो यज्ञ करना पड़ेगा, सौ अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा तभी आया जाता है, तो मरे बिना तू कैसे आ गया? घुसने नहीं दिया। आकर फिर रोने लगा, गुरुदेव वहां तो इंद्र ने मुझे घुसने नहीं दिया है, मेरी इच्छा है कि बिना मरे मैं स्वर्ग जाऊं। तो विश्वामित्र ने कहा कि चिंता न कर बेटा, उस स्वर्ग में तुझे इंद्र ने घुसने नहीं दिया तो मैं तेरे लिए अलग स्वर्ग बना देता हूं। बस संकल्प किया, अलग स्वर्ग बना दिया और जा, वो चला गया स्वर्ग में, बैठा उस नया निर्मित, विश्वामित्र के द्वारा निर्मित स्वर्ग। ये कोई साधन सामग्री से निर्माण किया हुआ स्वर्ग नहीं था, और वास्तव में देव निर्मित या ईश्वर निर्मित जो स्वर्ग है, जहां इंद्र राजा बनकर बैठा है, उससे किसी चीज में कमी नहीं था। विश्वामित्र निर्मित स्वर्ग में कोई चीज की कमी नहीं, बड़ा आनंद का अनुभव कर रहा था। और किसी ने जाकर देवराज इंद्र को कह दिया कि अरे क्या है, तू सत्ता शासन करता है, तेरे बराबर में दूसरा स्वर्ग निर्माण कर दिया विश्वामित्र ने और इंद्र बनकर बैठ गया दूसरा, और हम देवता तेरे कहना का मानेंगे, उसके कहना माने, क्योंकि स्वर्ग में जो सिंहासन है उसमें जो बैठेगा उसका मानना पड़े। यहां एक स्वर्ग की जगह दो स्वर्ग हो गए, एक इंद्र की जगह दो इंद्र हो गए, तो अब हम तेरे कहना मानेंगे, उनका कहना माने, कौन सही है? तो देवराज जो इंद्र था उसने कहा कि ये सही है, हमारा कहना मानो। उसने कहा कि तुम हमारा कहना, ये सही है, ये तब बड़ा असमंजस हो गया। तो इस दुविधा को हटाने के लिए इंद्र ने विश्वामित्र निर्मित उस स्वर्ग में आक्रमण किया, पूरे दल बल के सहित आक्रमण किया और उस स्वर्ग को अपने कब्जे में लिया और विश्वामित्र के उस चेले को वहां से फेंक दिया नीचे। अब वो व्यक्ति नीचे आते हुए कहने लगा जोर जोर से विश्वामित्र, गुरुदेव कि आपने जो नया स्वर्ग बनाकर दिया था, यहां से तो मुझे धकेल दिया गया, लखेट दिया गया, भगा दिया गया, ये इंद्र ने आक्रमण कर लिया, मुझे नीचे गिरा दिया, मैं क्या करूं। विश्वामित्र ने कहा कि बेटा तू वहीं रहो, मत आना नीचे, मेरी बेइज्जती होगी। गुरु को भी अपनी इज्जत की बहुत ख्याल रखनी पड़ती है, चेला बनाना बहुत आसान होता है, चेला बनाना तो बहुत आसान है, पुत्रेषण शिष्येषणा, है ना? आप लोगों में पुत्रेषणा का एक दोष है, वही आपको परेशान करता है, और कभी कभी हम लोगों में ये शिष्येषणा का एक विकार इतना परेशान करता है। ऐषणा जिसको भी छुएगा वो परेशान तो करेगा ही, यदि कोई सन्यासी कोई महात्मा शिष्येषणा लेकर बैठा हुआ है तो वो कोई सुखी तो नहीं हो पाएगा, ऐषणा ही दुख का कारण है, वेदांत का रहस्य है। और इधर विश्वामित्र ने कहा कि बेटा तुम नीचे नहीं आना, नहीं तो यहां तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और उधर स्वर्ग में इंद्र प्रवेश करने नहीं देता और इधर मर्तलोक में विश्वामित्र प्रवेश करने नहीं देते, नहीं तो वशिष्ठ के सामने नाक कट जाएगी विश्वामित्र की। है देखो मैं राजा क्षत्रिय होकर भी तपस्या करके मैं संकल्प से ब्रह्म ऋषि हो गया, ब्रह्म ऋषि होने के कारण मैंने स्वतंत्र स्वर्ग निर्माण कर दिया, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो कहते हैं आज तक वो त्रिशंकु, उसका नाम तब जाकर त्रिशंकु हुआ, वो त्रिशंकु। और शायद ये त्रिशंकु हरिश्चंद्र का ही बेटा था, शायद उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं के वंशज है ये। तो इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा था कि महायोगी कोई सिद्ध योगी अपने योग साधना से योग सिद्धि से बिना उपादान कारण बिना सहकारी कारण के कार्य को उत्पन्न कर देता है और वो पूरा का पूरा व्यावहारिक होता है। व्यावहारिक क्या, पारमार्थिक भी हो जाता है, स्वर्ग बन गया कि नहीं पारमार्थिक। यदि वो प्रातिभाषिक मात्र होता तो इंद्र को क्या परेशानी होती, इंद्र को कोई परेशानी ना होता, व्यावहारिक हो गया, पारमार्थिक हो गया, इसीलिए इंद्र को वो स्वर्ग को भी कब्जा करना पड़ा। अब एक साधारण योग साधना से उस परमात्मा की उस ईश्वर की थोड़ी सी शक्ति का संचार हो गया, इतनी मात्र से वह क्षमता आती है तो उस परमात्मा में फिर सृष्टि करने की क्षमता नहीं है, ये कल्पना तुम कैसे कर रहे हो। इच्छा ज्ञान क्रिया पूर्वा यस्मात् सर्वा प्रवृत्तयः सर्वेपि जन्तवस्तस्मात् ईश्वरा इति निश्चिताः। हम तो यहां तक कहेंगे कि जितने भी जंतु जीव हैं इन सभी में इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति तीनों शक्ति दिख रही है, इसका मतलब ये तीनों शक्ति ईश्वर से ही आया हुआ है और उसी के शक्ति को प्राप्त करके जीवात्मा भी अपने क्षमता अनुसार कर्म करता है। इतना ही अलग है कि इसमें जो शक्ति है तीन शक्ति वह तमोगुण के द्वारा अभिभूत हुआ हुआ होने के कारण ये शक्ति अपने फूल फॉर्म में नहीं है, अल्प में रह गया। यही साधना में लग जाए और योग साधना करेगा तो यही शक्ति उस ईश्वरीय शक्ति के साथ एक होकर यह पूरा का पूरा ईश्वर के रूप में परिणत होता है। किसी ने पूछा बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज का जो दृष्टांत दिया था उस दृष्टांत में व्यक्ति दोष जो था उसको निवारण करने के लिए योगी का दृष्टांत दिया। विश्वामित्रादय पूर्वे परिपक्व समादया उपादानो उपकरण प्रयोजन विवर्जिता स्वच्छया स्वसृजु स्वर्गम सर्वभोग उपबृंहिता। समस्त सुभोग से युक्त हुआ हुआ स्वर्ग का निर्माण उन्होंने किया। इसी तरह ईश्वर ने अपनी इच्छा शक्ति से सारे भोगों से युक्त हुआ हुआ यह विश्व ईश्वर ने निर्माण किया है। ये व्यावहारिक है। ईश्वरो अनंत शक्ति स्वतंत्रो अन्यान अपेक्षत स्वेच्छा मात्रेण सकलम सृजत्यवति हन्ति च। ईश्वर अपनी शक्ति मात्र से बिना किन्हीं साधनों से वह उत्पन्न करता है, पालन करता है और अंत में संहार करता है। न कारकाणां व्यापारात् कर्ता स्याद् नित्य ईश्वरः नापि प्रमाण व्यापारात् ज्ञाता सौ स्वप्रकाशक। सर्वशक्तिमान ईश्वर को कार्य करने के लिए, किसी को उत्पन्न करने के लिए कारकों की, साधनों की अपेक्षा रखे बिना वह सर्वकर्ता बनता है और करणों की अपेक्षा रखे बिना और प्रमाण की अपेक्षा भी रखे बिना वह सर्वज्ञ भी होता है। हमको अल्प जानने के लिए भी करणों की आवश्यकता पड़ती है, ईश्वर को सर्वज्ञ होने के लिए करणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमको एक फूल देखने के लिए भी आंख की आवश्यकता पड़ती है, हमको एक लिखे हुए अक्षर को पढ़ने के लिए भी आंख की आवश्यकता पड़ती है, यही साधन करण। फिर भी हम अल्पज्ञ के अल्पज्ञ ही रह जाते साधन के होते हुए भी, और उसके पास न इंद्रियां हैं न करण है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना। हमको घर जाने के लिए पांव की आवश्यकता पड़ती है, उसको पांव की आवश्यकता नहीं पड़ती है घर जाने के लिए, कहीं जाना कहीं आना हो करणों की आवश्यकता, बिना भी वह सब जगह पहुंचता है, करणों के बिना भी वह सबको जानता है, करणों के बिना भी वह सब कुछ कर सकता है, इसीलिए तो उसको ईश्वर कहा गया है। नापि प्रमाण व्यापारान ज्ञाता सो प्रकाशक ज्ञातृत्व

0: तारिता यया कर्तुम न वा कर्तुम अन्यता कर्तुम अर्हति स्वतंत्राम ईश्वरेच्छाम के परिच्छित्तम इहे सति। उस ईश्वर की शक्ति को दुनिया में और कोई किसी में वो क्षमता नहीं कि उसके शक्ति को सीमित करे। आज विज्ञान तो लगता है कि कर रहे हैं कि उसके शक्ति को सीमित कर ले, में उसमें लगे हुए हैं। हमने कल भी संकेत किया है कि विज्ञान को चुनौती है कि उस परमात्मा की अनंत शक्ति को विज्ञान किसी भी हालत में सीमित नहीं कर सकता है, क्योंकि विज्ञान जो सीमित करने जाएगा वो करने की शक्ति भी तो परमात्मा की ही है। श्रुतिश्च सो कामेति चया सृष्टिमीषितु तस्मात् आत्मना आकाशात् संभूत इति च ब्रवीत। श्रुति ने भी यही कहा है, श्रुति प्रमाण है कि ईश्वर ने अपने इच्छा से सबसे पहले आकाश बनाया, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न रस औषधि, अन्न रसों से ये सारे के सारे जीव पुरुष बनाया हुआ है। तो इसके लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, संकल्प किया सारा सृष्टि उत्पन्न हो गया। ये श्रुति, छांदोग्य श्रुति भी यही बात प्रमाणित करती है, इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। निमित्ते चेत भवेद अस्य जगत परमेश्वर विकारित्वं विनाशित्वं भवेदस्य कुलालवत्। यदि उस परमेश्वर को भी निमित्त कारण, उपादान कारण, सहकारी कारण, सब साधन सामग्री के द्वारा तब उसके बाद वह कर्ता बनता है मानेंगे, तो वह भी कुम्हार की तरह वह भी विकारी हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा, तो वह फिर सर्वशक्तिमत्ता उसकी खंडित हो जाएगी। बुद्ध्यादयो नवगुणा नित्या एवेश्वरस्य चेत नित्यच्यावान जगत सृष्टो प्रवर्तते व सर्वदा प्रवृत्ति उपरामा भावात् संसारो नैव नश्यति मोक्षोपदेशो व्यर्थ स्यात् आगमोऽपि निरर्थकः। यदि सारे प्रवृत्ति निवृत्ति आदि सब कुछ उसी में नित्य हैं, तो फिर ईश्वर हमेशा प्रवृत्ति करता ही रहेगा। नित्य प्रवृत्ति करने की क्षमता वाला होने के कारण या तो वह नित्य प्रवृत्ति करता रहेगा, नित्य निवृत्ति वाला मानते तो फिर वो कभी भी प्रवृत्ति नहीं करेगा। फिर जगत स्वयं या तो फिर कभी भी उच्छिन्न नहीं होगा या जगत कभी भी अस्तित्व में नहीं आएगा। ये पूर्व पक्ष का ये प्रश्न यदि है तो उसको खंडन करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, तस्मात् माया विलासोयम् जगत कर्तृत्वमीषितो बंध मोक्षोपदेशादि बेवरा व्यवहारोपी मायया। माया दो प्रकार की सत्ता वाले वस्तुओं को उत्पन्न करती है, एक व्यावहारिक दृष्टि से व्यावहारिक सत्ता वाला, पारमार्थिक दृष्टि से प्रातिभाषिक सत्ता वाला। जगत को उत्पन्न करने के कारण यह नित्य जगत की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से जगत अनित्य है, पारमार्थिक दृष्टि से ईश्वर में जगत सृष्टित्व भी वह अनित्य है। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Naminandi Adihal Nayanar, presented by Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे नमिनंदी अडिगल संत की कहानी। सचिन के चोलमंडल में गांव था इंटेरू, जहां एक ब्राह्मण परिवार में नमिनंदी का जन्म हुआ। तिरुवारूर की दूरी वहां से अधिक नहीं है। एक बार तिरुवारूर के प्रसिद्ध मंदिर में त्यागराज शिव के दर्शन करके जब भक्त नमिनंदी बाहर आए तो उनके मन में भगवान के प्रति दीप सेवा करने की इच्छा जागृत हुई। निकट के एक घर में जाकर उन्होंने दीप जलाने के लिए तेल मांगा। उस घर में किसी अन्य धर्म के लोग रहते थे। व्यंग्य पूर्वक कहा, अरे तुम तो ब्राह्मण हो, कहते हैं ब्राह्मण के हाथ में ही अग्नि होती है, ऐसे में दीप जलाने की आवश्यकता क्यों है? फिर भी यदि दिया जलाना चाहो तो पानी लेकर जला डालो ना। नमिनंदी से यह तीखा व्यंग्य सहन नहीं हुआ। फिर त्यागराज के मंदिर में गए और भगवान से शिकायत की। तत्काल एक स्वर पूजा, पानी से दिया जलाओ। भक्त नमिनंदी तिरुवारूर मंदिर की पुष्करणी कमलालय से घड़ा भर कर पानी लाए और दिया जलाया। आश्चर्य, सभी दीपक पूर्ण प्रकाश देकर जलने लगे। इसके बाद तो वे इसी सेवा में रम रहते थे। एक दिन उत्सव मूर्ति की शोभा यात्रा पास के मननी गांव की ओर जा रही थी। नमिनंदी ने विधि प्रकार एक स्थान पर खड़े होकर वह मूर्ति के दर्शन किए। जब वे घर लौटे तो उनके मन में विचार आया, सभी जातियों के लोग शोभा यात्रा में थे, कहीं छूट तो नहीं लगी। जब वे घर पहुंचकर अंदर नहीं गए तो पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया, भगवान की शोभा यात्रा में दक्षिणार्थ खड़ा था, सबके बीच रहने से अपवित्र हो गया हूँ, यहाँ स्नान करने के पश्चात ही घर में प्रवेश करूंगा। दर्शन के समय मन पवित्र था, जाति आदि का विचार कहाँ से आता। स्नान करके जब वो घर में गए तो उस दिन जब वो रात के को सो रहे थे तो उनके सपने में भगवान आए और उनसे बोले, बस क्या तुम नहीं जानते कि तिरुवारूर के सभी निवासी हमारे गण हैं, ऐसे में छुआछूत का विचार क्यों? स्वप्न टूटते ही नमिनंदी ने अपनी भूल के लिए शिव से क्षमा मांगी और पहले से भी अधिक लगन से सेवा कार्य करने लगी। उनके यहाँ एक बार तिरुनावकरसर संत का अतिथिय करने का सौभाग्य भी मिला। तिरुनावकरसर ने उन्हें सेवक मणि की उपाधि से विभूषित किया। इस कथा से हमें सामाजिक परिस्थितियों के कारण विद्यमान ऊंच नीच के भाव का पता चलता है। मध्ययुग में छुआछूत की भावना ने एक रोग के रूप में हमारे समाज में प्रवेश करके जड़ में जमा ली। नमिनंदी जब तक श्रद्धा भाव से प्रभु से प्रभु की शोभा यात्रा देख रहे थे उस समय आनंद मग्न थे। यहाँ कौन है इस बात की उन्हें जरा भी ध्यान नहीं आई। मार्ग में और घर के एकांत में यह प्रश्न उठा। सामाजिक प्रथाओं परंपराओं को स्वीकार करके चलने वाले नमिनंदी को यदि कोई और सच्चाई समझाता तो वे उसके बाद को तुरंत नहीं मानते। जब भगवान ने स्वयं सपने में आकर कहा, तिरुवारूर के सभी निवासी हमारे गण हैं, सभी उनको समझ में आया कि सभी ने पशुपात कालामुख महावती पौध जैन आदि सभी मातवलंबी सम्मिलित हैं। अतः स्पष्ट है कि शैव धर्म सब धर्मों और जातियों को लेकर मानव मात्र को सम्मान देकर चलने में विश्वास करता है।
4: ओम नमः शिवाय।
5: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
4: Om Namah Shivaya.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க் யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: धनुषा मुसलेन चास्म भीर्वा. अब तुम ही बताओ ईसा, तुम क्या धनुष बाण से प्रसन्न होगे तो मैं धनुष बाण उठाऊं? बोलो. जब नमस्कार करके खुश नहीं होते हो, स्तुति करके खुश नहीं होते हो, विधिवत पूजा करके तुम प्रसन्न नहीं होते हो, ध्यान करने पर भी प्रसन्न नहीं होते हो, नतुष्ट, अब तुम ही बताओ. बदा धनुषा, अब तुम्हें खुश करने के लिए क्या आप धनुष बाण उठाऊं, प्रहार करूं दो चार धनुष बाण, तब खुश होगे? क्या खतरनाक है? धनुष तो फिर भी ठीक था. आगे का क्या मुसल उठाऊं? दो चार मुसल से प्रहार करूं तो तब खुश होगे? और यह पत्थर उठाऊं, मारूं दो चार पत्थर तुम्हारी गोबड़ी में, हैं? मैं गलत नहीं बोल रहा हूं. शंकराचार्य जी ठीक सीधे कह दिया, धमकी दे दिया है. लोग कहते हैं ना, लातों का भूत बातों से नहीं मानता. कहावत है कि नहीं, सुना है कि नहीं तुम लोगों ने? लातों का भूत बातों से नहीं मानता है. जब बातों से नहीं मानता है तो उसको लात का ही प्रयोग करना पड़ता है. और शास्त्र ने जिन जिन साधनों को प्रयोग करने के लिए कहा, हमने एक के बाद एक, एक के बाद एक उन सारे साधनों का प्रयोग किया, फिर भी आप प्रसन्न नहीं होते हो, नतुष्ट, तो अब फिर हम तो धनुषा मुसलेन च अश्मभिर, अश्म माने पत्थर. बदा, तुम ही बताओ अब किससे प्रसन्न होगे? पत्थरों से प्रसन्न होगे, मुसल से प्रसन्न होगे, कि धनुष बाण से प्रसन्न होगे? ते प्रीतिकरम, और जिससे तुम प्रसन्न होगे मैं उसी का प्रयोग करूंगा. तुम ही बताओ, मुसल से होना हो तो मुसल प्रयोग करो. है बदा, ते प्रीति करो तथा करो. इसीलिए मुझे तो आप प्रसन्न हो जाओ इतनी चाहिए. ये श्लोक बड़ा खतरनाक है वो. क्योंकि शंकराचार्य जी ये जानते हैं, ऐसे ऐसे भक्त भी हुए हैं वो. भगवान को किसी ने तो धनुष बाण प्रहार किया शिव को, तो शिव बहुत प्रसन्न हो गए. अर्जुन से भगवान शिव प्रसन्न हुए किसके द्वारा? बोलो. अर्जुन से भगवान शिव प्रसन्न हुए, अब अर्जुन को गांडीव धनुष दिया प्रसन्न होकर. कब? जब अर्जुन ने मारी धनुष बाण उठाकर, तीर लगे दो चार बाण. बड़ा विचित्र प्रसंग है वो। गांडीव धनुष प्राप्ति के लिए महाभारत युद्ध होना निश्चित था और साधारण धनुष बाण से महाभारत युद्ध विजय प्राप्त करना संभव नहीं था, विशेष करके अर्जुन के लिए। तो गांडीव धनुष शिवजी के पास था। अब वो धनुष प्राप्ति के लिए अर्जुन गया जंगल में, कैलाश के चोटी पर जंगल में बैठकर खूब तपस्या की। ये पुराण में प्रसंग है, शिवपुराण आदि में सब जगह प्रसंग आई। तो भगवान शिव ने विचार किया, ये गांडीव धनुष को प्राप्त करना तो चाहता है लेकिन इसको परिचालन करने की इसमें क्षमता है कि नहीं देखना चाहिए। तो स्वयं भगवान शिव एक सुअर का रूप धारण करके अर्जुन जहां तपस्या कर रहा था वहां चारों तरफ भ्रमण करने लग गए और शांति से भ्रमण करते तो अर्जुन को कोई आपत्ति नहीं थी। अर्जुन जहां तपस्या कर रहा था वह तूफान करने शुरू कर दिए, वो सुअर है कभी जोर जोर से हल्ला करता है, कभी सूंड से जमीन खोदते हुए मानो कि अर्जुन का आसन ही उखाड़ के फेंक रहा हो, ऐसा उद्दत करने लग गए। अति हुआ तो उस समय भगवान शिव दूसरे रूप से जंगल में ही विचरण कर रहे थे। अर्जुन का आ गया गुस्सा और उठा ली धनुष बाण और उस सुअर को मारना शुरू किया है। पुराण का प्रसंग है, लक्ष्य साधा और लक्ष्य भेदन के लिए तीर चढ़ाई धनुष में और खींचा और उसी समय शिवजी ने भी तीर छोड़ दिए और शिव का तीर और अर्जुन का तीर दोनों एक साथ उस सुअर को लग गए। समझे कि नहीं? कौन सुअर को? ईश्वर की लीला विचित्र है वो, लग गया दोनों बाण। और शिवजी तो शिकारी का रूप धारण करके वहां विचरण कर रहे थे, शिव का रूप धारण करके तो विचरण कर नहीं रहे थे, एक आदिवासी शिकारी के रूप में किरात रूप बोलते हैं उनको है? अब जैसे सुअर को लगा तो भगवान शिव किरात भेषधारी शिव दौड़ते हुए गए, कहा कि ये मेरा है, मैंने मारा है ये मेरा है। अर्जुन दौड़ता हुआ गया, नहीं मैंने मारा है ये मेरा है। अपने अपने शिकार होते हैं ना, अब दोनों का बाण लगा है, किसने मारा ये प्रतिष्ठा के विषय बन गया ना। अर्जुन कहता है मैंने मारा मेरा शिकार है, शिव कहते हैं किरात भेषधारी शिकार भेष शिकारी भेषधारी शिव कहते हैं मैंने मारा है मेरा है, तो दोनों के बीच में घमासान हो गया। कहा है कि अब दोनों लड़ाई करते हैं, जो जीतेगा उसका है जा। अर्जुन ने चुनौती दी, भगवान शिव ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूं, चलो लड़ाई करते। अब शिव और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध, शिवजी बाण मारते हैं, अर्जुन बाण मारता है, लड़ाई करते करते अर्जुन की युद्ध कौशल्यता देखकर भगवान शिव को बड़ा मन ही मन प्रसन्नता हुई, क्या बढ़िया चला मिल गया है कुशल। तब इसका तो अंत होगा नहीं यार, भगवान शिव ने कहा कि बेटा यूं तो मैं तेरे से हारने वाला नहीं हूं, यूं तो मैं तेरे से हारने वाला नहीं हूं, त्रिपुरासुर को एक सेकंड में ही तृण बना दिया, राख बना दिया, तो किस खेत की मूली है। एक बाण से त्रिपुरासुर को मार डाला तो किस खेत की मूली है भाई। लेकिन मैं तेरे युद्ध कौशल्यता को देखकर मैं प्रसन्न हूं, तो धनुष बाण के लिए तपस्या करने आया है और तेरी युद्ध कौशल के परीक्षा के लिए मैंने ये सब नाटक किया है। ये सुअर कोई और नहीं, देख ले, और ये शिकारी भील आदिवासी किरात ये कोई नहीं, मैं ही हूं। अब तुझे मेरे से धनुष बाण की आवश्यकता थी, पिनाक धनुष ने गांडीव धनुष ले, मैं खुश हूं प्रसन्न हूं ले जा। शंकराचार्य जी कहते हैं अर्जुन ने यदि दो चार बाण न मारी होती तो शिव प्रसन्न होते है? ये देख लो है? क्योंकि मैंने आपको नमस्कार किया, आप खुश नहीं हो रहे हैं, नति भीर नुति भी नमस्कार भी कर रहा हूं, स्तुति भी कर रहा हूं, पूजा विधि भीर अनेक विधियों से आपकी अर्चना भी की और ध्यान योग समाधि भी बहुत बार ध्यान भी लगाया, फिर भी न तुष्ट, फिर भी तुम प्रसन्न नहीं हुए हो। तो अब तो एक ही विकल्प रह गया है, अर्जुन ने जो किया है वही हमको भी करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा धनुष बाण और दो चार तीर का प्रहार करेंगे, तो धनुष बाण से ही तुम्हारी बुद्धि टिकाने आएगी, तब दर्शन देने आओगे अर्जुन को जैसे दिया है। क्या अब तई बदा तुम ही खाओ, शंकराचार्य जी कह रहे हैं बदा बदते प्रीतिकरम, तुम्हारे लिए जो प्रसन्नता हो जो अच्छा लगे मैं उसी का प्रयोग करूंगा, तथा करोमि। दूसरा उदाहरण मुसलेन, तुम्हारी बुद्धि जब गणेश ने एक मुसल मारी थी तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ गई थी है? अब ये प्रसंग पुराण का ही है, पुराण का ही प्रसंग था, शंकराचार्य जी इस बात को जानते थे इसलिए कह दिया। द्वारपाल के रूप में पार्वती ने गणेश को रखा था, कहा किसी को घुसना नहीं देना कह दिया, किसी को घुसना नहीं देना। अब गणेश जी मुसल लेकर बैठे थे दरवाजे में, अब शिवजी समझते हैं कि हमारे घर हमको जाने में क्या आपत्ति है भाई, उनको पता ही नहीं था कि पार्वती चौकीदार रखती है, जब गए थे तो कोई था नहीं है? इस बीच में गणेश पैदा हुए, उनको रख दिया उन्होंने चौकीदार है? किसी को घुसने नहीं देना, बोल दिया। तो शिवजी जब कहीं घूम फिर कर आए, सीधे अपने घर प्रवेश करने लगे तो गणेश ने अपना बड़ा पेट अड़ा दिया दरवाजे में, समझे कि नहीं? कौन हो तो तुम तो अनुमति बिना जा नहीं सकते हो, रोक दिया। हाँ, बोले तो कौन है? बोले मैं इस घर का मालिक हूं। अरे हमको पता नहीं तुम मालिक हो कि नौकर हो, हम तो ये जानते हैं कि हम जब पैदा हुए बाप को तो देखा नहीं था, मां को देखा है कि नहीं? बोलो, गणेश बाप से पैदा हुए कि मां से पैदा हुए है? हमने तो देखा नहीं बाप को, हमारे को तो हमारी मां ने हमको पैदा किया है, और मां ने कहा दरवाजे में किसी को घुसना नहीं देना, हम उसके आज्ञा पालक हैं, अंदर मां है, हम तुम्हें जाना नहीं देंगे। शिवजी ने कहा कि मेरे ही दरवाजे में खड़े होकर मेरे घर में मुझे रोकता है, ये कहां से आ गया? क्योंकि शिवजी ने भी देखा नहीं था उसको पहले, घमासान हो गया, लड़ाई हो गई घमासान। करते करते भगवान गणेश ने शिवजी को मारा मुसल दाम से, शिवजी को बड़ा भारी चोट लगा। ए तो बड़ा खतरनाक है, देखने में तो छोटा है लेकिन है तो खतरनाक। अंत में उसका गर्दन ही काट दिया शिवजी ने। खूब मुसल खाने के बाद तब जाकर गर्दन काटा। तो अंदर गए तो पार्वती आराम से मस्त बैठी थी। शिवजी ने कहा कि ये क्या बवाल खड़ा कर रखा है दरवाजे में, किस पर रखा था? बोले वो तो हमारा बेटा है, कहां से आ गया हमारा बेटा? वो तो हमको अपने घर घुसने नहीं दिया उसने। बोले अच्छा, उसने घुसने नहीं दिया तुम्हें? हां बेचारा, हमने कहा था किसी को आने नहीं देना। ये लेव जी, वो तो आज्ञाकारी था, हमने कहा था, फिर कैसे आए? पार्वती ने पूछा फिर कैसे आए? बोले मारा उसको तब जाकर वो मर गया, तब घुस पाए, नहीं तो वो हमको अंदर घुसने नहीं आए, मर गया, सर्वस्व खत्म हो गया भाई। अब विलाप करने लगी, वो तो अपना पुत्र था, तुमने क्यों मारा उसको? बोले हमको रोका, घमासान युक्त हुई, तुम देखती नहीं हो उसने कितनी मुसल मारी है, हमारे हाथ सूज गए, पांव सूज गए, कमर सूज गया है, बड़ा भारी युद्धा था वो। जो हो बेटा हमारा है, उसको तुम जिंदा करो, पुनर्जीवन दो, तब तो ठीक होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ है। भगवान शिव ने अपने गणों को कहा जाओ, जो मिले पहले उसी को सिर काट कर लाओ, मैं उसको जिंदा करता हूं। तो शिवगण भागे आज्ञा से, तो एक बड़ा भारी हाथी मस्त सिर हिला के बैठा हुआ था, तो उसी का सिर काटा लाया और शिवजी को दिया, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कर दी। है? आज वैज्ञानिक लोग बड़ा रिसर्च कर रहे हैं ना कि संभव है कि नहीं सिर काट के फेंकने के बाद दूसरा सिर जोड़े करना संभव है कि नहीं, वैज्ञानिक लोग प्रयोग कर रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण, बहुत से अंगों का प्रत्यारोपण में सफलता मिली है, लेकिन सिर काट के फेंका और दूसरा सिर जोड़ दिया है, तभी कुछ दिन 10-12 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में आया था, अमेरिका का कोई वैज्ञानिक लोगों ने मेंढक में वो रिसर्च करके देखा, एक मेंढक का सिर काट के

और दूसरे बंदर का सिर काटकर जोड़कर फिर सर्जरी करें कि देखते हैं वह बंदर जिंदा होता है कि नहीं, सफलता मिलती है कि नहीं। वो प्रयोगी तो है, रिसर्च है, हजार प्रकार के अनुसंधान कर रहे हैं और ये अनुसंधान में लाखों करोड़ों प्राणी मर रहे हैं और वो नव जब तक नहीं करोगे तब तक ये है ना। तो अनुसंधान में तो होता ही है, रिसर्च में तो होता ही है, प्रयोग ही है। दया और करुणा करोगे तो वो कोई रिसर्च ही नहीं हो पाएगा, सफलता मिलती कि नहीं। दवाई बनाया फिर उसको पहले मेंढक में प्रयोग करो, फिर बिल्ली में करो, फिर कुत्ते में करो, फिर बंदर में करो, फिर मनुष्य में करो, रिएक्शन होते जाते, कितने मनुष्य मरते जाते हैं, मरे फिर उसका रिसर्च करो, फिर उसमें परिवर्तन करो, फिर प्रयोग करो। तो जब तक वह बिल्कुल ठीक ठाक न हो तब तक बाहर न, उस मेडिसिन को बाहर प्रयोग में नहीं लाते, मरते। तो भगवान शिव सृष्टि के आदि के पहले सर्जन है, इसलिए संस्कृत भाषा में भी सर्जन ही बोलते हो। अंग्रेजी में काट चीर फाड़ करने वाला सर्जन होता है, है? संस्कृत में भगवान शिव सर्जन है। सर्जन माने सृष्टिकर्ता अर्थ में वहां सर्जन है, लेकिन अंग्रेजी भाषा से भी वो सर्जन ही है। फर्स्ट सर्जन है, गणेश का सिर काटा और हाथी का सिर जोड़ दिया, बस सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर है वो। एक लोमड़ी टाइप का होता है जीव, लोमड़ी करके लोमड़ी नहीं है, चूहा करके चूहा भी नहीं होता, चूहा के शेप का होता है, थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा लंबा होता है, वो सर्पभक्षी है। क्या बोलते हैं? मंगूसा। वो सर्पभक्षी है, बड़ा सर्जन है वो। सर्प देखता है तो उसको फट से पकड़ लेता है और बीच का भाग पूरा खा जाता है, मुख अलग पूंछ अलग, फिर बीज का भाग खा के दो तीन टुकड़ा बनाता है उसको, मुख का भाग अलग, पूंछ का भाग अलग, बीज का भाग खाने के बाद फिर एक वनस्पति उसको पहचान है, उस वनस्पति को लाकर फिर सिर और पूंछ को जोड़ देता है। सर्प जिंदा, हाँ तुमको विश्वास नहीं है, क्या विश्वास है, सर्प करता है वो। सर्प झुमका त्यू होता है, हाँ? जोड़ देगा सर्प, और सर्प जिंदा है, वह ज्यों कहते हूं चला जाएगा। इस शास्त्र में प्रसिद्ध है, प्रमाण है। तो भगवान शिव ने भी यही किया है। प्रसंग क्या चल रहा है? भगवान शिव जब गणेश के द्वारा मुसल का प्रहार हुआ तब जाकर शिव प्रसन्न हुए, तो शंकराचार्य जी कहते हैं अब तुम्हें प्रसन्न करने के लिए एक ही उपाय बचा है, अब मुझे भी मुसल उठाना ही पड़ेगा। ले गुस्सा का साक्षात दर्शन दिया, खुश हो गए और फिर लाके सिर जोड़ दिया। गुस्से होते तो मर जा, हमको क्या लेना देना, जीवन दान देते। बाद में देखो ये रहस्य बता रहे हैं, शिवजी ने कहा कि देवी ये हाथी का मुख इसको जोड़ दिया गया ये अकारण नहीं है, ये जो घटना घटी है अकारण नहीं घटा है, इसका मूल आधार क्या है पता लगाना चाहिए। तब जब वेद का अनुसंधान किया शिवजी ने पार्वती के सामने, पुराण में प्रसिद्ध है, जब वेद का अनुसंधान किया तो गणेश को गजाननम करके संबोधन, जो गणाध्यक्ष होता है वो गजानन होना चाहिए। अब इसको मैं गणाध्यक्ष बना दूंगा, गणपति बना दूंगा, और जो गणपति होगा वो गजानन होगा, नरानन कहां से होगा,

0: नारायण कहीं गणाध्यक्ष हो सकता है, गणपति हो सकता है, गणों का स्वामी। तुम अपने पुत्र को गण का पति, सर्वश्रेष्ठ गणाध्यक्ष भी चाहती हो और हाथी का सिर न हो ये चाहती हो, ये तो संभव ही नहीं है। वेद में पहले लिखा हुआ है, इसलिए हमने वेद में लिखे हुए अनुसार ये घटना घट गई है। नहीं तो गधा मिल गया होता तो क्या करते हो? तुम्हारा बेटा गणाध्यक्ष हो पाता है? हमने जब कहा कि सिर लेके आओ तो हाथी का ही सिर मिला उनको, मेरे गणों को गधे का मिलता, घोड़े का मिलता। जब विष्णु को सिर जोड़ने की समय आई तो घोड़े का मिल गया है। कौन था आएगी? विष्णु है। हयग्रीव नामक राक्षस को मारने के लिए हयग्रीव ने वरदान मांगी थी, मेरी मृत्यु मेरे से ही हो, हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव से हो, वरदान मांगी। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दी। बोलो, अब तो वो सोचने लगा कि मैं अपने को मारता नहीं हूं, फिर मुझे और दुनिया कौन मारेगा? तो भगवान तो आराम से सो रहे थे विष्णु। देवी भागवत का प्रसंग है, देवी भागवत का ये प्रसंग है।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Narayan, Narayan, Narayan, Narayan. Hum sab स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। स्वाध्याय भी स्वामी जी करा रहे हैं और आपने बहुत बड़ी कृपा की कि आज और कल के लिए आपने प्रवचन देना स्वीकार किया। स्वामी जी, गीता जी में जो भगवान ने तप का महत्व बताया है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से, प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण।

0: उपस्थित सज्जनों, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में 70वें अध्याय में भगवान ने तप का स्वरूप बताया है। यद्यपि और भी बातें बताई है, किंतु उन बातों में से हम लोग केवल तप के बारे में विचार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने 6 श्लोकों में तप का स्वरूप बताया है। 70वें अध्याय के 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक देखिए, तप क्या है, तप किसको कहते हैं। प्रायः हम लोग यही समझते हैं शरीर को सुखा देना ही मानो तप है, भूखे रहना ही तप है, एक एक महीना तप तक भूखे रहो, जितना ज्यादा शरीर को कष्ट दिया जाए, लोग समझते हैं कि वो बहुत बड़ा तप है। देखिए, ये सब आध्यात्मिक बातें हैं। हम लोग इन बातों को अपने ढंग से प्रत्यक्ष रूप से तर्क से बुद्धि से परस्पर के विवाद से क्या कार्य है क्या अकार्य है उन बातों का निर्णय नहीं कर सकते हैं। जो बात प्रत्यक्ष दृष्ट है उसमें तो हम कुछ कह सकते हैं कि ये चीज ऐसी है वैसी है, किंतु जिसका फल अदृष्ट है, पारलौकिक है, यहां तक कि मोक्ष है, तो इस प्रकार के फल में जो कारण साधन है वो साधन भी अलौकिक ही है। इसलिए प्राय हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये जो आत्मा का ज्ञान है वो क्या बिना कष्ट नहीं हो सकता, क्या कुछ किए बिना बैठे बैठे नहीं हो सकता, क्या एयर कंडीशन में आराम से बैठे बैठे इसकी चर्चा करते हुए आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए। क्यों ये लोग हिमालय में जाते, आखिर क्या आवश्यकता है। हमारे मन में यही प्रश्न उठते रहते हैं। कहते हैं चाहे जैसे कर्म करो वो पाप हो या पुण्य हो इससे मतलब नहीं है, क्यों उससे सुख क्यों नहीं मिलेगा। कई एक लोग जो है पाप कर्म करते हैं फिर भी सुखी होते हैं, दिखता तो ऐसा ही है, पाप करने वाले दुखी है, पुण्य कर्म करने वाले पाप कर्म करने वाले सुखी है और पुण्य कर्म करने वाले दुखी है। इससे तो लगता है कि यदि सुखी होना है तो सबसे ज्यादा मार्ग अच्छा है शॉर्टकट, है कि नहीं। और शॉर्टकट मार्ग जो है वो पाप के दरवाजे से ही प्रवेश किया जा सकता है, वो बहुत बड़ा दरवाजा है, खुला ही रहता है, वहां कभी कोई पहरेदार नहीं रहता है। चाहे जब उसमें प्रवेश कर लो। पुण्य के मार्ग में तो बहुत बड़ी बात है, पहरेदार भी है, चौकीदार है, 24 घंटा कोई न कोई रोकेंगे टोकेंगे। लेकिन पाप कर्म के लिए है कुछ ऐसा? इसलिए हम लोग जो कर्म करते हैं, कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। आखिर क्यों ऐसा होता है? जब हम लोग कर्म तो कर ही रहे तो क्यों हमसे पाप कर्म में ज्यादा प्रवृत्ति होती है, पुण्य कर्म में कम प्रवृत्ति होती है? ऐसा आखिर क्यों होता है? हम लोग कर्म करते हैं और यहां तक कि कर्म किए बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते। भगवान ने तो कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। घंटे दो घंटे दिन भर की बात क्या करे, या 60 साल के बाद की बात क्या करे? 58 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं ना, तो वो बात नहीं है कि 60 साल के बाद आदमी व्यक्ति खाली हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, निष्कर्मी हो जाता है, अकर्ता हो जाता है, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं एक क्षण भर भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। कर्म को तो हम छोड़ नहीं सकते, होना ही है। तब करना क्या है? करना यह है कि अब हम करेंगे तो सही कुछ न कुछ, तो कुछ ऐसा ही करें जिससे हमको सुख की प्राप्ति होवे। तो कैसे जाने कि किस प्रकार के कर्म से सुख की प्राप्ति होती है या किस प्रकार के कर्म करने से दुख की प्राप्ति होती है, इसका निर्णय कैसे करें? कोई न कोई निर्णायक तो होना ही चाहिए। बाहर से क्रिया तो सब एक जैसी लगती है, चाहे पुण्य क्रिया हो चाहे पाप क्रिया हो, उन दोनों प्रकार की क्रियाओं में कारण जो 5 कारण भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं, वो 5ों कारण तो दोनों में बराबर है। 18वें अध्याय में भगवान ने बताया कि कोई भी कर्म करो तो उसमें 5 कारण होते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, पंचेते तस्य हेतवः। ये भगवान ने बताया। देखो, कर्म करने के लिए, वो कर्म चाहे पाप हो या पुण्य हो, पहले क्या चाहिए? अधिष्ठान चाहिए। अधिष्ठान का क्या अर्थ है? शरीर। शरीर नहीं होगा तो कर्म होगा? नहीं होगा। शरीर चाहिए। फिर कर्ता चाहिए, चित जड़ ग्रंथि अहंकार, कर्तृत्व बुद्धि होनी चाहिए कि नहीं, कि मेरे को करना। अधिष्ठानम तथा कर्ता, मैं कर रहा हूं, देह के साथ अहम बुद्धि, देह में मैं बुद्धि होगी तब जीव अपने को कर्ता मानता है। तो वो एक तो हो गया शरीर, दूसरा कारण है, दूसरा हेतु है कर्ता भाव, तीसरा कारण भगवान ने बताया करणम च पृथक विधम। पृथक वेदम माने जो भिन्न भिन्न करण, हमारे पास कितने करण है? 10 करण है। कितने? 10। करणम का अर्थ है इंद्रियादि, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। देखिए, कुछ भी करना है, कर्म करना है, चाहे वो पाप कर्म या पुण्य कर्म, वो समझ के चले, वो करना है तो यही चक्षुरादि इंद्रिया काम करती है, यही कर्मेंद्रियादि काम करती है। पाप करने में भी यही ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया काम करती है, पुण्य कर्म करने में भी यही ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, अलग तो कोई साधन नहीं है ना। तो ये हो गए करण और विविधाश्च पृथक चेष्टा, पृथक विध विध प्रकार की चेष्टा, यानी कि क्रिया समझ लीजिए। क्रिया किससे होती है? हमारा शरीर जो वो चल रहा है फिर रहा है उसमें कारण क्या? प्राण। प्राण नहीं होते तो हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी कुछ नहीं कर सकते, कर्म इंद्रियों के द्वारा भी कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए कर्म इंद्रिय के द्वारा कुछ उठाना है तो क्या चाहिए? कहते हैं ना दम चाहिए, तुम में दम नहीं है, नहीं कहते? अभी मैं कर लेता हूं, वो दम से उठाता है। दम क्या? वही तो प्राण। दम कोई प्राण से जुदा थोड़ा? इसलिए आप उठाते हैं तो पहले श्वास भरते हैं, कुंभक करते हैं और तभी कुछ चीज उठा पाएंगे। ये तो उठाने की या चलने की क्रिया में ये प्रतीति हो जाती है, किंतु चक्षुरादि इंद्रिया के द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, तो उन सब क्रिया में प्राण कारण होता है। प्राण के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। देख लीजिए यदि निष्प्राण शरीर है तो उससे कुछ क्रिया होती है? नहीं होती है। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्रिया में ये प्राण भी कारण है। विविधाश्च पृथक चेष्टा। और पांचवा भगवान ने कहा देव है। देव क्या है? देव यानी कि देवता। देखिए आप लोगों को पता है, सालों से सुन रहे हैं तो इतना तो पता ही है कि हम जो भी क्रिया करते हैं तो क्रिया के पीछे देवताओं की कृपा रहती है। यदि देख रहे हैं तो किसकी कृपा से? देखिए अभी हम लोग यहां पर बैठे हैं, अंधेरा हो जाए, ये खिड़कियां भी बंद है, पर्दे पर्दे सब बंद है और बिजली चली जाए, दिन में तो फिर भी कुछ उजाला आएगा। यदि रात का टाइम है, अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात लीजिए, उसमें बिजली चली जाए तो क्या हम, मैं तो आपको देख पाऊंगा और आप लोग मेरे को देख पाएंगे? तो क्या हमारी आंखें खराब हो गई? नहीं, आंखें तो बिल्कुल भली चंगी है, किंतु कुछ ऐसा हुआ जिससे हम देख रहे थे वो प्रकाश चला गया। ये प्रकाश क्या है? देव ही तो तेज है। प्रकाश क्या है? तेज। और हमारे यहां तेज देव को क्या नाम दिया है? अग्नि देवता, सूर्य देवता, कुछ भी कीजिए, वो सब एक ही है। यज्ञ में हवि किसको दी जाती है? अग्नि को। क्यों? हमको देखने में कारण है। इसलिए ये तो केवल आपको एक इंद्री के लिए बताया, सभी इंद्रियों में समझ सकते हैं कि हमारे संपूर्ण शरीर में हमारे इंद्रियों के जो गोलक है उन सभी गोलकों में एक एक देवता रहते हैं। देवता का मतलब ये नहीं, देवता का मतलब केवल ये नहीं कि जिसको दो चार हाथ हो, हाथ में खप्पर हो, परशु हो, कृपाण हो, तलवार हो, त्रिशूल हो। समाज में तो यही अर्थ रूढ़ हो गया हुआ, किंतु जब इस प्रकार का विचार करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि देवता का अर्थ है जो देते रहे, कभी ले नहीं। जो देने का है जिसका स्वभाव है, इसलिए भी व्यवहार में जिसका देने का ही स्वभाव है उनको क्या कहते हैं? ये तो देव व्यक्ति है, जो देता ही रहता है। उसको कोई मतलब नहीं कि मेरे को वापस दे या ना दे। जिसके पास है वो देता रहता है, तो उसको लोग कहते हैं तो देव है। तो देखिए, ये अग्नि वगैरह देवता है, वायु वगैरह वायु, जिसके द्वारा हम स्पर्श कर सकते हैं, दिशा के द्वारा हम सुन सकते हैं, वरुण देव की कृपा से हम बढ़िया बढ़िया जो है भोग चख सकते हैं। राजभोग का आस्वादन करना है तो किससे करेंगे? चक्षुरादि इंद्रिया के द्वारा ही तो, रसना इंद्रिय के द्वारा ही तो। वरुण देव की कृपा नहीं होगी तो यह नहीं होगा। तो अभिप्राय मेरा यह है कि ये कर्म के पीछे ये पांच कारण होते हैं। अधिष्ठान शरीर, कर्ता भाव, इंद्रियों की चेष्टा, प्राण की चेष्टा और ये अग्नियादि जो देव है उन देवताओं की कृपा। ये कृपा जो है बनी रहती है। भगवान ने कहा न्यायम वा विपरीतम वा, चाहे व्यक्ति न्यायम यानी कि धर्म कर्म करता है या उससे विपरीत अधर्म करता है, तब भी कारण तो ये पांचों ही है। अब ये पांचों जो है कारण तो सब दोनों प्रकार के कर्म में है ही है, लेकिन अब हमको न्यायम करना है या भगवान ने जैसे कहा विपरीतम या अधर्म, न्यायम का है धर्म, विपरीतम है अधर्म करना है, उसमें हम स्वतंत्र हैं। अब हमारा जो स्वातंत्र्य है उस स्वातंत्र्य को हम पुण्य कर्म में भी लगा सकते हैं और पाप कर्म में भी लगा सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे? हमारे वहां भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या कार्य है यानी कि क्या न्यायम है यानी क्या धर्म्यम है और क्या अकार्यम यानी कि अन्यायम है, अधर्म्यम है, पाप कर्म है। हे अर्जुन, उनका प्रत्यक्ष से जैसे मैंने पहले बता दिया कि तर्क युक्ति उपपत्ति प्रत्यक्ष या बुद्धि बल से इसको ये निश्चय नहीं किया जा सकता है। तो निश्चय किससे होगा? शास्त्र से होगा। किससे? शास्त्रम प्रमाणम। कार्य और अकार्य में प्रमाण क्या है? शास्त्र ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष से हमको लगता है कि अरे इसमें क्या क्या दिक्कत है, ये करने में अच्छा ही तो है, लेकिन शास्त्र में जिसका निषेध है तो वो पाप कर्म है। बाहर से यदि लगता है कि अरे ये तो अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरे को नहीं करना है, किंतु वो शास्त्र के द्वारा विहित भी हो सकता है। हिंसा के बारे में ले लीजिए, हिंसा के बारे में हमारे वहां बहुत सारी विचारधारा चली, यहां तक कि हिंसावादी और अहिंसावादी दोनों की बातें चली। क्या हिंस्य है क्या अहिंस्य है, उसके बारे में कई लोगों ने शास्त्र की अनदेखे करके निर्णय करना चाहा। तो जो अहिंसावादी थे उन्होंने भी शास्त्र का इनकार किया और कहने लगे कि किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किंतु अब ये कहां तक, तो उनके पास कोई हद नहीं है। जिसकी कोई हद नहीं है उसको आप बटोर नहीं सकते कि ये इतना मैंने कर लिया। और जिन्होंने ये अहिंसा या हिंसा का निश्चय वेद के द्वारा किया, वेद प्रमाण शास्त्र प्रमाण को सामने रख करके किया, तो उनके वहां तो ये हद हो गई कि ये इतनी हिंसा है और इतनी अहिंसा है। इससे व्यवहार की भी रक्षा हुई और शास्त्र प्रमाण की भी रक्षा हुई। जिन्होंने अहिंसा और हिंसा का अर्थ वेद को इनकार करते हुए अपने तर्क से किया, वहां व्यवहार की रक्षा नहीं है। और व्यवहार की रक्षा नहीं है इसलिए खुद को व्यवहार नहीं करना है, इसलिए दूसरे के कंभों के ऊपर बैठ करके वो अपना अव्यवहार्य धर्म चला रहे। किंतु जिसके कंभे पर बैठे हैं वो चल भी तो रहा है, और उनके कंभे पर बैठ करके हम कहेंगे मैं तो सिर हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ये तो भागेड़ू वृत्ति कहते हैं इसको। इसलिए अभिप्राय यह है कि क्या कार्य है क्या अकार्य है उसमें शास्त्र प्रमाण है। क्या है इसलिए उसी यही प्रसंग के बारे में कहता हूं कि कई लोग जो आजकल भगवान श्री कृष्ण को हिंसावादी कहते हैं, वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने तो देखो अर्जुन अहिंसावादी था, उनकी विचारधारा बड़ी अच्छी थी कि किसी को मारना नहीं चाहिए, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती मानो अर्जुन को इस तरह से उकसाया कि अर्जुन मारने के लिए तैयार हो गया और महाभारत का ऐसा महाभयंकर युद्ध हुआ कि कहीं एक केवल मनुष्य ही नहीं, कहीं और भी जीव जिसकी कोई गणना नहीं है इतने लोग मर गए। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बड़े हिंसावादी थे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने शास्त्र का इनकार किया वहां अहिंसा की कोई हद नहीं है। हमारे यहां ये हद है कि किसको हिंसा कहते हैं किसको अहिंसा कहते हैं। हमारे वहां ये शास्त्र के द्वारा ये कह सकते हैं, शास्त्र के द्वारा ये निश्चय है कि किसको हिंसा और किसको अहिंसा कहेंगे। और जिसके वहां निश्चय नहीं है उन लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो डॉक्टर को भी हिंसावादी कहना पड़ेगा। वो जो लड़ रहे हैं और सरहद के ऊपर जो गोली रात भर जो बंदूक ताने खड़े हुए हैं देश की रक्षा के लिए, उनको भी हिंसावादी कहना होगा। ठीक है कि नहीं? इसलिए क्या कार्य है क्या अकार्य है उसमें प्रमाण क्या है? शास्त्र। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारहसि। अर्जुन क्या कार्य और अकार्य को शास्त्र के द्वारा जान करके करना चाहिए, ऐसा नहीं जो हमको अच्छा लगे वो करो और अच्छा नहीं लगता है तो न करो, ऐसा नहीं। चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, शास्त्र में जिसको विहित रूप से कहा है तो उनका अनुष्ठान करना है, और चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे शास्त्र में जिसका निषेध है निषेध किया है तो उनको नहीं करना है। तप के बारे में लीजिए कि हम लोग तप कर रहे हैं किंतु मनमाने ढंग से कर रहे हैं या शास्त्र में जो विहित रूप से कहा है वैसे कर रहे हैं, वो ऐसा हमारे सामने ऐसा निर्णय नहीं है। इसलिए करना क्या होगा? शास्त्र विधानोक्तम तब करना चाहिए। शास्त्र क्या है? हमारे पास यदि जैसे सामान्य ढंग से कहते हैं कि हाथ वगा साधन, शास्त्र तो शास्त्र की परिभाषा करेंगे तो समय भी लग जाएगा, किंतु शास्त्र का अर्थ आप लीजिए गीता ही शास्त्र है। क्या है गीता? क्या है? शास्त्र है और उपनिषद है। गीता क्या है? उपनिषद। शास्त्र का अर्थ होता है शासनात शास्त्र, जो शासन करे उसे कहते हैं शास्त्र। पूर्वाचार्यों ने बताया, भट्टपाद जी कहते हैं प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृत केन वा पुंसाम येनोपदिश्येत तत्शास्त्रम इत्यभिधीयते। प्रवृत्ति या निवृत्ति का उपदेश करें। क्या प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थ है? यही कार्य और अकार्य, क्या कृत है क्या अकृत है वो बताए। ये शास्त्र कहता है कि ये करो ये न करो, ये करने योग्य है या ये नहीं करने योग्य है। पुरुष के लिए जो उपदिश्य बात है उसको कहते हैं शास्त्र। तो ये इस प्रकार से गीता शास्त्र है। अब यदि हम कर रहे हैं, भगवान ने तो प्रसंग से ये बताया कि शास्त्र विधान से ही कर्म करना चाहिए, तो अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन पूछने लग गया कि भगवान संसार में यावत प्राणी तो शास्त्र पढ़े हुए है नहीं, कार्य अकार्य में शास्त्र प्रमाण है ये बात निश्चित, किंतु यावत प्राणी शास्त्र तो पढ़े हुए है नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। श्रद्धा से करते जा रहे हैं। किससे? श्रद्धा से। तो श्रद्धा से कर रहे हैं कि क्या वो श्रद्धा तो है ही उसमें, तो श्रद्धा से कर रहे हैं। अब शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं किंतु श्रद्धा से कर रहे हैं, तो वो जो उनके द्वारा श्रद्धा से किया गया जो कर्म है वो कर्म उनके लिए ज्ञान का कारण बनेगा कि नहीं। कर्म के द्वारा अंतकरण शुद्धि के मार्ग से वो आत्मज्ञान का भागी होगा कि नहीं, या तो उनकी जो निष्ठा है वो सात्विक निष्ठा मानी जाएगी, राजसिक निष्ठा मानी जाएगी या तामसिक निष्ठा मानी जाएगी। भगवान बताइए किसके बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानता। हम लोग बैठे हुए हैं, क्या सब लोग शास्त्र जानते? क्या सब पढ़े हुए हैं क्या? हम क्या हम वेदाध्ययन कर रहे हैं? इस समय जो शिक्षा जो चल रही है क्या वेदाध्ययन शिक्षा है?
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 34. Thank you.

0: சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் .org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரியோபனிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: கௌன் சி அவஸ்தா மே ஹோதா ஹை தோ க்யா கஹோகே? ஜாக்ரத். யே மே ஹூம் யே அனுபவ் கப் கர்தே ஹோ? கஹா ஜாக்ரத் அவஸ்தா மே. டீக் ஹை நா? தோ அப் மே ஹூம் யே ஜோ அனுபவ் ஆப் ஜாக்ரத் அவஸ்தா மே கர்தே ஹோ தோ ஆப்கி ஜாக்ரத் க்யா ஹோகி? ஏக் அவஸ்தா ஹோகி. கிஸ்கி ஹோகி? கா ஹமாரி. கஹா யே அவஸ்தா ஹை கி ஔர் பி கோய் அவஸ்தா? கஹா ஔர் பி ஹை. கஹா ஏக் ஔர் அவஸ்தா ஹை. கஹா கௌன்? கஹா ஸ்வப்ன அவஸ்தா. கஹா ஔர்? கஹா ஏக் ஔர் ஹை. கஹா கௌன்? சுசுப்தி. கஹா ஃபிர் உஸ்ஸே ஆகே பி கோய் அவஸ்தா? கஹா ஏக் ஔர் ஹை. வோ கௌன் ஹை? தோ உஸ்கா நாம் க்யா தே தியா? துரி. யே வேதாந்த கா ஹி ரூப் ஹை. அப் ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுசுப்தி யே க்யா பத்லா தி? அவஸ்தா. ஓர் தீன் அவஸ்தாவோ கா ஹி விசேஷ ரூப் ஸே நிர்வச்சன் கியா. ஓர் சதுர்த்த கோ தோ ஜோ கஹா கயா தோ உஸ்கா நாம் யே தே தியா. வோ க்யா ஹை? துரி. துரி சப்த கா மத்லப் க்யா? துர் ஸே ஹோனே வாலி. துரி பபாய் தி துரியா. துர் க்யா ஹை? तो तुर धातु है पूर्णार्थक. तुर धातु क्या है? पूर्णार्थक. पूर्ण को बतलाने वाली है कौन? तुर धातु. उस में कोई परिवर्तन संभव नहीं. लेकिन तीनों अवस्थाओं का तो हम लोग अनुभव करते प्रत्यक्ष रूप से, अनुमान रूप से है, अनुपलब्धि रूप से ये करते हैं. लेकिन इस चतुर्थ अवस्था का हमें अनुभव नहीं होता. चतुर्थ अवस्था का अनुभव कराने के लिए ही जिन पदों का, जिन वाक्यों का निरूपण किया गया है, ऐसे वह पद और वाक्य जो है प्रमाण है. और उन पद वाक्य प्रमाण वालों से जो सिद्ध होता उसी का नाम है वेदांत. उसी का नाम क्या है? वेदांत. अब थोड़ा सा विचार और करो. जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, तो इन्हें ये नहीं कहा कि मैं जागृत हूं, मैं स्वप्न हूं, मैं सुसुप्ति हूं, ये नहीं कहते हो. कोई व्यक्ति ये कहता? लोक में भी प्रयोग जब आप करते हो तो जागृत अवस्था वाला मैं, स्वप्न अवस्था वाला मैं, सुसुप्ति अवस्था वाला मैं, स्वप्न मैंने देखा. स्वप्न क्या है तुम्हारे लिए? कहा दृश्य. देखा शब्द कहोगे तो क्या कहोगे? दृश्य ही तो बना. मैं सोया. सोने का अनुभव किसने किया? कहा मैंने. वैसे ही जागृत में व्यवस्था वाला. तो जागृत भी तुम्हारी एक अवस्था है, स्वप्न भी एक अवस्था है, और सुसुप्ति भी एक अवस्था. जागृत तुम नहीं हो, स्वप्न तुम नहीं हो, और सुसुप्ति भी तुम नहीं हो. तो क्या है? कहा ये मेरी अवस्थाएं. अवस्था कह दो, या इस प्रकार से कह दो, आज मैंने जो है पेंट शर्ट धारण किया. तो पेंट शर्ट किसका? कहा मेरा. कल जो है मैंने कुर्ते पाजामे को धारण किया. तो कुर्ता पाजामा भी तुम्हारा, कुर्ते पाजामा वाले तुम है, पैंट शर्ट वाला मैं, कुर्ते पाजामा वाला मैं है. और फिर कुछ और पहन लिया तो कहा उसके वाला मैं. अब आप विचार करो तो ये जो आपने धारण किए, वो धारण जो जो तुमने किए हैं वो तुम नहीं हो कि हो? और एक रूप से समझ लो, यहां से आपने यात्रा प्रारंभ की, और यात्रा प्रारंभ की, आप दिल्ली या हरिद्वार कहीं जाना चाहते हैं, तो जब यात्रा करते हो तो दिल्ली प्राप्त कब होती? कहने लगे यहां से चलेंगे तो ट्रेन में जाएंगे, बड़े बड़े स्टेशन पड़ेंगे, भोपाल पड़ेगा, इटारसी पड़ेगा, है मथुरा आदि पड़ेगा, ये सब पड़ेंगे। अब आप विचार करो, आप उन स्टेशनों में गए और स्टेशनों में यदि रुक गए तो यात्रा हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन यात्रा करते हो तो वो स्टेशने पड़ना भी निश्चित है, ठीक है, लेकिन वो स्टेशन को ही तुम मान लो कि यही मेरा लक्ष्य और यही मैं हूं, तो कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। तो अब आप कोई कह दे कि मैं जागृत हूं, जागृत क्या है? एक स्टेशन है, अहर्निस व्यक्ति इन्हीं से तो गुजर रहा, ये भी एक स्टेशन है और सुसुप्न भी एक स्टेशन है और सुसुप्ति भी एक स्टेशन है। लेकिन विडंबना की बात यह है, हम इन स्टेशनों से होकर के लक्ष्य तक जाना चाहते हैं, लेकिन आगे की जो स्टेशन पड़ेगी, जो लक्ष्यात्मक है, वहां तक पहुंचते नहीं, इन्हीं से वापस आ जाते। यही तो हो रहा, इन्हीं से हम वापस आ जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो चतुर्थ जो है उसकी हमें प्राप्ति नहीं हो पाती। अच्छा, और विचार करो, ये सभी जानते कि स्टेशन मैं नहीं हूं, स्टेशन के धर्म भी है, स्टेशन पर भी जो कुछ भी है, कैंटीन आदि लगे हुए हैं, कुर्सी मेजे पड़ी हुई हैं, उसका लाभ तो आप लेते हो, उनका उपयोग तो आप करते हो, लेकिन वो तुम नहीं हो। तो ये सब मैं नहीं हूं, मैं इनसे कोई अलग ही हूं, ये जानते हो, लेकिन जागृत में कभी ये विचार किया कि ये जागृत मैं नहीं हूं? ये तुम कहो कि जागृत ये तुम हो तो तुम रहते हो, लेकिन तो ये अवस्था रहनी चाहिए, लेकिन स्वप्न में ये नहीं रहती, तो क्या स्टेशन छूट जाती? नहीं, यात्रा जब करते हो तो स्टेशन छूटेगी। तो अब जब आगे की यात्रा होती है, स्वप्न में पहुंचते हो तो जागृत छूट जाती, और स्वप्न से जब आगे बढ़ते हो तो सुसुप्ति पूर्व स्टेशन पर पहुंचते हो तो स्वप्न भी छूट जाते, और सुसुप्ति से पुनः जागृत में आ जाते हो तो सुसुप्ति भी छूट, ये अवस्थाएं आती और जाती, स्टेशन बात। लेकिन हम यही नहीं समझ पाते, तब यात्री कौन है, मार्गी कौन है, मार्गन करने वाला कौन है? तो हम क्या समझते हैं, हम तो जागृत को लेकर ही समझते हैं और शरीर को लेकर के, मन स्टेशन को लेकर, क्या यही मैं हूं? इससे हटकर के हमारा विचार जा ही नहीं पाता, तो स्टेशन को ही कोई समझने लगे कि मैं ही ये हूं, और उससे कोई अभिलाषा करे कि ये जो है लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, तो क्या संभव होगा? संभव नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर जागृत जो है, जागृत का अर्थ क्या है? जागृत जो शब्द, जागृत जो पद, स्वप्न जो शब्द और स्वप्न जो पद, ऐसे ही सुसुप्ति जो शब्द, सुसुप्ति जो पद, उसका अर्थ क्या? यही तो उपनिषदों में वर्णन है। जागृत किसे कहते हैं, स्वप्न किसे कहते हैं, सुसुप्ति किसे कहते हैं, ये सब वर्णन है, और सब वर्णन ही नहीं है, उसका प्रयोग भी अहर्निश हो रहा। लेकिन फिर भी हमारा तादात्म्य कहां बैठा हुआ, कहां उसी स्टेशन में बैठा हुआ, और स्टेशन में तादात्म्य रखोगे और कहो हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो हो जाएगी? हम चाहते तो हैं त्रिविध ताप की शांति हो, लेकिन जब तक आप स्टेशन को छोड़ोगे नहीं तब तक शांति होने वाली, इसलिए शास्त्र क्या कहता, श्रुति क्या कहती, त्यागे नैके अमृतत्व मा नशु। किसके द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होगी? का त्याग के द्वारा। आपके लक्ष्य की प्राप्ति कब होगी? का स्टेशनों का त्याग करो, और त्याग नहीं करोगे तो तो प्राप्ति नहीं हो। जो आपने पकड़ रखा है तो जो इसे पकड़ा वो स्टेशन है तुम्हारी, व्यावहारिक है, लेकिन उसी को पकड़ लिया, उसी में अपना जो है, लगाव कर लिया, आसक्ति कर ली, इसी को आसक्ति बोलते हैं। तो क्या होगा? तो जो लाभ प्राप्त करना चाहते हो वो नहीं कर सको। वेद तो लाभ की बात कही अंतिम, लाभ अर्थ में ही धातु है। तो जो गीता में आप सुनते हो, यम लब्धा चा परम लाभम, है ना, उसको जो प्राप्त कर लेता है, जिसे तुरी कहते हो, क्या अवस्था कहते हो, तुरी अवस्था, और उसे जब प्राप्त कर लेता है तो यम लब्धा, उसको प्राप्त करके अपरम लाभम, फिर उससे भिन्न कोई दूसरा लाभ, और कहा अधिक, उससे अधिक कोई दूसरा लाभ वो समझता ही नहीं। और जो श्रेष्ठ लाभ समझ लेगा तो फिर वो उसी को ग्रहण करेगा, अन्य का उपयोग क्यों करेगा। तो ये संकेत कर दिया। अब जो है फिर और भी संकेत कर दिया नीचे, यस्मिन स्थितो, और यदि उसमें जो है जब उस लाभ को उसने समझ लिया, प्राप्त कर लिया, तो कहा उसमें स्थित हो जाता, और उसमें स्थित हो जाता फिर कैसा स्थित होता, तो और विशेषता बतलाई, गुरुणापि न विचाल लेती है, कहा फिर उससे उसे कोई विचलित, उससे उसे कोई हटा पाता, सीधा मतलब। और वहां प्रसंग आया कि बलि ने जब ये लाभ प्राप्त कर लिया तो गुरु ने क्या कहा, कहा तो ये कि गुरु की और प्रथम माता पिता की वाणी को मानना चाहिए, गुरु ने आदेश भी दिया, लेकिन उसने गुरु की बात को फिर माना, उस समय न गुरु रह जाता न शिष्य रहता है? और जो है भगवान को जो है जब समझ लिया, पहचान लिया, लक्ष्य पर जब पहुंच गया, पहले तो लक्ष्य को जानता नहीं था, और जब उन्होंने बतला दिया तो समझ गया, और समझ गया तो अब उनके कहने पर भी, ये भी अर्थ है, और दूसरा ये अर्थ है, गुरुणापि न विचार लेते, माने फिर उससे गुरुतर किसी भी हमको जो है लक्ष्य को दिखाया जाए लेकिन उसे वो स्वीकार नहीं करता, जैसे नचकेता आदि, एक ही उसका लक्ष्य, वही उसे ही वो सर्वश्रेष्ठ मानता है, और फिर उससे हटता नहीं, फिर विचलित तो नहीं होता, ये संकेत किया। तो अब जो है इस प्रकार से ये तुरी शब्द जो कहा, ये तुरी क्या है, तो पूर्ण का वाचक, अर्थात पूर्ण का वाचक माने उसके अंतर्गत कभी भी न्यूनाधिकता होती ही, सदा एक रस रहने वाला है, एक रूप रहने वाला, और वहां पर दूसरा कुछ और है भी नहीं। लेकिन इसका अनुभव होगा कब, तो कहने लगे तीनों का त्याग हो गया। जब तक तीनों का त्याग हम नहीं कर पाते हैं तब तक अन्य तुम कुछ त्यागो या न त्यागो, किसका त्याग कर दो, ये जो हमारी अवस्था की मान्यता है, इस मान्यता का ही हम यह त्याग कर सकें, इसको ही हमें देख सकें। अब हम सुनते तो रहते हैं, उपनिषद कहती परिच्छ लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, क्या कहा, कर्म चितान, कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा होने वाले जितने भी लोक हैं, लोक शब्द का अर्थ है वहां लोक्यते भुज्यते इति लोक, जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसको हम जानते हैं, वो क्या कहलाता है, लोक। तो जिसे हम जान रहे हैं, जो हमारा जानने का विषय है, और उस विषय का हम उपयोग कर रहे हैं, वो सब क्या है, लोक। और ये सब लोक कैसे हैं, का कर्म से होने वाले, और कर्म से होने वाले जितने भी लोक हैं वो सारे के सारे लोक कैसे हैं, का इसका परीक्षण करो, परीक्षण करो, और परीक्षण करोगे तो तब क्या अर्थ निकलेगा, तब कहोगे संसार कैसा है, का दुखालयम, लेकिन भूल जाना, हम ये समझ लेते हैं कि संसार दुखरूप है, वास्तव में संसार दुख रूप भी नहीं है और सुख रूप भी नहीं। लेकिन फिर भगवान ने क्यों कहा? भगवान की वाणी क्या सत्य नहीं? लेकिन भगवान ने क्या कहा आगे, उस पर हमारा ध्यान। क्यों दुखालय कह दिया? अशाश्वतम। भाई कोई व्यक्ति अशाश्वतम, जिसकी सत्ता है ही नहीं, और जिसकी सत्ता नहीं उसकी सत्ता को स्वीकार करेगा तो भ्रमित होकर के दुखी ही तो होगा। मृग तृष्णा के जल की चर्चा करते हो और आपने जल समझ लिया और प्यास बुझाने के लिए भाग के जाओगे तो क्या मिलेगा? प्यास तो बुझेगी नहीं, किंतु परिश्रम और हो जाएगा, उससे क्लांतता दुखी और होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही माने केवल भगवान ये नहीं कहते कि संसार दुख रूप है। संसार वास्तव में न दुख रूप है न सुख रूप है, क्योंकि संसार की सत्ता अशाश्वत है और इसलिए न वो दुख रूप है और न सुख। तो सुख रूप और दुख रूप क्या है? बड़ी विलक्षण बात कह दी। इसलिए वाल्मीकि जी ने जो रामायण में कहा, क्या सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, ये संसार में ही तो कहा सुखस्य दुखस्य न कोपि परो ददाती कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही। क्या मतलब? कोई भी हम जिसे समझते हैं सुख है, लेकिन सुख कब है? पदार्थ सुख रूप नहीं है, पदार्थ में सुख नहीं है, सुख किसमें? जब हमारी धारणा उस पदार्थ में बनती है और उस धारणा के अनुकूल पदार्थ हमको जब प्रतीत होता है तो वो हमें सुखद लगता, और हमारी जो धारणा बनी, हमारी जो मान्यता थी, उसके अनुकूल वह पदार्थ जो है प्रतीत नहीं हो पाया तो वही हमारे लिए क्या हो गया? दुख रूप। लोग कहते हैं पहले पहले बच्चे की शादी होके आती है तो सासू बड़ी प्रसन्न होती, उत्सव मनाती, लेकिन कुछ काल जब रह लेती और रहकर के सासू ने जो अपनी मान्यता बना रखी थी और यदि उसकी मान्यता की पूर्ति नहीं होती है तो क्या कहती है? कहा ये दुख रूप है, इसने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया, अब आप जाओ। सासू तो ये कहती और उसका पति कहता है कि अब हम बड़े सुखी हैं, ठीक है। तो अब विचार ये करो कि उस में सुख है कि दुख है? तो क्या कहोगे? अरे भाई हमने बढ़िया राजभोग लाए और बटवा दिया सब, और बटवा दिया, सबसे पूछा कैसा लगा तो सब क्या कहेंगे? अच्छा लगा, मीठा लगा, मतलब मीठा मूल उद्देश्य, तो मीठा की कहेंगे। ये तो कोई नहीं कहेगा कि खट्टा लगा, न ये कोई कहेगा कि नमकीन लगा। तो अब वो पदार्थ जब इतनी मिठास से युक्त है, मिठास धर्म उसके अंतर्गत है, तो सबको कैसा लगेगा? कोई भी खाए क्यों ना, सबको मीठा ही लगेगा ना। लेकिन अब यहां पर यदि उसके अंदर सुख विद्यमान है तो सारे परिवार को ये सुख मिलना चाहिए, यदि दुख विद्यमान है तो सारे परिवार को दुख मिलना चाहिए। एक कहता हमें सुखी सुख हो रहा है, दूसरा कहता हमें दुख हो रहा, तो ये क्यों? तो उस पदार्थ में सुख और दुख नहीं, पदार्थ का तो जो स्वभाव है वही सबको मिलेगा। यदि मीठा है तो मीठा लगे, अब वो बात अलग है, कहते ना गुड़मार बूटी, मने उस गुड़ की प्रतिबंध का बूटी यदि तुम्हारे जीवा में विद्यमान है, मुख में विद्यमान है, तो क्या होगा? वो मीठा नहीं लगेगा।

साथ संसार का न दुख रूप है न सुख रूप है। सुख और दुख रूप क्या है? हमारे अंतःकरण की बुद्धि ने जैसा निर्णय लिया है वही। इसीलिए कह दिया उन्होंने, कितना सुंदर शब्द कहा कि सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता, सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, किंतु कौन है? तो कहने लगी है, हमारी बुद्धि। अहं करोमि वृथा अभिमान, और इसी प्रकार से हमने जो अहंकार कर लिया, किसमें कर लिया? कहा ये नक्शा बनाती कौन है? बुद्धि। और बुद्धि जो बनाती है उसी बुद्धि के साथ अहंकार कर लिया। क्या अहंकार कर लिया? यही स्टेशन मैं हूं, जागृति ही मैं हूं। और जब ये अहंकार कर लिया तो सुखी दुखी हो गए। ऐसे स्वप्नगत में जो अहंकार होता तो स्वप्न का दुख होता। अब बताओ, स्वप्न के अंतर्गत स्वप्न एक अवस्था है, लेकिन उस अवस्था को धारण किसने किया? एक राजा ने किया। स्वप्न एक राजा देख रहा, और राजा स्वप्न जब देख रहा है तो क्या देख रहा? कि मैं फुटपाथ का व्यक्ति हो गया। अब बताओ, वह फुटपाथ का व्यक्ति यदि हो जाए, हुआ तो नहीं है, लेकिन स्वप्न देख रहा है। अब स्वप्न के अंदर यदि जागृत का भाव आ जाए तो स्वप्न उसे दुखी कर पाएगा? जागृत का भाव यदि उसके अंतर्गत आ जाए तो वो स्वप्न दुखी उसे नहीं। तो वहां भी उसने अंतःकरण एक नया निर्मित कर लिया, और उसके अनुसार ही वो दुखी हो रहा है ना। यह कोई फटीचर जो है राजा बन जाए स्वप्न तो क्या सुख का अनुभव करेगा? लेकिन करता है। तो कैसे करता? क्योंकि वहां पर हमारे अंतःकरण की वृत्ति उससे तादात्म्य को प्राप्त। किससे तादात्म्य? कहा जो मैं नहीं हूं, जो मेरी अवस्था है, जो मेरी स्टेशन है, जो मेरी यात्रा का साधन है, उस साधन से हमने क्या कर लिया? तादात्म्य। ये सब संकेत किए। अब तब फिर कैसे समझना चाहिए? तो ये वेदांत तुम्हारी समझ में कैसे आए? देखो, संसार के अंतर्गत हम कभी जो है दो की निंदा करेंगे, दो की प्रशंसा करेंगे। कभी कहेंगे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, धर्म है, इसी में चलना चाहिए। लेकिन धर्म और मोक्ष भी बगैर अर्थ काम के सिद्ध होने वाला अब जो है चारों की उपयोगिता है, लेकिन उपयोगिता जो है वो उपयोगिता अवध्यात्मक है, सर्वथा चारों की उपयोगिता नहीं, लेकिन एक सीमा तक, एक अवधि तक चारों की उपयोगिता है। तो अब जहां तक उनकी उपयोगिता है वहीं तक उनका विनियोजन होना चाहिए। इस विनियोजन की शैली को भी बतलाया गया। आप भागवत को भक्ति का ग्रंथ कहते, लेकिन भागवत केवल भक्ति का ग्रंथ नहीं, भागवत में वेदांत रहस्य भी है, भागवत के अंतर्गत भी सब कुछ दिया हुआ। क्यों? पुराण जो है ही इसके लिए। पुरा अनीति पुराणम, जो हमारी प्राचीनता को अनुप्राणित करते हैं उनका नाम है पुराण। जो हमारी प्राचीनता है तो वो पूर्व शब्द जो क्या, तो प्राचीनता जो हमारी है उस प्राचीनता को अनुप्राणित करने वाला जो है वो पुराण, उसे जीवित रखने वाला। तो भागवत में विनियोजन बतलाया किसका? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। क्या बतलाया? वहां संकेत किया, धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थायोप कल्पते, न अर्थस्य धर्मई कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता, और जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यस्चेह कर्म भी। क्या अर्थ है इसका? चारों पुरुषार्थों की वहां चर्चा और विनियोजन बतलाया। का धर्मस्य ही अपवर्गस्य, कहा धर्म रूपी पुरुषार्थ हमारे जीवन में हो। कहा क्यों हो? क्या आवश्यकता इस धर्म की? कहा इसके द्वारा अपवर्ग की प्राप्ति होगी। तो धर्म का विनियोजन हमें किसमें करना चाहिए? कहा अपवर्ग के लिए। अपवर्ग क्या है? तो अपवर्ग को बतलाते हुए क्या कहा? मोक्ष कह देते, लेकिन शब्द भी पद भी उसी हिसाब से देते, शास्त्र के अंतर्गत, इसलिए पद शब्द का प्रयोग किया। वहां अपवर्ग शब्द का

0: क्या है, तो वहां बतलाया पूर्व पर का जो है ध्यान रखते हुए। तो कहने लगे न पवर्ग इति अपवर्ग, तो पवर्ग और नए समास कर दिया। तो जहां पर पवर्ग नहीं है, का पवर्ग नहीं है इसका मतलब क्या? तो पवर्ग में वर्ग में कितने वर्ण आते? पांच, प फ ब भ। तो पवर्ग नहीं है इसका तात्पर्य क्या? तब तात्पर्य बतलाया जहां पाप और पुण्य नहीं है, शुभ भी नहीं है और अशुभ भी नहीं है। पशब्द से कह लिया पवर्ण से कि पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं, माने शुभ भी नहीं है और अशुभ भी नहीं। और जब न शुभ है न अशुभ है तो फल क्या होगा? आगे फ है भाई, या तो हमें अशुभ का फल मिलता है या शुभ का फल, लेकिन शुभ अशुभ है ही नहीं तो फल भी नहीं। और जब फल ही नहीं होगा तो फल होता है उसी के उपभोग को लेकर तो हम बंधित होते, जब फल ही नहीं है तो बंधन भी नहीं, और बंधन में ही तो भय है। भय कहां होता? बंधन को लेकर के ही भय। जब बंधन ही नहीं है तो भय भी कहां से होगा? और भय ही तो मृत्यु है, और जब भय नहीं है तो मृत्यु भी कहां से? ये जहां पर नहीं उसका नाम क्या है? ऐसे अपवर्ग की सर्वथा, अब जो बताओ ये जब स्थिति हो जाएगी तो दुख रहेगा उसके, तो ऐसे इस अपवर्ग की प्राप्ति के लिए हमें धर्म का विनियोजन करना चाहिए, धर्म का उपयोग करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा? जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाए। तुलसीदास ने कहा, लेकिन उसका अर्थ हम लोगों ने अपने ढंग से ही ले लिया। तुलसीदास ने तो ठीक लिखा कि सुख संपत्ति आदि कैसे प्राप्त होते हैं, किसको प्राप्त होते हैं, कहा धर्म ही स्वभाव बन गया है जिसका। लेकिन हमने वहां पर क्या कर लिया? संशोधन कर लिया। उसका सुख जो रूप था तो वो क्या सुख, उस सुख को तो हम नहीं समझे, और जो है लौकिक जो सुख संपत्ति थी उसी को हमने जो है लक्ष्य मान लिया, और उसके लिए हम धर्मात्मा बन गए। तो ये क्या हो गया? तब ठीक विनियोजन, धर्मशीलता, धर्म रूप स्वभाव होना, धर्म रूप प्रकृति बना लेना, इसका मतलब है कि हम उस को प्राप्त कर सकें। अर्थात तब ये अर्थ होगा कि लौकिक जो धर्म संपत्ति जो इसको हम अभ्युदय रूप मानते हैं उससे हमारी सदा अनासक्ति होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, लेकिन वो हो पाता नहीं। तो लक्ष्य जो है यहां शास्त्र बतलाता है कि धर्म हमारे जीवन में हो, लेकिन धर्म किस लिए हो? तो कहने लगे अपवर की प्राप्ति के लिए। हमारा लक्ष्य उसका जो है धर्म का क्या होना चाहिए? हम धार्मिक बने, हम धर्मी बने, लेकिन किस लिए बने? कहा अपवर को प्राप्त करने के। और समय बहुत हो गया, चलो कल चर्चा करेंगे। हो
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Jagat ke andar hai, tumhara sharir mein nahi hai, man mein nahi hai, buddhi mein nahi hai. Jagat ke andar parivartan hota hai, tumhara sharir kahan se kahan aaya? तुम्हारा बाल कहां से कहां आया? तुम्हारा ये विचार कहां से कहां तक आया? तुम्हारी बुद्धि कहां से कहां तक आ गई? तुम्हारा खान पान कहां से कहां तक आ गया? ऐसे परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये प्रकृति का कार्य है। हाँ, विजय चिटि शक्ति ही सर्वे भाव क्षण परिणाम रीति चिटि शक्ति ही एकमात्र चैतन्य शक्ति है। इस सब का जो अधिष्ठान वो हुआ कि नहीं, अहम का बदला हुआ कि मेरा में बदला हुआ, ये बताओ मेरे को। अहम अहम में बदला, मैं लाल हूं, पीला हूं, काला हूं, ऐसा आया कभी? अहम अहम तो जैसा का वैसा है, ईश्वर भी अहम करते, आप भी अहम करते, अहम में क्या परिवर्तन हुआ? अहम मेरा परिवर्तन हुआ, मेरा में बदलेगा, क्यों? मेरा मम इति, तो अहम अहम और मम, मम इति विद्यते जंतु निर्मम इति विमुच्यते, अहम मुक्त करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि मुक्त करेगा, और मम इति बंध्यते जंतु, मेरा ही बांधता है संसार में, बांधता कौन? बांधने वाला मेरा, छुड़ाने वाला अहम, कौन सा अहम? देह के साथ अहम जोड़ोगे नहीं होगा, कुटस्थ के साथ, ब्रह्म के साथ, आत्मा के साथ जो अहम जोड़ते हैं ना, अहम का तीन स्वरूप होता है, याद रखना। एक अहम परिवर्तनीय है, बनने वाला है, पतन की तरफ ले जाता है, आनी बात, एक अहम पतन की तरफ ले जाता है, तो अहम देहो हम, जब मनुष्य अपने को देह मानेगा तब पाप पुण्य करेगा, याद रखना। पाप पुण्य कब करता है? वो मैं शरीर हूं करके, जब शरीर हो तो शरीर के सुख दुख के लिए सब पाप पुण्य हम करते रहते, आनी बात। जो एक कुटस्थ में अहम होता है वो उन्नति का कारण, ऊपर ले जाने वाला है, अहम ब्रह्मास्मि मोक्ष का कारण, मुक्ति का कारण होता है। तो तीन प्रकार के अहम की प्रवृत्ति होती है, यानी बात। एक अहम होता है देह में, मैं शरीर हूं, लाल हूं, गोरा हूं, काला हूं, स्थूल हूं, दुबला हूं, पतला हूं, यानी बात, मोटा हूं, तगड़ा हूं, धनी हूं, गरीब हूं, यानी बात, पापात्मा हम, पुण्यात्मा हम, धर्मात्मा हम, अधर्मात्मा हम, ये सब किसमें होता है? अहम में, देह में, देह को लेकर होता है। समझ गए ना, एक देह में देह को लेकर ये सब होता है, आनी बात। ये देह के साथ जब हमारा अहम जुड़ जाते हैं ना, तो हमारा पतन का, गिरने का कारण होता है, स्वर्ग नरक आदि का कारण होता है। और एक अहम होता है साक्षी भाव, कुटस्थ भाव में, कुटस्थ विचार के विवेक से, देह से उस समय वो देह में जो अहंकार है ना, उससे थोड़ा अच्छा है, उससे भी श्रेष्ठ अहम है कौन? ब्रह्म एव अहम समशांत सच्चिदानंद लक्षण, नाहम देह सद्रूप ज्ञानमिति उच्यते बुद्धि। क्या बोल रहे हैं? ये देह हम में, देह में जो हम भाव है ना, इसको लेकर हम जीवित रह रहे हैं। आत्मा के रहने तो आत्मा क्या करता क्या नहीं करता हमको थोड़े देख रहे हैं। हम धंधा करने वाले है, हमारे धंधा से मतलब है हम में, हम नौकरी करने वाला, नौकरी से हमारे अहम में मतलब आए, आएगी नहीं? तो देह को लेकर के चलते हैं, तो आत्मा को लेकर के नहीं। आत्मा अनात्मा से छोड़ाएगा, देहादि अनात्मा है, देहादि क्या चीज है? अनात्मा है, तो अनात्मा बंधन का हेतु है, आत्मा बस मुक्ति का हेतु है, मोक्ष का हेतु है। तो आत्मा के साथ अहम को जोड़ दो और देह के साथ अहम को जोड़ दो, तो देह में अहम के जोड़ देने से देहात्मा भाव होता है संसारी, आई बात। देह में अहम को जोड़ दोगे तो क्या बनेंगे? देहो हम, स्थूलो हम, कृशो हम, गोरो हम, खंजो हम, बधिरो हम, काणो हम, ये सब क्या चीज है? देह का धर्म, ये सब के सब देह का धर्म। तो जब तक देह के साथ अहम जुड़े रहेगा तब तक जीव बंधन में है, और देह से हमको छुड़ा करके जीव में ले जाओ, कर्ता भोक्ता में ले जाओ। अभी देखो, जब जीव में ले जाओगे, जीव है, मैं करता हूं भोक्ता हूं, तो कर्ता भोक्ता जो है ना शुभ अशुभ कर्म करेगा, तो शुभ कर्म करने वाला जानता है कि शरीर स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। स्वर्ग में जाने वाला कौन? जीवात्मा। तो जीवात्मा स्वर्ग में कब जाएगा? मरने के बाद जाएगा, स्वर्ग में जाएगा मरने के बाद। कौन सा जीवात्मा स्वर्ग में जाएगा? इसमें आ गया आप अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाला, इष्ट और पूर्त कर्म करने वाला, इष्ट कर्म पूर्त कर्म, तो ये कर्म करने वाला जाएगा, जानता है कि ये शरीर जाएगा नहीं, तो इसीलिए अच्छा कर्म करेगा स्वर्ग आदि में जाने के लिए। और एक अहम होता है क्या, कर्तापन से भुक्तापन से छुटकारा पाता है, नाम कर्ता नाम भुक्ता अहम जीवा हा। तो जीव कहाँ जाएगा? हा? तो मैं जो है ना अहंकार को यहां से छुड़ा करके अभ्यास में लगाएगा, आत्मा अभ्यास में लगाएगा, आत्मा आत्मरति आत्मा क्रीडक में लगाएगा, आत्मा मिथुन आत्मा आराम इसमें लगाएगा। तो अहम को जोड़ने का, अहम को लगाने का भिन्न भिन्न रास्ता है। देहादि में लगाओगे तो क्या फल मिलेगा, जीव में लगाओगे क्या फल मिलेगा, और आत्मा में लगाओगे क्या फल मिलेगा? कभी अहम को कुटस्थ में लगाओगे, ब्रह्म में लगाओगे, है नहीं बात, तो क्या होगा? मोक्ष मिलेगा। हाँ, बात यह है, बात यह है, देखो रास्ता जो है ना, आप बीच में खड़े हो, चौराहे पर खड़े हो, रास्ता इधर एक बद्रीनाथ के लिए गया है, एक जो है ना स्वर्ग में के गया है, एक नरक में गया है, एक ब्रह्मलोक में गया है, चौराहे पर खड़े हो, किधर जाने का वहां लिखा हुआ है, किधर जाने का है, और जाना है ब्रह्मलोक में, और रास्ता पकड़ लिया आपने शिवलोक के, तो कैसे पहुंचोगे? आप कहोगे कि हम व्यवहार भी चाहे और मोक्ष भी चाहे, दोनों एक साथ नहीं होता है, किधर जाना चाहते हो आपको निर्णय करना पड़ेगा। क्यों लिखा है विवेक वैराग्य सरस्वती मोक्ष आदि, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है? साधक के लिए लिखा है कि नहीं? तुम कौन सा साधन करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मोक्ष का साधन करते हो, स्वर्ग का साधन करते हो, कि ब्रह्मलोक के जाने का साधन करते हो, ये साधन करने से आपके ऊपर, आप कहोगे आप धंधा भी करेंगे और वहां व्यापार भी करेंगे और मोक्ष में मिल जाए दोनों, ये कैसे होगा? उसके लिए वैराग्य चाहिए, विवेक वैराग्य सरस्वती मुमुक्षता आदि चाहिए कि नहीं चाहिए? कब उसको छोड़ करके धंधा करेंगे और पांच मिनट के लिए बैठ जाएंगे और मोक्ष भी मिल जाए? हमारे अंतकरण में भगवान भी बैठे और धंधा भी बैठे, धंधा भी बैठे और भगवान भी बैठे, बैठेगा? दोनों का जगह एक ही शोकेस बनेगा? तो कैसे मिलेगा मोक्ष? जनक राजा बस एक ही है, जनक राजा सुखदेव जनक राजा। क्या आप जनक राजा के कोटि में पहुंच गए क्या? राजा जनक के कोटि में पहुंचा क्या? बोला आना बेकार है, बेकार नहीं, आप सुनते हैं ना, सुनते हैं ना, ये श्रवणम श्रुतम हरन्ति पापानि, ये श्रवण जो है पाप हरण करते हैं, पाप हरण करते करते करते करते एक दिन ऐसा आएगा जो आपको पहुंचा देगा। श्रुतम हरन्ति पापानि, वेदांत की एक शक्ति है, अचिंत्य शब्द शक्ति है, याद रखना, शब्द के अंदर असीम शक्ति होती है। वो शक्ति की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। वो कैसे, जैसे आपकी स्तुति कोई करता है तो आप खुश होते हो कि नहीं करते हो, और यदि गाली देता है तो कैसा होता है चित्त? अरे गाली अपमान लांछना सुनते ही चित्त सिकुड़ जाता है, हमको ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। और जब कहते वाह फलाना इतना अच्छा आदमी है, बड़ा पुण्य आत्मा है, बड़े भोज है, तो सुनते ही आपका चित्त कैसा हो जाता है? चित्त रूपी कमल खिल जाता है। तो चित्त रूपी कमल जब खिलता है ना, तो मुख कमल भी खिल जाता है, मुख के हंसी आ जाता है, प्रसन्नता होती है, मुस्कुराहट खुल जाता है, नहीं मालूम पड़ता है। तो चित्त रूपी कमल कब खिलेगा? प्रसन्नता जब प्रशंसा सुनेंगे, है नहीं बात, प्रशंसा सुनते हैं। और चित्त रूपी कमल मुरझाएगा कब? निंदा सुनते हैं। तो जैसे शब्द के अंदर शक्ति है आपके चित्त रूपी कमल को खिलाने में, मुरझाने में, ऐसे आप जो रोज सुनते हैं, आप ब्रह्म हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, ये सब शब्द आप भीतर जाकर आपका काम नहीं कर रहा है, तो ये शब्द जो है ना वैदिक शब्द है, ये शब्द भी भीतर जाकर के हमारे कान के द्वारा भीतर जाकर के हमारे अंतकरण के अनंत जन्मों का अभी यहाँ दिखे ना, यहाँ अभी बताया कि नहीं, जन्मांतर सहस्रेशु अनेक जन्म संचित संचित क्या श्लोक है ना, अनेक जन्म संसार चित्त पाप समुच्चय, अनेक जन्मों से जो हमारा चित्त में पाप पुंज संचय हुआ वो धीरे धीरे सुनते सुनते श्रुतम हरंती पापानी, सुनते सुनते पाप नाश होता, एक दिन में नाश नहीं होगा, कपड़ा में मैल जम जाता है तो एक बार घिसने से एक बार धोने से जाता क्या? तो बार बार करना पड़ता है, फिर ऐसे एक दिन सुनने से हो गया? श्रुतम हरंती पापानी, आत्मा बारे श्रोतव्य मंतव्य निर्द्याशितव्य क्यों बोला? बार बार श्रवण करो, जब शीत के तुके जैसे 9 बार उसको उपदेश कर दिया गया, एक बार से नहीं हुआ, 2 बार से नहीं हुआ, इतना दृष्टांत दिया, तो हम एकमात्र एक दिन सुनने से 10 दिन सुनने से हो जाएगा? साधन चतुष्टय पहले सुनो, सुनो, साधन चतुष्टय संपन्न साधन क्या है? विवेक वैराग्य सत्संगति मुमुक्षुता आदि आएगी नहीं, तो विवेक कब होता है? जब सत्संग में बैठता था, अभी बिनु सत्संगति विवेक न हो राम कृपा बिनु सुलभ न, आप सुनोगे नहीं तो विवेक होगा कहाँ से? हम भी सुने, आप क्या बोल मंत्रणा कर रहे हैं? ले देखो, अर्जुन ने भी पूछा था इस बात को, अर्जुन ने भी बात को पूछा था, भगवान ने क्या बोला? असंशय महाबाहु, ये संशय तू है और क्या, कर्तव्य कर्म तो करना पड़ेगा ना, और तो क्या बोल रहा हो? चित्त में जा करके शब्द जो है ना काम करेगा या नहीं बताओ, बस उसमें करने दो, तो आप सुनते जाओ वो जा करके, अब सुनना भी क्या है उसके साथ बताए ना। देखो आप पैसा कमाते हो, कमाते हो ना, पैसा कमा कमा कमा करके जमा करते हो कि नहीं? हाँ नहीं नहीं सुनो, नहीं सुनो, सुनो बात तो सुनो, पैसा कमा कमा के इकट्ठा करते हो कि नहीं? इकट्ठा करते हो और कमाते कमाते इकट्ठा करते हो, अब कमाया हुआ पैसा एक दिन में खर्चा करते हो, क्रम से खर्चा करते हो, समय आने पर खर्चा करते हो, ऐसे ही श्रवण आदि जो है ना वेदांत वाक्यों का श्रवण मनन जो होते हैं ना, बार बार सुनना ही संग्रहित होता है, और किस समय में ये काम में आएगा आप नहीं बता सकते हो, किस समय में आपके ही काम आएगा, एक ही दिन में लात मार के सब छोड़ दोगे, उस समय किसी को पता नहीं चलेगा, समझे कि नहीं। वैराग्य पैदा होते हैं ना, वैराग्य का कोई समय नहीं होता है, वैराग्य का कोई समय नहीं होता। किस समय भरत हरि जी को जैसे वैराग्य हो जाता है, राधा को विक्रमादित्य को वैराग्य हो सकता है, है नहीं बात, नहीं कह सकते। किस समय आप कहोगे चले जाने तो दुनिया मिट्टा झूठा है, चले इतना दिन से आपने देख लिया सुन लिया सब कुछ नहीं है। जब चिंतिया मिशत महिषा विरक्त साफ अन्यम इच्छति जन साफ अन्य सकता, जब तब कहोगे, किस समय कहोगे ये पता नहीं चलेगा। हाँ ये बात दूसरी है कि भाई किसी किसी को सुनते सुनते सुनते सुनते ऐसा चमड़ी गाढ़ा हो गया तो उसको वैराग्य क्या करेगा, दुनिया के कितना भी कष्ट आवे कुछ नहीं का। तुलसीदास जी को एक मिनट नहीं लगा वैराग्य होने में, तुलसीदास जी को बिल्ला मंगल को वैराग्य होने में क्या दिन लगा, अरे राजा जो है ना वो क्या है ना वो गोपीचंद को वैराग्य होने में क्या देर लगेगा, वैराग्य गोपीचंद हो गया ना राजा। जब ऐसे राजा लोग त्याग कर सकता है, राजा लोग को वैराग्य हो सकता, हमको क्यों नहीं हो रहा है, बोले इसीलिए नहीं हो रहा है हम तुलसीदास जी नहीं है। हमारा कितना भी बोलता जाए सुनते सुनते सुनते सुनते हमारा चामड़ी इतना गाढ़ा हो गया सुना नहीं देता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
4: Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

व्यन्तु यजा देवी उषासा अश्विना सुत्रामेन्द्रे सरस्वती बलन्नवाचा मास्या उषाभ्यां दधुरिन्द्रियं वा सुवने एव सुधेयस्य व्यन्तु यजा देवी जोष्ट्री सरस्वत्यश्विनेन्द्रामवर्धयन् श्रोत्रन्नकर्णयोर्यशोजोष्ट्रीभ्यान्दधुरिन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवी ऊर्जाहूतिदुघे सुदुघेन्द्रे सरस्वत्यश्विनाभिषजावतः शुक्रन्नज्योतिस्तनायोराहूतिधत्त इन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा।

पालन भगत जनित प्रियत्रय एनाम महिमान सजन्दे छंदस्वती उजगोपे के जाने समान योनि मनु संचरे थे सूर्य पत्नी विचरत प्रजामती के तुमती अजरे भूरि रे तसौ।

0: దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ప్రెసెంటెడ్ బై స్వామి శ్రీ ఆత్మానంద్ గిరిజీ మహారాజ్. థ్యాంక్ యూ. ఓం నమ శివాయ.
1: కర్దమ్ ఋషి దేవహూతి నే కహా కి ఐసే జోపడీ మే ఔర్ అప్నే గుజారా హోనా కిత్నా ముష్కిల్ హో రహా ఔర్ బచ్చే హోంగే తో ఫిర్ కైసే రహెంగే ఔర్ క్యా హై తుమ్హారే పాస్ సాధన్ కుచ్ భీ నహీ హై సాధన్. కర్దమ్ ఋషి నే కహా కి తుమ్ క్యూ చింతా కర్తీ హో, ఇన్ సబ్ కి చింతా తుమ్ మత్ కరో. తో కహా వో బిందు సరోవర్ మే జావో, నా ఆకే ఆ జావో. తుమ్ జబ్ తక్ నా ఆకే ఆవో, బాకీ తయారీ హమ్ కర్తే హై. దేవహూతి నహానే కే లియే చలీ గయీ. జాతే సమయ అకేలే గయీ థీ, వహీ ఏక్ ఫటా హువా లుగా కపడా థా, కోయి నయా కపడే కుచ్ నహీ థే, అకేలే థీ. जैसे वह सरोवर में उन्होंने डुबकी लगाई, भागवत के प्रसंग आप लोगों ने कई बार सुना हुआ था, ये सुना रहा हूं. जैसे सरोवर में डुबकी लगाई तो वहां अनेक अप्सराएं खड़ी हो गई, दास दासियां खड़े हो गए, उनकी सेवा करने के लग रही है, जय जयकार कर रही हैं, और सब हाथ में कोई अंगराग लेकर खड़ा है, कोई वस्त्र लेकर खड़ा है, कोई आभूषण लेकर खड़ा है. देवहूति को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या हुआ है. कहीं इस जल के अंदर कोई प्रेत छुपकर नहीं तो बैठा है, और वो मुझे इस प्रकार से अपने प्रेत शक्ति के द्वारा सम्मोहित कर तो नहीं रहा है. क्या मैं वही मनु महाराज की पुत्री हूं? क्या मैं वही कर्दम ऋषि की पत्नी हूं? यदि मैं वास्तव में कर्दम ऋषि की पत्नी हूं तो मेरे पति कहां हैं? ये मुझे कोई प्रेत, कोई भूत, कोई प्रेत मुझे छल तो नहीं रहा है. उनके मन में ये शंका हो गई, तो कर्दम ऋषि वहीं खड़े हैं. अरे तू चिंता न कर, किसी भूत प्रेत ने इसको तुझे छला नहीं है. लेकिन ये कहां से, ये क्या है? बोले तू चिंता, ये सब मेरी योग शक्ति है, मेरे संकल्प से ये सब तैयार हुआ. ये कपड़ा, ये गहने, ये आभूषण, ये अंगराग, ये दास दासियां, सबके सब ये योग सिद्धि है. मैं तेरा पति यही हूं, तू बिल्कुल चिंता न कर, कोई भूत प्रेतों ने ठगा नहीं है, छला नहीं है तुम्हें. वो तब बाहर निकले और दिव्य आभूषणों से, अलंकारों से युक्त होकर देवहूति बाहर निकली. जैसे बाहर निकली तो वैसे एक विमान खड़ा है सामने, ऐसा दिव्य विमान देवहूति ने कभी नहीं देखा था. कर्दम ऋषि ने कहा कि चढ़ो विमान के ऊपर, अंदर चढ़ जाओ. देवहूति चढ़ गई और कर्दम ऋषि भी उस विमान में चढ़े. उसके बाद वह विमान इच्छा के अनुसार, कर्दम ऋषि संकल्प करते हैं, इच्छा के अनुसार वह विमान अपने आप गतिशील हो रहा है. कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, विदाउट वीजा अमेरिका चला गया विमान, यूरोप चला गया, लंदन चला गया, पता नहीं कहां कहां चला गया वो विमान. और उस विमान के अंदर सारा का सारा दिव्याति दिव्य एक चक्रवर्ती सम्राट के भोग के सामान वहां विद्यमान है. अनेक कमरे हैं, अनेक दास दासियां हैं, जो संकल्प करो वो उपस्थित हो रहा है. किसी चीज की, कोई चीज की कमी नहीं है. उस विमान में विचरण करते करते 100 वर्ष बीत गए. ये प्रातिभाषिक नहीं है, ये बताने जा रहे हैं. 100 वर्ष बीत गए और उस 100 वर्ष में 9 कन्याएं पैदा हो गई देवहूति के. घूमकर फिर आ गए. कर्दम ऋषि ने संकल्प किया, बढ़िया महल तैयार हो गया पृथ्वी लोक में, कोई चीज की कमी नहीं. उसके बाद कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी अब तुम्हारी इच्छा हो गई, मां बन गई हो, अब हम जाते हैं तपस्या करने. बोले नहीं, अपने पहले प्रतिज्ञा में कहा था कि पुत्र होने के बाद मैं जाऊंगा,

ये सब पुत्रियां हुई हैं, पुत्र नहीं हुआ है। एक दार्शनिक पक्ष है ये। ये जितनी भी पुत्रियां हैं ये अनेक शक्तियां हैं, और ये शक्ति तभी सफल हो सकते हैं, फलीभूत हो सकते हैं, जब शिवस्वरूप पुत्र पैदा हो जाए। तो वृत्तियां और मन, जैसे एक मन होता है अनेक वृत्तियां होती हैं, मन के बिना वृत्तियों का कोई प्रयोजन नहीं, और वृत्ति के बिना मन अकेला शून्य में चला जाएगा। ये सब सांदर्भिक हैं, दार्शनिक प्रसंग हैं। इसी को प्रकृति और पुरुष सांख्य ये अर्थ करता है। अनेक भेद वाली प्रकृति है और भेद रहित एक पुरुष है। पुरुष के प्रतीक ही कपिल भगवान हैं और प्रकृति के प्रतीक ही नव कन्याएं हैं। विद्वानों ने इस तरह व्याख्या की है। तो ये कन्या तो हो गए, लेकिन एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। आपने कहा है शब्द उच्चारण क्या कि बेटा होने के बाद मैं तपस्या करने जाऊंगा, पुत्र तो हुआ ही नहीं है, ये कन्याएं हैं, ये तो शादी होगा, ये लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और तुम तपस्या करने चले जाओगे, मैं किसके आश्रय में रहूं? कहा भी है कन्या को जब तक शादी नहीं होती है तब तक मां बाप के आश्रय में रहना चाहिए, शादी हो जाने के बाद पति के आश्रय में रहना चाहिए, बच्चे हो जाने के बाद बेटे के आश्रय में रहना चाहिए। ये हमारी नीति वाक्य था, लेकिन आगे हम नहीं कहेंगे, आज के जमाने में वो कथनीय नहीं है। और आगे कहा है न स्त्रीम स्वतंत्र मरहती, किसी भी अवस्था में स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, पहले बाप मां के अधीन में रहना चाहिए, बाद में शादी के बाद पति के अधीन में रहना चाहिए, और बच्चे हो जाने के बाद फिर अपने बेटे के अधीन में रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। ये हमारे नीति वाक्य था। तो ये तीसरे अंश को आज छोड़ देना आप लोग, नहीं तो फिर झगड़ा करने लग जाओगे। ये आत्मानंद गिरी भी स्त्री विरोध है, महिला विरोधी है लगता है, आप लोग कहने लग जाओगे, इसीलिए उसको छोड़ देना। नीति यही है। देवहूति इस बात को जानती थी, पहले मैं पिता के अधीन में थी, अब आपके अधीन में हूं, और कन्याएं शादी होकर चली जाएंगी, आप तपस्या करने चले जाओगे, मैं किसके आश्रय में रहूं? तो इसलिए एक बेटा तो होनी चाहिए। तो कपिल भगवान ने, मन कर्दम ऋषि ने कहा कि वो भी इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तब प्रार्थना की गई कि भगवान को आना था, उस निमित्त से भगवान जी आए, कपिल भगवान आए। तो कर्दम ऋषि ने तुरंत घर छोड़ दिया, कहा कि अब तुम इसके आश्रय में रहो, ये कोई साधारण बालक नहीं है, तुम्हें ज्ञान का उपदेश करके इस संसार भव सागर से निकालने वाला यही होगा, तुम चिंता नहीं करना। तो कर्दम ऋषि तपस्या में चले गए। बाद में कपिल भगवान ने जैसे माता देवहूति को जो उपदेश किया, पूरा सांख्य शास्त्र तो वहां खड़ा हो गया, सहेश्वर सांख्यवादी तृतीय स्कंद भागवत का भरा पड़ा है, कपिल गीता, जिस कपिल गीता के श्रवण के माध्यम से देवहूति का कल्याण हो गया, मुक्त हुई देवहूति। ये भागवत के प्रसंग में क्यों उठाया मैंने, क्योंकि महायोगी व जैसे एक समर्थ योगी बिना उपादान कारण के, बिना सहकारी कारण के योग संकल्प से जो कुछ निर्माण करते हैं, वह पूरा का पूरा केवल प्रातिभाषिक मात्र न होकर 100% शत प्रतिशत व्यावहारिक होता है। कर्दम ऋषि को घर बनाने के लिए किसी मिस्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी, कर्दम ऋषि को घर बनाने के लिए किसी सीमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी, लकड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ी, सुथार मिस्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी। कर्दम ऋषि को वो दिव्य घर बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता नहीं, कील की आवश्यकता नहीं, हथौड़ी की आवश्यकता नहीं, रेती
पत्थर, पानी, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अकेले थे, संकल्प मात्र से घर बना दिया। वो घर कोई इंद्रजाल का घर जैसा नहीं है कि केवल देखने के लिए हो जाए। देवहूति ने अपना जीवन उस घर में व्यतीत किया, इतना दिव्य व्यवहारिक घर था। इसके अलावा और भी बहुत से उदाहरण हैं। विश्वामित्र ने अपने चेले के लिए स्वतंत्र स्वर्ग का निर्माण कर दिया, जिसका नाम त्रिशंकु हुआ बाद में। विश्वामित्र की इतनी सेवा की कि तब प्रसन्न हो गया। विश्वामित्र प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा तू क्या चाहता है बोल। तो उसने कहा कि गुरुदेव, यूं तो स्वर्ग जाने के लिए बहुत बड़े यज्ञों का विधान है वेद में, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, ज्योतिष्टोम यज्ञ के द्वारा स्वर्ग जाया जा सकता है। वेद में अनेक विधान है, विधि है, उपाय हैं, लेकिन इन यज्ञों के द्वारा जो कुछ भी स्वर्ग जाना चाहेगा, यज्ञ करने के बाद फिर मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा। तो मेरी तो इच्छा यह है कि मुझे कोई यज्ञ भी करना ना पड़े और मरना भी ना पड़े। बिना यज्ञ के, बिना मरे ही मैं सीधा स्वर्ग जा पाऊं। आप प्रसन्न हैं तो वो व्यवस्था मिला दीजिए। तो मिलाना ठीक था, मिला नहीं था तो बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी बेटा, जाओ स्वर्ग, मेरी आज्ञा है, जाओ। गुरु की आज्ञा, विश्वामित्र की आज्ञा थी, तो वो तो चला गया स्वर्ग सशरीर। लेकिन जब देवराज को पता चला तो वहां रहने नहीं दिया, उसने घुसने नहीं दिया, मरे बिना तू यहां कैसे आ गया है? ना यज्ञ किया, यहां तो यज्ञ करना पड़ेगा, 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, तभी आया जाता है, तो मरे बिना तू कैसे आ गया? घुसने नहीं दिया। आकर फिर रोने लगा, गुरुदेव वहां तो इंद्र ने मुझे घुसने नहीं दिया है, मेरी इच्छा है कि बिना मरे मैं स्वर्ग जाऊं। तो विश्वामित्र ने कहा कि चिंता न कर बेटा, उस स्वर्ग में तुझे इंद्र ने घुसने नहीं दिया तो मैं तेरे लिए अलग स्वर्ग बना देता हूं। बस संकल्प किया, अलग स्वर्ग बना दिया और जा, वो चला गया स्वर्ग में, बैठा उस नया निर्मित, विश्वामित्र के द्वारा निर्मित स्वर्ग। ये कोई साधन सामग्री से निर्माण किया हुआ स्वर्ग नहीं था, और वास्तव में देव निर्मित या ईश्वर निर्मित जो स्वर्ग है, जहां इंद्र राजा बनकर बैठा है, उससे किसी चीज में कमी नहीं था। विश्वामित्र निर्मित स्वर्ग में कोई चीज की कमी नहीं, बड़ा आनंद का अनुभव कर रहा था। और किसी ने जाकर देवराज इंद्र को कह दिया कि अरे क्या है, तू सत्ता शासन करता है, तेरे बराबर में दूसरा स्वर्ग निर्माण कर दिया विश्वामित्र ने और इंद्र बनकर बैठ गया दूसरा, और हम देवता तेरे कहना का मानेंगे, उसके कहना माने, क्योंकि स्वर्ग में जो सिंहासन है उसमें जो बैठेगा उसका मानना पड़े। यहां एक स्वर्ग की जगह दो स्वर्ग हो गए, एक इंद्र की जगह दो इंद्र हो गए, तो अब हम तेरे कहना मानेंगे, उनका कहना माने, कौन सही है? तो देवराज जो इंद्र था उसने कहा कि ये सही है, हमारा कहना मानो। उसने कहा कि तुम हमारा कहना, ये सही है, ये तो बड़ा असमंजस हो गया। तो इस दुविधा को हटाने के लिए इंद्र ने विश्वामित्र निर्मित उस स्वर्ग में आक्रमण किया, पूरे दल बल के सहित आक्रमण किया और उस स्वर्ग को अपने कब्जे में लिया और विश्वामित्र के उस चेले को वहां से फेंक दिया नीचे।
अब वो व्यक्ति नीचे आते हुए कहने लगा जोर जोर से विश्वामित्र, गुरुदेव कि आपने जो नया स्वर्ग बनाकर दिया था, यहां से तो मुझे धकेल दिया गया, लखेट दिया गया, भगा दिया गया, ये इंद्र ने आक्रमण कर लिया, मुझे नीचे गिरा दिया, मैं क्या करूं। विश्वामित्र ने कहा कि बेटा तू वहीं रहो, मत आना नीचे, मेरी बेइज्जती होगी। गुरु को भी अपनी इज्जत की बहुत ख्याल रखनी पड़ती है। चेला बनाना बहुत आसान होता है, चेला बनाना तो बहुत आसान है, पुत्रेषण शिष्येषणा, है ना? आप लोगों में पुत्रेषणा का एक दोष है, वही आपको परेशान करता है, और कभी कभी हम लोगों में ये शिष्येषणा का एक विकार इतना परेशान करता है। ऐषणा जिसको भी छुएगा वो परेशान तो करेगा ही। यदि कोई सन्यासी, कोई महात्मा शिष्येषणा लेकर बैठा हुआ है तो वो कोई सुखी तो नहीं हो पाएगा। ऐषणा ही दुख का कारण है, वेदांत का रहस्य है। और इधर विश्वामित्र ने कहा कि बेटा तुम नीचे नहीं आना, नहीं तो यहां तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और उधर स्वर्ग में इंद्र प्रवेश करने नहीं देता, और इधर मर्तलोक में विश्वामित्र प्रवेश करने नहीं देते, नहीं तो वशिष्ठ के सामने नाक कट जाएगी विश्वामित्र की। है? देखो मैं राजा क्षत्रिय होकर भी तपस्या करके मैं संकल्प से ब्रह्म ऋषि हो गया, ब्रह्म ऋषि होने के कारण मैंने स्वतंत्र स्वर्ग निर्माण कर दिया, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो कहते हैं आज तक वो त्रिशंकु, उसका नाम तब जाकर त्रिशंकु हुआ। वो त्रिशंकु और शायद ये त्रिशंकु हरिश्चंद्र का ही बेटा था, शायद उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं के वंशज है ये। तो इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा था कि महायोगी कोई सिद्ध योगी अपने योग साधना से, योग सिद्धि से, बिना उपादान कारण, बिना सहकारी कारण के कार्य को उत्पन्न कर देता है, और वो पूरा का पूरा व्यावहारिक होता है। व्यावहारिक क्या, पारमार्थिक भी हो जाता है। स्वर्ग बन गया कि नहीं, पारमार्थिक। यदि वो प्रातिभाषिक मात्र होता तो इंद्र को क्या परेशानी होती, इंद्र को कोई परेशानी ना होता। व्यावहारिक हो गया, पारमार्थिक हो गया, इसीलिए इंद्र को वो स्वर्ग को भी कब्जा करना पड़ा। अब एक साधारण योग साधना से उस परमात्मा की, उस ईश्वर की थोड़ी सी शक्ति का संचार हो गया, इतनी मात्र से वो क्षमता आती है, तो उस परमात्मा में फिर सृष्टि करने की क्षमता नहीं है। ये कल्पना तुम कैसे कर रहे हो? इच्छा ज्ञान क्रिया पूर्वा यस्मात् सर्वा प्रवृत्तया सर्वेपि जन्तवस्तस्मात् ईश्वरा इति निश्चिताः। हम तो यहां तक कहेंगे कि जितने भी जंतु जीव हैं इन सभी में इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, तीनों शक्ति दिख रही है। इसका मतलब ये तीनों शक्ति ईश्वर से ही आया हुआ है, और उसी के शक्ति को प्राप्त करके जीवात्मा भी अपने क्षमता अनुसार कर्म करता है। इतना ही अलग है कि इसमें जो शक्ति है, तीन शक्ति, वह तमोगुण के द्वारा अभिभूत हुआ हुआ होने के कारण ये शक्ति अपने फूल फॉर्म में नहीं है, अल्प में रह गया। यही साधना में लग जाए और योग साधना करेगा तो यही शक्ति उस ईश्वरीय शक्ति के साथ एक होकर यह पूरा का पूरा ईश्वर के रूप में परिणत होता है। किसी ने पूछा बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज का जो दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत में व्याप्ति दोष जो था उसको निवारण करने के लिए योगी का दृष्टांत दिया, विश्वामित्रादय पूर्वे परिपक्व समादया उपादानोपकरण प्रयोजन विवर्जिता स्वच्छया स्वसृजु स्वर्गम सर्वभोग उपबृंहिता।
समस्त भोग से युक्त हुआ हुआ स्वर्ग का निर्माण उन्होंने किया। इसी तरह ईश्वर ने अपनी इच्छा शक्ति से सारे भोगों से युक्त हुआ हुआ यह विश्व ईश्वर ने निर्माण किया है। ये व्यावहारिक है। ईश्वरो अनंत शक्ति स्वतंत्रो अन्यान अपेक्षत स्वेच्छा मात्रेण सकलम सृजत्यवति हन्ति च। ईश्वर अपनी शक्ति मात्र से बिना किन्हीं साधनों से वह उत्पन्न करता है, पालन करता है और अंत में संहार करता है। न कारकाणां व्यापारात् कर्ता स्याद् नित्य ईश्वरः नापि प्रमाण व्यापारात् ज्ञातः स्वप्रकाशक। सर्वशक्तिमान ईश्वर को कार्य करने के लिए, किसी को उत्पन्न करने के लिए कारकों की साधनों की अपेक्षा रखे बिना वह सर्वकर्ता बनता है और करणों की अपेक्षा रखे बिना और प्रमाण की अपेक्षा भी रखे बिना वह सर्वज्ञ भी होता है। हमको अल्प जानने के लिए भी करणों की आवश्यकता पड़ती है, ईश्वर को सर्वज्ञ होने के लिए करणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमको एक फूल देखने के लिए भी आंख की आवश्यकता पड़ती है, हमको एक लिखे हुए अक्षर को पढ़ने के लिए भी आंख की आवश्यकता पड़ती है, यही साधन करण। फिर भी हम अल्पज्ञ के अल्पज्ञ ही रह जाते साधन के होते हुए भी, और उसके पास न इंद्रियां हैं न करण है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना। हमको घर जाने के लिए पांव की आवश्यकता पड़ती है, उसको पांव की आवश्यकता नहीं पड़ती घर जाने के लिए। कहीं जाना कहीं आना हो, करणों की आवश्यकता बिना भी वह सब जगह पहुंचता है, करणों के बिना भी वह सबको जानता है, करणों के बिना भी वह सब कुछ कर सकता है, इसीलिए तो उसको ईश्वर कहा गया है। नापि प्रमाण व्यापारान् ज्ञाता सो प्रकाशकः ज्ञातृत्व।

0: हरिता यया कर्तुम न वा कर्तुम अन्यता कर्तुम अर्हति स्वतंत्राम ईश्वरेच्छाम के परिच्छित्तम इहे सति। उस ईश्वर की शक्ति को दुनिया में और कोई किसी में वो क्षमता नहीं कि उसके शक्ति को सीमित करे। आज विज्ञान तो लगता है कि कर रहे हैं कि उसके शक्ति को सीमित कर ले में, उसमें लगे हुए हैं। हमने कल भी संकेत किया है कि विज्ञान को चुनौती है कि उस परमात्मा की अनंत शक्ति को विज्ञान किसी भी हालत में सीमित नहीं कर सकता है, क्योंकि विज्ञान जो सीमित करने जाएगा वो करने की शक्ति भी तो परमात्मा की ही है। श्रुतिश्च सो कामेति चया सृष्टिमीषितु तस्मात् आत्मना आकाशात् संभूत इति चाब्रवीत। श्रुति ने भी यही कहा है, श्रुति प्रमाण है कि ईश्वर ने अपने इच्छा से सबसे पहले आकाश बनाया, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न रस औषधि, अन्न रसों से ये सारे के सारे जीव पुरुष बनाया हुआ है। तो इसके लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, संकल्प किया सारा सृष्टि उत्पन्न हो गया। ये श्रुति, छांदोग्य श्रुति भी यही बात प्रमाणित करती है, इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। निमित्ते चेत भवेद अस्य जगत परमेश्वर विकारित्वं विनाशित्वं भवेदस्य कुलालवत्। यदि उस परमेश्वर को भी निमित्त कारण, उपादान कारण, सहकारी कारण, सब साधन सामग्री के द्वारा तब उसके बाद वह कर्ता बनता है मानेंगे, तो वह भी कुम्हार की तरह वह भी विकारी हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा, तो वह फिर सर्वशक्तिमत्ता उसकी खंडित हो जाएगी। बुद्ध्यादयो नवगुणा नित्या एवेश्वरस्य चेत नित्यच्यावान जगत सृष्टो प्रवर्तते व सर्वदा प्रवृत्त्युपरामा भावात् संसारो नैव नश्यति मोक्षोपदेशो व्यर्थ स्यात् आगमोऽपि निरर्थकः। यदि सारे प्रवृत्ति निवृत्ति आदि सब कुछ उसी में नित्य हैं, तो फिर ईश्वर हमेशा प्रवृत्ति करता ही रहेगा। नित्य प्रवृत्ति करने की क्षमता वाला होने के कारण या तो वह नित्य प्रवृत्ति करता रहेगा, नित्य निवृत्ति वाला मानते तो फिर वो कभी भी प्रवृत्ति नहीं करेगा, फिर जगत स्वयं या तो फिर कभी भी उच्छिन्न नहीं होगा या जगत कभी भी अस्तित्व में नहीं आएगा। ये पूर्व पक्ष का ये प्रश्न यदि है तो उसको खंडन करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं तस्मात् माया विलासोयम् जगत कर्तृत्वमीषितो बंध मोक्ष उपदेशादि बेवरा व्यवहारोपी मायया। माया दो प्रकार की सत्ता वाले वस्तुओं को उत्पन्न करती है, एक व्यावहारिक दृष्टि से व्यावहारिक सत्ता वाला, पारमार्थिक दृष्टि से प्रातिभाषिक सत्ता वाला जगत को उत्पन्न करने के कारण यह नित्य जगत की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से जगत अनित्य है, पारमार्थिक दृष्टि से ईश्वर में जगत सृष्टित्व भी वह अनित्य है। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज हिंदी स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Naminandi Adigal Nayanar, presented by Singapore Shankaran Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhaktos, aaj hum sunenge Naminandi Adigal Samiti ki kahani. दक्षिण के चोलमंडल में एक गांव था इंतेरू, जहां एक ब्राह्मण परिवार में नमिनंदी का जन्म हुआ। तिरुवारूर की दूरी वहां से अधिक नहीं है। एक बार तिरुवारूर के प्रसिद्ध मंदिर में त्यागराज शिव के दर्शन करके जब भक्त नमिनंदी बाहर आए तो उनके मन में भगवान के प्रति दीप सेवा करने की इच्छा जागृत हुई। निकट के एक घर में जाकर उन्होंने दीप जलाने के लिए तेल मांगा। उस घर में किसी अन्य धर्म के लोग रहते थे। व्यंग्य पूर्वक कहा, अरे तुम तो ब्राह्मण हो, कहते हैं ब्राह्मण के हाथ में ही अग्नि होती है, ऐसे में दीप जलाने की आवश्यकता क्यों है? फिर भी यदि दिया जलाना चाहो तो पानी लेकर जला डालो ना। नमिनंदी से यह तीखा व्यंग्य सहन नहीं हुआ। जैसे त्यागराज के मंदिर में गए और भगवान से शिकायत की, तत्काल एक स्वर पूजा, पानी से दिया जलाओ। भक्त नमिनंदी तिरुवारूर मंदिर की पुष्करणी कमलालय से घड़ा भर कर पानी लाए और दिया जलाया। आश्चर्य, सभी दीपक पूर्ण प्रकाश देकर जलने लगे। इसके बाद तो वे इसी सेवा में रम रहते थे। एक दिन उत्सव मूर्ति की शोभा यात्रा पास के मननी गांव की ओर जा रही थी। नमिनंदी ने विधि प्रकार एक स्थान पर खड़े होकर वह मूर्ति के दर्शन किए। जब वे घर लौटे तो उनके मन में विचार आया, सभी जातियों के लोग शोभा यात्रा में थे, कहीं छूट तो नहीं लगी। जब वे घर पहुंचकर अंदर नहीं गए तो पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया, भगवान की शोभा यात्रा में दर्शनार्थ खड़ा था, सबके बीच रहने से अपवित्र हो गया हूँ, यहाँ स्नान करने के पश्चात ही घर में प्रवेश करूंगा। दर्शन के समय मन पवित्र था, जाति आदि का विचार कहाँ से आता। स्नान करके जब वो घर में गए तो उसी जब वो रात के को सो रहे थे तो उनके सपने में भगवान आए और उनसे बोले, बस क्या तुम नहीं जानते कि तिरुवारूर के सभी निवासी हमारे गण हैं? ऐसे में छुआछूत का विचार क्यों? स्वप्न सूखते ही नमिनंदी ने अपनी भूल के लिए शिव से क्षमा मांगी और पहले से भी अधिक लगन से सेवा कार्य करने लगे। उनके यहाँ एक बार तिरुनामकरसर संत का अतिथि करने का सौभाग्य भी मिला। तिरुनामकरसर ने उन्हें सेवक मणि की उपाधि से विभूषित किया। इस कथा से हमें सामाजिक परिस्थितियों के कारण विद्यमान ऊंच नीच के भाव का पता चलता है। मध्ययुग में छुआछूत की भावना ने एक रोग के रूप में हमारे समाज में प्रवेश करके जड़ में जमा ली। नमिनंदी जब तक श्रद्धा भाव से प्रभु से प्रभु की शोभा यात्रा देख रहे थे उस समय आनंद मग्न थे। यहाँ कौन है इस बात की उन्हें जरा भी ध्यान नहीं आई। मार्ग में और घर के एकांत में यह प्रश्न उठा। सामाजिक प्रथाओं परंपराओं को स्वीकार करके चलने वाले नमिनंदी को यदि कोई और सच्चाई समझाता तो वे उसके बाद को तुरंत नहीं मानते। जब भगवान ने स्वयं सपने में आकर कहा तिरुवारूर के सभी निवासी हमारे गण हैं, सभी उनको समझ में आया कि सभी ने पशुपात कालामुख महावती पौध जैन आदि सभी मातवलंबी सम्मिलित हैं। अतः स्पष्ट है कि शैव धर्म सब धर्मों और जातियों को लेकर मानव मात्र को सम्मान देकर चलने में विश्वास करता है।
4: ओम नमः शिवाय।
5: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
4: Om Namah Shivaya.

0: ஓம் நமசிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நமசிவாய.
1: धनुषा मुसलेन चास्म भीर्वा. अब तुम ही बताओ ईसा, तुम क्या धनुष बाण से प्रसन्न होगे? तो मैं धनुष बाण उठाऊं? बोलो. जब नमस्कार करके खुश नहीं होते हो, स्तुति करके खुश नहीं होते हो, विधिवत पूजा करके तुम प्रसन्न नहीं होते हो, ध्यान करने पर भी प्रसन्न नहीं होते हो, नतुष्ट, अब तुम ही बताओ. बदा धनुषा, अब तुम्हें खुश करने के लिए क्या आप धनुष बाण उठाऊं, प्रहार करूं दो चार धनुष बाण, तब खुश होगे? क्या खतरनाक है? धनुष तो फिर भी ठीक था. आगे का क्या मुसल उठाऊं? दो चार मुसल से प्रहार करूं तो तब खुश होगे? और यह पत्थर उठाऊं, मारूं दो चार पत्थर तुम्हारी गोबड़ी में, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं. शंकराचार्य जी ठीक सीधे कह दिया, धमकी दे दिया है. लोग कहते हैं ना, लातों का भूत बातों से नहीं मानता. कहावत है कि नहीं, सुना है कि नहीं तुम लोगों ने? लातों का भूत बातों से नहीं मानता है. जब बातों से नहीं मानता है तो उसको लात का ही प्रयोग करना पड़ता है. और शास्त्र ने जिन जिन साधनों को प्रयोग करने के लिए कहा, हमने एक के बाद एक, एक के बाद एक, उन सारे साधनों का प्रयोग किया, फिर भी आप प्रसन्न नहीं होते हो, नतुष्ट. तो अब फिर हम तो धनुषा मुसलेन च अश्मभिर, अश्म माने पत्थर. बदा, तुम ही बताओ अब किससे प्रसन्न होगे? पत्थरों से प्रसन्न होगे, मुसल से प्रसन्न होगे, धनुष बाण से प्रसन्न होगे? ते प्रीतिकरम, और जिससे तुम प्रसन्न होगे मैं उसी का प्रयोग करूंगा. तुम ही बताओ, मुसल से होना हो तो मुसल प्रयोग करो. बदल ते प्रीति करो तथा करो. इसीलिए मुझे तो आप प्रसन्न हो जाओ इतनी चाहिए. ये श्लोक बड़ा खतरनाक है वो. क्योंकि शंकराचार्य जी ये जानते हैं, ऐसे ऐसे भक्त भी हुए हैं वो, भगवान को किसी ने तो धनुष बाण प्रहार किया शिव को, तो शिव बहुत प्रसन्न हो गए. अर्जुन से भगवान शिव प्रसन्न हुए किसके द्वारा? बोलो. अर्जुन से भगवान शिव प्रसन्न हुए, और अर्जुन को गांडीव धनुष दिया प्रसन्न होकर. कब? जब अर्जुन ने मारी धनुष बाण उठाकर, तीर लगे दो चार बाण. बड़ा विचित्र प्रसंग है वो। गांडीव धनुष प्राप्ति के लिए महाभारत युद्ध होना निश्चित था और साधारण धनुष बाण से महाभारत युद्ध विजय प्राप्त करना संभव नहीं था, विशेष करके अर्जुन के लिए। तो गांडीव धनुष शिवजी के पास था। अब वो धनुष प्राप्ति के लिए अर्जुन गया जंगल में, कैलाश के चोटी पर जंगल में बैठकर खूब तपस्या की। ये पुराण में प्रसंग है, शिवपुराण आदि में सब जगह प्रसंग आई। तो भगवान शिव ने विचार किया, ये गांडीव धनुष को प्राप्त करना तो चाहता है लेकिन इसको परिचालन करने की इसमें क्षमता है कि नहीं देखना चाहिए। तो स्वयं भगवान शिव एक सुअर का रूप धारण करके अर्जुन जहां तपस्या कर रहा था वहां चारों तरफ भ्रमण करने लग गए और शांति से भ्रमण करते तो अर्जुन को कोई आपत्ति नहीं थी। अर्जुन जहां तपस्या कर रहा तो वह तूफान करने शुरू कर दिए वो सुअर है, कभी जोर जोर से हल्ला करता है, कभी सूंड से जमीन खोदते हुए मानो कि अर्जुन का आसन ही उखाड़ के फेंक रहा हो, ऐसा उद्धत करने लग गया। अति हुआ तो उस समय भगवान शिव दूसरे रूप से जंगल में ही विचरण कर रहे थे। अर्जुन का आ गया गुस्सा और उठा ली धनुष बाण और उस सुअर को मारना शुरू किया। पुराण का प्रसंग है, लक्ष्य साधा और लक्ष्य भेदन के लिए तीर चढ़ाई धनुष में और खींचा और उसी समय शिवजी ने भी तीर छोड़ दी है और शिव का तीर और अर्जुन का तीर दोनों एक साथ उस सुअर को लग गए। समझे कि नहीं? कौन सुअर को? ईश्वर की लीला विजित रहे हो, लग गया दोनों बाण। और शिवजी तो शिकारी का रूप धारण करके वहां विचरण कर रहे थे, शिव का रूप धारण करके तो विचरण कर नहीं रहे थे, एक आदिवासी शिकारी के रूप में किरात रूप बोलते हैं उनको है? अब जैसे सुअर को लगा तो भगवान शिव किरात भेषधारी शिव दौड़ते हुए गए, कहा कि ये मेरा है, मैंने मारा है, ये मेरा है। अर्जुन दौड़ता हुआ गया, नहीं मैंने मारा है, ये मेरा है। अपने अपने शिकार होते हैं ना, अब दोनों का बाण लगा है, किसने मारा, ये प्रतिष्ठा के विषय हो गया ना। लो अर्जुन कहता है मैंने मारा, मेरा शिकार है। शिव कहते हैं किरात भेषधारी शिकारी भेषधारी शिव कहते हैं मैंने मारा है, मेरा है। तो दोनों के बीच में घमासान हो गया। कहा है कि अब दोनों लड़ाई करते हैं, जो जीतेगा उसका है, जा। अर्जुन ने चुनौती दी, भगवान शिव ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूं, चलो लड़ाई करते। अब शिव और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध, शिवजी बाण मारते हैं, अर्जुन बाण मारता है, लड़ाई करते करते अर्जुन की युद्ध कौशल्यता देखकर भगवान शिव को बड़ा मन ही मन प्रसन्नता हुई, क्या बढ़िया चला मिल गया है कुशल। तब इसका तो अंत होगा नहीं, भगवान शिव ने कहा कि बेटा यूं तो मैं तेरे से हारने वाला नहीं हूं, यूं तो मैं तेरे से हारने वाला नहीं हूं, त्रिपुरासुर को एक चक्कर में ही तृण बना दिया, राख बना दिया, तो किस खेत की मूली है। एक बाण से त्रिपुरासुर को मार डाला तो किस खेत की मूली है भाई। लेकिन मैं तेरे युद्ध कौशल्यता को देखकर मैं प्रसन्न हूं, तो धनुष बाण के लिए तपस्या करने आया है और तेरी युद्ध कौशल के परीक्षा के लिए मैंने ये सब नाटक किया है। ये सुअर कोई और नहीं, देख ले, और ये शिकारी भील आदिवासी किरात ये कोई नहीं, मैं ही हूं। तुझे मेरे से धनुष बाण की आवश्यकता थी, पिनाक धनुष न गांडीव धनुष, ले मैं खुश हूं प्रसन्न हूं ले जा। शंकराचार्य जी कहते हैं अर्जुन ने यदि दो चार बाण न मारी होती तो शिव प्रसन्न होते ये देख लो क्योंकि मैंने आपको नमस्कार किया, आप खुश नहीं हो रहे हैं, नति भीर नुति भी नमस्कार भी कर रहा हूं, स्तुति भी कर रहा हूं, पूजा विधि भीर अनेक विधियों से आपकी अर्चना भी की और ध्यान योग समाधि भी बहुत बार ध्यान भी लगाया, फिर भी न तुष्ट, फिर भी तुम प्रसन्न नहीं हुए हो। तो अब तो एक ही विकल्प रह गया है, अर्जुन ने जो किया है वही हमको भी करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा धनुष बाण और दो चार तीर का प्रहार करेंगे, तो धनुष बाण से ही तुम्हारी बुद्धि टिकाने आएगी, तब दर्शन देने आओगे अर्जुन को जैसे दिया है। क्या अब तो बदा तुम ही खाओ, शंकराचार्य जी कह रहे हैं बदा बदत्ति प्रीतिकरम, तुम्हारे लिए जो प्रसन्नता हो जो अच्छा लगे मैं उसी का प्रयोग करूंगा, तथा करोमी। दूसरा उदाहरण मुसलेन, तुम्हारी बुद्धि जब गणेश ने एक मुसल मारी थी तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ गई थी है? अब ये प्रसंग पुराण का ही है, पुराण का ही प्रसंग था, शंकराचार्य जी इस बात को जानते थे इसलिए कह दिए। द्वारपाल के रूप में पार्वती ने गणेश को रखा था, कहा किसी को घुसना नहीं देना कह दिया किसी को घुसना नहीं देना। अब गणेश जी मुसल लेकर बैठे थे दरवाजे में, अब शिवजी समझते हैं कि हमारे घर हमको जाने में क्या आपत्ति है भाई, उनको पता ही नहीं था कि पार्वती चौकीदार रखती है, जब गए थे तो कोई था नहीं है? इस बीच में गणेश पैदा हुए उनको रख दिया उन्होंने चौकीदार है, किसी को घुसना नहीं देना बोल दिया। तो शिवजी जब कहीं घूम फिर कर आए सीधे अपने घर प्रवेश करने लगे तो गणेश ने अपना बड़ा पेट अड़ा दिया दरवाजे में, समझे कि नहीं? कौन हो तो तुम तो अनुमति बिना जा नहीं सकते हो, रोक दिया। हाँ, बोले तो कौन है? बोले मैं इस घर का मालिक हूं। अरे हमको पता नहीं तुम मालिक हो कि नौकर हो। हम तो ये जानते हैं कि हम जब पैदा हुए बाप को तो देखा नहीं था, मां को देखा है कि नहीं? बोलो, गणेश बाप से पैदा हुए कि मां से पैदा हुए? हमने तो देखा नहीं बाप को, तो हमारे को तो हमारी मां ने हमको पैदा किया है, और मां ने कहा दरवाजे में किसी को घुसने नहीं देना, हम उसके आज्ञा पालक हैं, अंदर मां है, हम तुम्हें जाना नहीं देंगे। शिवजी ने कहा कि मेरे ही दरवाजे में खड़े होकर मेरे घर में मुझे रोकता है, ये कहां से आ गया ये? क्योंकि शिवजी ने भी देखा नहीं था उसको पहले। घमासान हो गया, लड़ाई हो गई, घमासान करते करते भगवान गणेश ने शिवजी को मारा मुसल दाम से। शिवजी को बड़ा भारी चोट लगा, तो बड़ा खतरनाक है, देखने में तो छोटा है लेकिन है तो खतरनाक। अंत में उसका गर्दन ही काट दिया शिवजी ने। खूब मुसल खाने के बाद तब जाकर गर्दन काटा। तो अंदर गए तो पार्वती आराम से मस्त बैठी थी। शिवजी ने कहा कि ये क्या बवाल खड़ा कर रखा है दरवाजे में, किसको रखा था? बोले वो तो हमारा बेटा है, कहां से आ गया हमारा बेटा? वो तो हमको अपने घर घुसने नहीं दिया उसने। बोले अच्छा, उसने घुसने नहीं दिया तुम्हें? हां बेचारा, हमने कहा था किसी को आने नहीं देना। ये लेव जी, वो तो आज्ञाकारी था, हमने कहा था, फिर कैसे आए? पार्वती ने पूछा फिर कैसे आए? बोले मारा उसको तब जाकर वो मर गया, तब घुस पाए, नहीं तो वो हमको अंदर घुसने नहीं आए। मर गया, सर्वस्व खत्म हो गया भाई। अब विलाप करने लगी, वो तो अपना पुत्र था, तुमने क्यों मारा उसको? बोले हमको रोका, घमासान युक्त हुई। तुम देखती नहीं हो उसने कितने मुसल मारी है, हमारे हाथ सूज गए, पांव सूज गए, कमर सूज गया है, बड़ा भारी युद्धा था वो। जो हो बेटा मरा है उसको तुम जिंदा करो, पुनर्जीवन दो, तब तो ठीक होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ है। भगवान शिव ने अपने गणों को कहा जाओ, जो मिले पहले उसी को सिर काट कर लाओ, मैं उसको जिंदा करता हूं। तो शिवगण भागे आज्ञा से, तो एक बड़ा भारी हाथी मस्त सिर हिला के बैठा हुआ था, तो उसी का सिर काटा लाया और शिवजी को दिया, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कर दी है। आज वैज्ञानिक लोग बड़ा रिसर्च कर रहे हैं ना कि संभव है कि नहीं, सिर काट के फेंकने के बाद दूसरा सिर जोड़े करना संभव है कि नहीं, वैज्ञानिक लोग प्रयोग कर रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण, बहुत से अंगों का प्रत्यारोपण में सफलता मिली है, लेकिन सिर काट के फेंका और दूसरा सिर जोड़ दिया है, तभी कुछ दिन 10-12 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में आया था, अमेरिका का कोई वैज्ञानिक लोगों ने मेंढक में वो रिसर्च करके देखा, एक मेंढक का सिर काट के फेंका और दूसरे मेंढक का सिर काट कर सर्जरी करके जोड़ा तो कुछ समय वो मेंढक जिंदा रहा जोड़ने के बाद। अब वैज्ञानिक लोग विचार कर रहे हैं कि अब ये प्रयोग मेंढक में जो है कुछ सफलता मिली है, कुछ समय तो जिया ना, घंटा दो घंटा। अब बंदर में प्रयोग करने जा रहे हैं क्योंकि मनुष्य का बाप है ना वो। डार्विन तो यही कहता था ना, हमारा पूर्वज है वो। तो बंदर में प्रयोग करने जा रहे हैं कि एक बंदर का सिर काट के फेंक दें और दूसरे बंदर का सिर काटकर जोड़कर फिर सर्जरी करें कि देखते हैं वह बंदर जिंदा होता है कि नहीं, सफलता मिलती है कि नहीं। वो प्रयोग ही तो है, रिसर्च तो है, हजार प्रकार के अनुसंधान कर रहे हैं और ये अनुसंधान में लाखों करोड़ों प्राणी मर रहे हैं और वो न जब तक नहीं करोगे तब तक ये है ना। तो अनुसंधान में तो होता ही है, रिसर्च में तो होता ही है, प्रयोग ही है। दया और करुणा करोगे तो वो कोई रिसर्च ही नहीं हो पाएगा, सफलता मिलती कि नहीं। दवाई बनाया फिर उसको पहले मेंढक में प्रयोग करो, फिर बिल्ली में करो, फिर कुत्ते में करो, फिर बंदर में करो, फिर मनुष्य में करो, रिएक्शन होते जाते, कितने मनुष्य मरते जाते हैं, मरे फिर उसका रिसर्च करो, फिर उसमें परिवर्तन करो, फिर प्रयोग करो। तो जब तक वह बिल्कुल ठीक ठाक न हो तब तक बाहर न, उस मेडिसिन को बाहर प्रयोग में नहीं लाते, मरते। तो भगवान शिव सृष्टि के आदि के पहले सर्जन है, इसलिए संस्कृत भाषा में भी सर्जन ही बोलते हो। अंग्रेजी में काट चीर फाड़ करने वाला सर्जन होता है, है? संस्कृत में भगवान शिव सर्जन है। सर्जन माने सृष्टिकर्ता अर्थ में वहां सर्जन है, लेकिन अंग्रेजी भाषा से भी वो सर्जन ही है। फर्स्ट सर्जन है, गणेश का सिर काटा और हाथी का सिर जोड़ दिया, बस सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर है वो। एक लोमड़ी टाइप का होता है जीव, लोमड़ी करके लोमड़ी नहीं है, चूहा करके चूहा भी नहीं होता, चूहा के शेप का होता है, थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा लंबा होता है, वो सर्पभक्षी है। क्या बोलते हैं? भंगूसा। वो सर्पभक्षी है, बड़ा सर्जन है वो। सर्प देखता है तो उसको फट से पकड़ लेता है और बीच का भाग पूरा खा जाता है, मुख अलग पूंछ अलग, फिर बीच का भाग खा के दो तीन टुकड़ा बनाता है उसको, मुख का भाग अलग, पूंछ का भाग अलग, बीज का भाग खाने के बाद फिर एक वनस्पति उसको पहचान है, उस वनस्पति को लाकर फिर सिर और पूंछ को जोड़ देता है। सर्प जिंदा, हाँ तुमको विश्वास नहीं है, क्या विश्वास है, सर्प करता है वो। सर्प झुमका क्यों होता है, हाँ? जोड़ देगा सर्प, और सर्प जिंदा है, वह झुमके क्यों चला जाएगा, हाँ? इस शास्त्र में प्रसिद्ध है, प्रमाण है। तो भगवान शिव ने भी यही किया है। प्रसंग क्या चल रहा है, भगवान शिव जब गणेश के द्वारा मुसल का प्रहार हुआ तब जाकर शिव प्रसन्न हुए। तो शंकराचार्य जी कहते हैं अब तुम्हें प्रसन्न करने के लिए एक ही उपाय बचा है, अब मुझे भी मुसल उठाना ही पड़ेगा। गुस्सा का साक्षात दर्शन दिया, खुश हो गए और फिर लाके सिर जोड़ दिया। गुस्से होते तो मर जा, हमको क्या लेना देना, जीवनदान देते। बाद में देखो ये रहस्य बता रहे हैं, शिवजी ने कहा कि देवी ये हाथी का मुख इसको जोड़ दिया गया ये अकारण नहीं है, ये जो घटना घटी है अकारण नहीं घटा है, इसका मूल आधार क्या है पता लगाना चाहिए। तब जब वेद का अनुसंधान किया शिव जी ने पार्वती के सामने, पुराण में प्रसिद्ध है, जब वेद का अनुसंधान किया तो गणेश को गजाननम करके संबोधन किया। जो गणाध्यक्ष होता है वो गजानन होना चाहिए। अब इसको मैं गणाध्यक्ष बना दूंगा, गणपति बना दूंगा, और जो गणपति होगा वो गजानन होगा, नरानन कहां से होगा? नरानन का गणाध्यक्ष हो सकता है? गणपति हो सकता है? गणों का स्वामी? तुम अपने पुत्र को गण का पति, सर्वश्रेष्ठ गणाध्यक्ष भी चाहती हो और हाथी का सिर न हो ये चाहती हो? ये तो संभव ही नहीं है। वेद में पहले लिखा हुआ है, इसलिए हमने वेद में लिखे हुए अनुसार ये घटना घट गई है। नहीं तो गधा मिल गया होता तो क्या करते हो? तुम्हारा बेटा गणाध्यक्ष हो पाता है? हमने जब कहा कि सिर लेके आओ तो हाथी का ही सिर मिला उनको, मेरे गणों को गधे का मिलता, घोड़े का मिलता। जब विष्णु को सिर जोड़ने की समय आई तो घोड़े का मिल गया है। कौन था आएगी? विष्णु है। हयग्रीव नामक राक्षस को मारने के लिए हयग्रीव ने वरदान मांगी थी, मेरी मृत्यु मेरे से ही हो, हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव से हो, वरदान मांगी। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दी। बोलो, अब तो वो सोचने लगा कि मैं अपने को मारता नहीं हूं, फिर मुझे और दुनिया कौन मारेगा? तो भगवान तो आराम से सो रहे थे विष्णु। देवी भागवत का प्रसंग है, देवी भागवत का ये प्रसंग है।
0: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Narayana.

सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित सज्जनों, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में 70वें अध्याय में भगवान ने तप का स्वरूप बताया है। यद्यपि और भी बातें बताई है, किंतु उन बातों में से हम लोग केवल तप के बारे में विचार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने 6 श्लोकों में तप का स्वरूप बताया है। 70वें अध्याय के 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक देखिए तप क्या है, तप किसको कहते हैं। प्रायः हम लोग यही समझते हैं शरीर को सुखा देना ही मानो तप है, भूखे रहना ही तप है, एक एक महीना तप तक भूखे रहो, जितना ज्यादा शरीर को कष्ट दिया जाए, लोग समझते हैं कि वो बहुत बड़ा तप है। देखिए ये सब आध्यात्मिक बातें हैं। हम लोग इन बातों को अपने ढंग से प्रत्यक्ष रूप से तर्क से बुद्धि से परस्पर के विवाद से क्या कार्य है क्या अकार्य है उन बातों का निर्णय नहीं कर सकते हैं। जो बात प्रत्यक्ष दृष्ट है उसमें तो हम कुछ कह सकते हैं कि ये चीज ऐसी है वैसी है, किंतु जिसका फल अदृष्ट है, पारलौकिक है, यहां तक कि मोक्ष है,

0: के फल में जो कारण साधन है वो साधन भी अलौकिक ही है। इसलिए प्राय हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये जो आत्मा का ज्ञान है वो क्या बिना कष्ट नहीं हो सकता, क्या कुछ किए बिना बैठे बैठे नहीं हो सकता, क्या एयर कंडीशन में आराम से बैठे बैठे इसकी चर्चा करते हुए आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए। क्यों ये लोग हिमालय में जाते, आखिर क्या आवश्यकता है? हमारे मन में यही प्रश्न उठते रहते हैं। कहते हैं चाहे जैसे कर्म करो वो पाप हो या पुण्य हो इससे मतलब नहीं है, क्यों उससे सुख क्यों नहीं मिलेगा? कई एक लोग जो है पाप कर्म करते हैं फिर भी सुखी होते हैं, दिखता तो ऐसा ही है। पाप करने वाले दुखी है, पुण्य कर्म करने वाले पाप कर्म करने वाले सुखी है और पुण्य कर्म करने वाले दुखी है। इससे तो लगता है कि यदि सुखी होना है तो सबसे ज्यादा मार्ग अच्छा है शॉर्टकट, है कि नहीं? और शॉर्टकट मार्ग जो है वो पाप के दरवाजे से ही प्रवेश किया जा सकता है, वो बहुत बड़ा दरवाजा है, खुला ही रहता है, वहां कभी कोई पहरेदार नहीं रहता है, चाहे जब उसमें प्रवेश कर लो। पुण्य के मार्ग में तो बहुत बड़ी बात है, पहरेदार भी है, चौकीदार है, 24 घंटा कोई न कोई रोकेंगे टोकेंगे, लेकिन पाप कर्म के लिए है कुछ ऐसा? इसलिए हम लोग जो कर्म करते हैं, कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। आखिर क्यों ऐसा होता है? जब हम लोग कर्म तो कर ही रहे तो क्यों हमसे पाप कर्म में ज्यादा प्रवृत्ति होती है, पुण्य कर्म में कम प्रवृत्ति होती है, ऐसा आखिर क्यों होता है? हम लोग कर्म करते हैं और यहां तक कि कर्म किए बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते। भगवान ने तो कहा है नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। घंटे दो घंटे दिन भर की बात क्या करे, या 60 साल के बाद की बात क्या करे? 58 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं ना, तो वो बात नहीं है कि 60 साल के बाद आदमी व्यक्ति खाली हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, निष्कर्मी हो जाता है, अकर्ता हो जाता है, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं एक क्षण भर भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। कर्म को तो हम छोड़ नहीं सकते, होना ही है, तब करना क्या है? करना यह है कि अब हम करेंगे तो सही कुछ न कुछ, तो कुछ ऐसा ही करें जिससे हमको सुख की प्राप्ति होवे। तो कैसे जाने कि किस प्रकार के कर्म से सुख की प्राप्ति होती है या किस प्रकार के कर्म करने से दुख की प्राप्ति होती है, इसका निर्णय कैसे करें? कोई न कोई निर्णायक तो होना ही चाहिए। बाहर से क्रिया तो सब एक जैसी लगती है, चाहे पुण्य क्रिया हो चाहे पाप क्रिया हो, उन दोनों प्रकार की क्रियाओं में कारण जो 5 कारण भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं, वो 5ों कारण तो दोनों में बराबर है। 18वें अध्याय में भगवान ने बताया कि कोई भी कर्म करो तो उसमें 5 कारण होते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, पंचेते तस्य हेतवः। ये भगवान ने बताया। देखो, कर्म करने के लिए वो कर्म चाहे पाप हो या पुण्य हो, पहले क्या चाहिए? अधिष्ठान चाहिए। अधिष्ठान का क्या अर्थ है? शरीर। शरीर नहीं होगा तो कर्म होगा? नहीं होगा। शरीर चाहिए। फिर कर्ता चाहिए, चित जड़ ग्रंथि अहंकार, कर्तृत्व बुद्धि होनी चाहिए कि नहीं, कि मेरे को करना। अधिष्ठानम तथा कर्ता, मैं कर रहा हूं, देह के साथ अहम बुद्धि, देह में मैं बुद्धि होगी तब जीव अपने को कर्ता मानता है। तो वो एक तो हो गया शरीर, दूसरा कारण है, दूसरा हेतु है कर्ता भाव, तीसरा कारण भगवान ने बताया करणम च पृथक विधम। पृथक विधम माने जो भिन्न भिन्न करण, हमारे पास कितने करण है? दस करण है। कितने? दस। करणम का अर्थ है इंद्रियादि, पांच ज्ञानेन्द्रिय है, पांच कर्मेन्द्रिय है। देखिए, कुछ भी करना है, कर्म करना है, चाहे वो पाप कर्म या पुण्य कर्म, वो समझ के चले, वो करना है तो यही चक्षुरादि इंद्रिया काम करती है, यही कर्मेन्द्रियादि काम करती है। पाप करने में भी यही ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया काम करती है, पुण्य कर्म करने में भी यही ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेन्द्रिया, अलग तो कोई साधन नहीं है ना। तो ये हो गए करण। और विविधाश्च पृथक चेष्टा, पृथक विध विध प्रकार की चेष्टा, यानी कि क्रिया समझ लीजिए। क्रिया किससे होती है? हमारा शरीर जो वो चल रहा है, फिर रहा है, उसमें कारण क्या है? प्राण। प्राण नहीं होते तो हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी कुछ नहीं कर सकते, कर्म इंद्रियों के द्वारा भी कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, कर्म इंद्रिय के द्वारा कुछ उठाना है तो क्या चाहिए? कहते हैं ना, दम चाहिए। तुम में दम नहीं है, नहीं कहते? अभी मैं कर लेता हूं, वो दम से उठाता है। दम क्या? वही तो प्राण। दम कोई प्राण से जुदा थोड़ा? इसलिए आप उठाते हैं तो पहले श्वास भरते हैं, कुंभक करते हैं, और तभी कुछ चीज उठा पाएंगे। ये तो उठाने की या चलने की क्रिया में ये प्रतीति हो जाती है, किंतु चक्षुरादि इंद्रिया के द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, तो उन सब क्रिया में प्राण कारण होता है। प्राण के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। देख लीजिए, यदि निष्प्राण शरीर है तो उससे कुछ क्रिया होती है? नहीं होती है। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्रिया में ये प्राण भी कारण है। विविधाश्च पृथक चेष्टा। और पांचवा भगवान ने कहा देव है। देव क्या है? देव यानी कि देवता। देखिए, आप लोगों को पता है, सालों से सुन रहे हैं तो इतना तो पता ही है कि हम जो भी क्रिया करते हैं तो क्रिया के पीछे देवताओं की कृपा रहती है। यदि देख रहे हैं तो किसकी कृपा से? देखिए, अभी हम लोग यहां पर बैठे हैं, अंधेरा हो जाए, ये खिड़कियां भी बंद है, पर्दे पर्दे सब बंद है, और बिजली चली जाए, दिन में तो फिर भी कुछ उजाला आएगा, यदि रात का टाइम है, अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात लीजिए, उसमें बिजली चली जाए तो क्या हम मैं तुम आपको देख पाऊंगा और आप लोग मेरे को देख पाएंगे? तो क्या हमारी आंखें खराब हो गई? नहीं, आंखें तो बिल्कुल भली चंगी है, किंतु कुछ ऐसा हुआ जिससे हम देख रहे थे वो प्रकाश चला गया। ये प्रकाश क्या है? देवी तो तेज है, प्रकाश क्या है? तेज। और हमारे यहां तेज देव को क्या नाम दिया है? अग्नि देवता, सूर्य देवता, कुछ भी कीजिए, वो सब एक ही है। यज्ञ में हवि किसको दी जाती है? अग्नि को। क्यों? हमको देखने में कारण है। इसलिए ये तो केवल आपको एक इंद्री के लिए बताया, सभी इंद्रियों में समझ सकते हैं कि हमारे संपूर्ण शरीर में हमारे इंद्रियों के जो गोलक है उन सभी गोलकों में एक एक देवता रहते हैं। देवता का मतलब ये नहीं, देवता का मतलब केवल ये नहीं कि जिसको दो चार हाथ हो, हाथ में खप्पर हो, परशु हो, कृपाण हो, तलवार हो, त्रिशूल हो। समाज में तो यही अर्थ रूढ़ हो गया हुआ, किंतु जब इस प्रकार का विचार करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि देवता का अर्थ है जो देते रहे, कभी ले नहीं। जो देने का है जिसका स्वभाव है, इसलिए भी व्यवहार में जिसका देने का ही स्वभाव है उनको क्या कहते हैं? ये तो देव व्यक्ति है, जो देता ही रहता है, उसको कोई मतलब नहीं कि मेरे को वापस दे या ना दे। जिसके पास है वो देता रहता है, तो उसको लोग कहते हैं तो देव है। तो देखिए, ये अग्नि वगैरह देवता है, वायु वगैरह वायु जिसके द्वारा हम स्पर्श कर सकते हैं, दिशा के द्वारा हम सुन सकते हैं, वरुण देव की कृपा से हम बढ़िया बढ़िया जो है भोग चख सकते हैं। राजभोग का आस्वादन करना है तो किससे करेंगे? चक्षुरादि इंद्रिया के द्वारा ही तो, रसना इंद्रिय के द्वारा ही तो। वरुण देव की कृपा नहीं होगी तो यह नहीं होगा। तो अभिप्राय मेरा यह है कि ये कर्म के पीछे ये पांच कारण होते हैं, अधिष्ठान शरीर, कर्ता भाव, इंद्रियों की चेष्टा, प्राण की चेष्टा, और ये अग्नि आदि जो देव है उन देवताओं की कृपा। ये कृपा जो है बनी रहती है। भगवान ने कहा न्यायम वा विपरीतम वा, चाहे व्यक्ति न्यायम यानी कि धर्म कर्म करता है या उससे विपरीत अधर्म करता है, तब भी कारण तो ये पांचों ही है। अब ये पांचों जो है कारण तो सब दोनों प्रकार के कर्म में है ही है, लेकिन अब हमको न्यायम करना है या भगवान ने जैसे कहा विपरीतम या अधर्म, न्यायम का है धर्म, विपरीतम है अधर्म करना है, उसमें हम स्वतंत्र हैं। अब हमारा जो स्वातंत्र है उस स्वातंत्र को हम पुण्य कर्म में भी लगा सकते हैं और पाप कर्म में भी लगा सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे? हमारे वहां भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या कार्य है यानी कि क्या न्यायम है यानी क्या धर्म्यम है, और क्या अकार्यम यानी कि अन्यायम है, अधर्म्यम है, पाप कर्म है, हे अर्जुन? उनका प्रत्यक्ष से, जैसे मैंने पहले बता दिया कि तर्क, युक्ति, उपपत्ति, प्रत्यक्ष या बुद्धि बल से इसको ये निश्चय नहीं किया जा सकता है। तो निश्चय किससे होगा? शास्त्र से होगा। किससे? शास्त्रम प्रमाणम। कार्य और अकार्य में प्रमाण क्या है? शास्त्र ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष से हमको लगता है कि अरे इसमें क्या क्या दिक्कत है, ये करने में अच्छा ही तो है, लेकिन शास्त्र में जिसका निषेध है तो वो पाप कर्म है। बाहर से यदि लगता है कि अरे ये तो अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरे को नहीं करना है, किंतु वो शास्त्र के द्वारा विहित भी हो सकता है। हिंसा के बारे में ले लीजिए, हिंसा के बारे में हमारे वहां बहुत सारी विचारधारा चली, यहां तक कि हिंसावादी और अहिंसावादी दोनों की बातें चली। क्या हिंस्य है, क्या अहिंस्य है, उसके बारे में कई लोगों ने शास्त्र की अनदेखे करके निर्णय करना चाहा। तो जो अहिंसावादी थे उन्होंने भी शास्त्र का इनकार किया और कहने लगे कि किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किंतु अब ये कहां तक, तो उनके पास कोई हद नहीं है। जिसकी कोई हद नहीं है उसको आप बटोर नहीं सकते कि ये इतना मैंने कर लिया। और जिन्होंने ये अहिंसा या हिंसा का निश्चय वेद के द्वारा किया, वेद प्रमाण, शास्त्र प्रमाण को सामने रख करके किया, तो उनके वहां तो ये हद हो गई कि ये इतनी हिंसा है और इतनी अहिंसा है। इससे व्यवहार की भी रक्षा हुई और शास्त्र प्रमाण की भी रक्षा हुई। जिन्होंने अहिंसा और हिंसा का अर्थ वेद को इनकार करते हुए अपने तर्क से किया, वहां व्यवहार की रक्षा नहीं है। और व्यवहार की रक्षा नहीं है इसलिए खुद को व्यवहार नहीं करना है, इसलिए दूसरे के कंभों के ऊपर बैठ करके वो अपना अव्यवहार्य धर्म चला रहे, किंतु जिसके कंभे पर बैठे हैं वो चल भी तो रहा है, और उनके कंभे पर बैठ करके हम कहेंगे मैं तो सिर हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ये तो भागेड़ू वृत्ति कहते हैं इसको। इसलिए अभिप्राय यह है कि क्या कार्य है, क्या अकार्य है, उसमें शास्त्र प्रमाण है। क्या है? इसलिए उसी यही प्रसंग के बारे में कहता हूं कि कई लोग जो आजकल भगवान श्री कृष्ण को हिंसावादी कहते हैं, वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने तो देखो अर्जुन अहिंसावादी था, उनकी विचारधारा बड़ी अच्छी थी कि किसी को मारना नहीं चाहिए, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती मानो अर्जुन को इस तरह से उकसाया कि अर्जुन मारने के लिए तैयार हो गया और महाभारत का ऐसा महाभयंकर युद्ध हुआ कि कई एक केवल मनुष्य ही नहीं, कई और भी जीव जिसकी कोई गणना नहीं है इतने लोग मर गए। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बड़े हिंसावादी थे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने शास्त्र का इनकार किया वहां अहिंसा की कोई हद नहीं है। हमारे यहां ये हद है कि किसको हिंसा कहते हैं, किसको अहिंसा कहते हैं। हमारे वहां ये शास्त्र के द्वारा ये कह सकते हैं, शास्त्र के द्वारा ये निश्चय है कि किसको हिंसा और किसको अहिंसा कहेंगे, और जिसके वहां निश्चय नहीं है उन लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो डॉक्टर को भी हिंसावादी कहना पड़ेगा। वो जो लड़ रहे हैं सरहद के ऊपर, जो गोली रात भर जो बंदूक ताने खड़े हुए हैं देश की रक्षा के लिए, उनको भी हिंसावादी कहना होगा, ठीक है कि नहीं? इसलिए क्या कार्य है क्या अकार्य है, उसमें प्रमाण क्या है? शास्त्र। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारहसि। अर्जुन, क्या कार्य और अकार्य को शास्त्र के द्वारा जान करके करना चाहिए, ऐसा नहीं जो हमको अच्छा लगे वो करो और अच्छा नहीं लगता है तो न करो, ऐसा नहीं। चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, शास्त्र में जिसको विहित रूप से कहा है तो उनका अनुष्ठान करना है, और चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, शास्त्र में जिसका निषेध है, निषेध किया है, तो उनको नहीं करना है। तप के बारे में लीजिए कि हम लोग तप कर रहे हैं किंतु मनमाने ढंग से कर रहे हैं, या शास्त्र में जो विहित रूप से कहा है वैसे कर रहे हैं, वो ऐसा हमारे सामने ऐसा निर्णय नहीं है। इसलिए करना क्या होगा? शास्त्र विधानोक्तम तब करना चाहिए। शास्त्र क्या है? हमारे पास यदि जैसे सामान्य ढंग से कहते हैं कि हाथ वगा साधन, शास्त्र तो शास्त्र की परिभाषा करेंगे तो समय भी लग जाएगा, किंतु शास्त्र का अर्थ आप लीजिए, गीता ही शास्त्र है। क्या है गीता? क्या है? शास्त्र है। और उपनिषद है। गीता क्या है? उपनिषद। शास्त्र का अर्थ होता है शासनात शास्त्र, जो शासन करे उससे कहते हैं शास्त्र। पूर्वाचार्यों ने बताया, भट्टपाद जी कहते हैं, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृत केन वा पुंसाम येनोपदिश्येत तत्शास्त्रम इत्य अभिधीयते। प्रवृत्ति या निवृत्ति का उपदेश करें। क्या प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थ है? यही कार्य और अकार्य, क्या कृत है क्या अकृत है वो बताए। ये शास्त्र कहते हैं कि ये करो ये न करो, ये करने योग्य है या ये नहीं करने योग्य है। पुरुष के लिए जो उपदिश्य बात है उसको कहते हैं शास्त्र। तो ये इस प्रकार से गीता शास्त्र है। अब यदि हम कर रहे हैं, भगवान ने तो प्रसंग से ये बताया कि शास्त्र विधान से ही कर्म करना चाहिए, तो अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन पूछने लग गया कि भगवान, संसार में यावत प्राणी तो शास्त्र पढ़े हुए है नहीं, कार्य अकार्य में शास्त्र प्रमाण है ये बात निश्चित, किंतु यावत प्राणी शास्त्र तो पढ़े हुए है नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? श्रद्धा से करते जा रहे हैं। किससे? श्रद्धा से। तो श्रद्धा से कर रहे हैं कि क्या वो श्रद्धा तो है ही उसमें, तो श्रद्धा से कर रहे हैं। अब शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं किंतु श्रद्धा से कर रहे हैं, तो वो जो उनके द्वारा श्रद्धा से किया गया जो कर्म है, वो कर्म उनके लिए ज्ञान का कारण बनेगा कि नहीं? कर्म के द्वारा अंतकरण शुद्धि के मार्ग से वो आत्मज्ञान का भागी होगा कि नहीं? या तो उनकी जो निष्ठा है वो सात्विक निष्ठा मानी जाएगी, राजसिक निष्ठा मानी जाएगी, या तामसिक निष्ठा मानी जाएगी? भगवान बताइए, किसके बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानता। हम लोग बैठे हुए हैं, क्या सब लोग शास्त्र जानते? क्या सब पढ़े हुए हैं क्या? हम क्या हम वेदाध्ययन कर रहे हैं? इस समय जो शिक्षा जो चल रही है, क्या वेदाध्ययन शिक्षा है?
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 34. Thank you.

0: சிவாய. யூ ஆர் லிசனிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரிய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: கௌன் சி அவஸ்தா மே ஹோதா ஹை தோ க்யா கஹோகே? ஜாக்ரத். யே மே ஹூம் யே அனுபவ் கப் கர்தே ஹோ? கஹா ஜாக்ரத் அவஸ்தா மே. ठीक है ना? तो अब मैं हूं ये जो अनुभव आप जागृत अवस्था में करते हो, तो आपकी जागृत क्या हो गई? एक अवस्था हो गई. किसकी हो गई? कहा हमारी. कहा यही अवस्था है कि और भी कोई अवस्था? कहा और भी है. कहा एक और अवस्था है. कहा कौन? कहा स्वप्न अवस्था. कहा और? कहा एक और है. कहा कौन? सुसुप्ति. कहा फिर उससे आगे भी कोई अवस्था? कहा एक और है. वो कौन है? तो उसका नाम क्या दे दिया? तुरी. ये वेदांत का ही रूप है. अब जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये क्या बतला दी? अवस्था. और तीन अवस्थाओं का ही विशेष रूप से निर्वचन किया. और चतुर्थ को तो जो कहा गया तो उसका नाम ये दे दिया, वो क्या है? तुरी. तुरी शब्द का मतलब क्या? तुर से होने वाली. तुरे भवायते तुरीया. तुर क्या है? तो तुर धातु है पूर्णार्थक. तुर धातु क्या है? पूर्णार्थक. पूर्ण को बतलाने वाली है कौन? तुरी धातु. उस में कोई परिवर्तन संभव नहीं. लेकिन तीनों अवस्थाओं का तो हम लोग अनुभव करते, प्रत्यक्ष रूप से, अनुमान रूप से, है अनुपलब्धि रूप से ये करते हैं. लेकिन इस चतुर्थ अवस्था का हमें अनुभव नहीं होता. चतुर्थ अवस्था का अनुभव कराने के लिए ही जिन पदों का, जिन वाक्यों का निरूपण किया गया है, ऐसे वह पद और वाक्य जो है प्रमाण है. और उन पद वाक्य प्रमाण कुब्बालों से जो सिद्ध होता, उसी का नाम है वेदांत. उसी का नाम क्या है? वेदांत. अब थोड़ा सा विचार और करो. जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, तो इन्हें ये नहीं कहा कि मैं जागृत हूं, मैं स्वप्न हूं, मैं सुसुप्ति हूं, ये नहीं कहते हो. कोई व्यक्ति ये कहता? लोक में भी प्रयोग जब आप करते हो तो जागृत अवस्था वाला मैं, स्वप्न अवस्था वाला मैं, सुसुप्ति अवस्था वाला मैं. स्वप्न मैंने देखा. स्वप्न क्या है तुम्हारे लिए? कहा दृश्य. देखा शब्द कहोगे तो क्या कहोगे? दृश्य तो बना. मैं सोया. सोने का अनुभव किसने किया? कहा मैंने. वैसे ही जागृत में व्यवस्था वाला. तो जागृत भी तुम्हारी एक अवस्था है, स्वप्न भी एक अवस्था है, और सुसुप्ति भी एक अवस्था है. जागृत तुम नहीं हो, स्वप्न तुम नहीं हो, और सुसुप्ति भी तुम नहीं हो. तो क्या है? कहा ये मेरी अवस्थाएं. अवस्था कह दो, या इस प्रकार से कह दो, आज मैंने जो है पेंट शर्ट धारण किया, तो पेंट शर्ट किसका? कहा मेरा. कल जो है मैंने कुर्ते पाजामे को धारण किया, तो कुर्ता पाजामा भी तुम्हारा. कुर्ते पाजामा वाले तुम हैं. पेंट शर्ट वाला मैं, कुर्ते पाजामा वाला मैं हैं. और फिर कुछ और पहन लिया तो कहा उसके वाला मैं. अब आप विचार करो. तो ये जो आपने धारण किए, वो धारण जो जो तुमने किए हैं, वो तुम नहीं हो. कि हो? और एक रूप से समझ लो, यहां से आपने यात्रा प्रारंभ की, और यात्रा प्रारंभ की, आप दिल्ली या हरिद्वार कहीं जाना चाहते हैं, तो जब यात्रा करते हो तो दिल्ली प्राप्त कब होती? कहने लगे यहां से चलेंगे तो ट्रेन में जाएंगे, बड़े बड़े स्टेशन पड़ेंगे, भोपाल पड़ेगा, इटारसी पड़ेगा, है मथुरा आदि पड़ेगा, ये सब पड़ेंगे। अब आप विचार करो, आप उन स्टेशनों में गए और स्टेशनों में यदि रुक गए तो यात्रा हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन यात्रा करते हो तो वो स्टेशने पड़ना भी निश्चित है, ठीक है, लेकिन वो स्टेशन को ही तुम मान लो कि यही मेरा लक्ष्य और यही मैं हूं, तो कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। तो अब आप कोई कह दे कि मैं जागृत हूं, जागृत क्या है? एक स्टेशन है, अहर्निश व्यक्ति इन्हीं से तो गुजर रहा, ये भी एक स्टेशन है और सुसुप्न भी एक स्टेशन है और सुसुप्ति भी एक स्टेशन है। लेकिन विडंबना की बात यह है, हम इन स्टेशनों से होकर के लक्ष्य तक जाना चाहते हैं, लेकिन आगे की जो स्टेशन पड़ेगी जो लक्ष्यात्मक है वहां तक पहुंचते नहीं, इन्हीं से वापस आ जाते। यही तो हो रहा, इन्हीं से हम वापस आ जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो चतुर्थ जो है उसकी हमें प्राप्ति नहीं हो पाती। अच्छा, और विचार करो, ये सभी जानते कि स्टेशन मैं नहीं हूं, स्टेशन के धर्म भी हैं, स्टेशन पर भी जो कुछ भी है, कैंटीन आदि लगे हुए हैं, कुर्सी मेजें पड़ी हुई हैं, उसका लाभ तो आप लेते हो, उनका उपयोग तो आप करते हो, लेकिन वो तुम नहीं हो। तो ये सब मैं नहीं हूं, मैं इनसे कोई अलग ही हूं, ये जानते हो। लेकिन जागृत में कभी ये विचार किया कि ये जागृत मैं नहीं हूं? ये तुम कहो कि जागृत ही तुम हो तो तुम रहते हो, लेकिन तो ये अवस्था रहनी चाहिए, लेकिन स्वप्न में ये नहीं रहती, तो क्या स्टेशन छूट जाती? नहीं, यात्रा जब करते हो तो स्टेशन छूटेगी। तो अब जब आगे की यात्रा होती है, स्वप्न में पहुंचते हो तो जागृत छूट जाती, और स्वप्न से जब आगे बढ़ते हो तो सुसुप्ति रूप स्टेशन पे पहुंचते हो तो स्वप्न भी छूट जाते, और सुसुप्ति से पुनः जागृत में आ जाते हो तो सुसुप्ति भी छूट। ये अवस्थाएं आती और जाती, स्टेशन बात। लेकिन हम यही नहीं समझ पाते, तब यात्री कौन है, मार्गी कौन है, मार्गन करने वाला कौन है? तो हम क्या समझते हैं? हम तो जागृत को लेकर ही समझते हैं और शरीर को लेकर के, मन स्टेशन को लेकर, क्या यही मैं हूं? इससे हटकर के हमारा विचार जा ही नहीं पाता, तो स्टेशन को ही कोई समझने लगे कि मैं ही ये हूं, और उससे कोई अभिलाषा करे कि ये जो है लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, तो क्या संभव होगा? संभव नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर जागृत जो है, जागृत का अर्थ क्या है? जागृत जो शब्द, जागृत जो पद, स्वप्न जो शब्द और स्वप्न जो पद, ऐसे ही सुसुप्ति जो शब्द, सुसुप्ति जो पद, उसका अर्थ क्या? यही तो उपनिषदों में वर्णन है। जागृत किसे कहते हैं, स्वप्न किसे कहते हैं, सुसुप्ति किसे कहते हैं, ये सब वर्णन है। और सब वर्णन ही नहीं है, उसका प्रयोग भी अहर्निश हो रहा, लेकिन फिर भी हमारा तादात्म्य कहां बैठा हुआ, कहां उसी स्टेशन में बैठा हुआ, और स्टेशन में तादात्म्य रखोगे और कहो हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो हो जाएगी? हम चाहते तो हैं त्रिविध ताप की शांति हो, लेकिन जब तक आप स्टेशन को छोड़ोगे नहीं तब तक शांति होने वाली। इसलिए शास्त्र क्या कहता, श्रुति क्या कहती, त्यागे नैके अमृतत्वमानसु। किसके द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होगी? का त्याग के द्वारा। आपके लक्ष्य की प्राप्ति कब होगी? का स्टेशनों का त्याग करो, और त्याग नहीं करोगे तो तो प्राप्ति नहीं होगी। जो आपने पकड़ रखा है तो जो इसे पकड़ा वो स्टेशन है तुम्हारी, व्यावहारिक है, लेकिन उसी को पकड़ लिया, उसी में अपना जो है, लगाव कर लिया, आसक्ति कर ली, इसी को आसक्ति बोलते हैं। तो क्या होगा? तो जो लाभ प्राप्त करना चाहते हो वो नहीं कर सको। वेद तो लाभ की बात कही अंतिम, लाभ अर्थ में ही धातु है। तो जो गीता में आप सुनते हो, यम लब्धा चा परम लाभम, है ना, उसको जो प्राप्त कर लेता है, जिसे तुरी कहते हो, क्या अवस्था कहते हो, तुरी अवस्था, और उसे जब प्राप्त कर लेता है तो यम लब्धा, उसको प्राप्त करके अपरम लाभम, फिर उससे भिन्न कोई दूसरा लाभ, और कहा अधिक, उससे अधिक कोई दूसरा लाभ वो समझता ही नहीं। और जो श्रेष्ठ लाभ समझ लेगा तो फिर वो उसी को ग्रहण करेगा, अन्य का उपयोग क्यों करेगा। तो ये संकेत कर दिया। अब जो है फिर और भी संकेत कर दिया नीचे, यस्मिन स्थितो, और यदि उसमें जो है जब उस लाभ को उसने समझ लिया, प्राप्त कर लिया, तो कहा उसमें स्थित हो जाता, और उसमें स्थित हो जाता फिर कैसा स्थित होता, तो और विशेषता बतलाई, गुरुणापि न विचार लेती है, कहा फिर उससे उसे कोई विचलित, उससे उसे कोई हटा पाता, सीधा मतलब। और वहां प्रसंग आया कि बलि ने जब ये लाभ प्राप्त कर लिया तो गुरु ने क्या कहा, कहा तो ये कि गुरु की और माता पिता की वाणी को मानना चाहिए, गुरु ने आदेश भी दिया, लेकिन उसने गुरु की बात को फिर माना, उस समय न गुरु रह जाता न शिष्य रहता है? और जो है भगवान को जो है जब समझ लिया, पहचान लिया, लक्ष्य पर जब पहुंच गया, पहले तो लक्ष्य को जानता नहीं था, और जब उन्होंने बतला दिया तो समझ गया, और समझ गया तो अब उनके कहने पर भी, ये भी अर्थ है, और दूसरा ये अर्थ है, गुरुणापि न विचार लेते, माने फिर उससे गुरुतर किसी भी हमको जो है लक्ष्य को दिखाया जाए लेकिन उसे वो स्वीकार नहीं करता, जैसे नचकेता आदि, एक ही उसका लक्ष्य, वही उसे ही वो सर्वश्रेष्ठ मानता है, और फिर उससे हटता नहीं, फिर विचलित नहीं होता, ये संकेत किया। तो अब जो है इस प्रकार से ये तुरी शब्द जो कहा, ये तुरी क्या है, तो पूर्ण का वाचक, अर्थात पूर्ण का वाचक माने उसके अंतर्गत कभी भी न्यूनाधिकता होती ही, सदा एक रस रहने वाला है, एक रूप रहने वाला, और वहां पर दूसरा कुछ और है भी नहीं। लेकिन इसका अनुभव होगा कब, तो कहने लगे तीनों का त्याग हो गया। जब तक तीनों का त्याग हम नहीं कर पाते हैं, तब तक अन्य तुम कुछ त्यागो या न त्यागो, किसका त्याग कर दो, ये जो हमारी अवस्था की मान्यता है, इस मान्यता का ही हम यह त्याग कर सकें, इसको ही हम देख सकें। अब हम सुनते तो रहते हैं, उपनिषद ने कहती परिच्छ लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, क्या कहा, कर्म चितान, कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा होने वाले जितने भी लोक हैं, लोक शब्द का अर्थ है वहां लोक्यते भुज्यते इति लोक, जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसको हम जानते हैं, वो क्या कहलाता है, का लोक। तो जिसे हम जान रहे हैं, जो हमारा जानने का विषय है, और उस विषय का हम उपयोग कर रहे हैं, वो सब क्या है, लोक। और ये सब लोक कैसे हैं, का कर्म से होने वाले, और कर्म से होने वाले जितने भी लोक हैं, वो सारे के सारे लोक कैसे हैं, का इसका परीक्षण करो, परीक्षण करो, और परीक्षण करोगे तो तब क्या अर्थ निकलेगा, तब कहोगे संसार कैसा है, का दुखालयम, लेकिन भूल जाना, हम ये समझ लेते हैं कि संसार दुख रूप है, वास्तव में संसार दुख रूप भी नहीं है और सुख रूप भी नहीं। लेकिन फिर भगवान ने क्यों कहा, भगवान की वाणी क्या सत्य नहीं? लेकिन भगवान ने क्या कहा आगे, उस पर हमारा ध्यान। क्यों दुखालय कह दिया? अशाश्वतम। भाई कोई व्यक्ति अशाश्वतम, जिसकी सत्ता है ही नहीं, और जिसकी सत्ता नहीं उसकी सत्ता को स्वीकार करेगा तो भ्रमित होकर के दुखी ही तो होगा। मृग तृष्णा के जल की चर्चा करते हो, और आपने जल समझ लिया और प्यास बुझाने के लिए भाग के जाओगे तो क्या मिलेगा? प्यास तो बुझेगी नहीं, किंतु परिश्रम और हो जाएगा, उससे क्लांतता दुखी और होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही माने केवल भगवान ये नहीं कहते कि संसार दुख रूप है, संसार वास्तव में न दुख रूप है न सुख रूप है, क्योंकि संसार की सत्ता अशाश्वत है, और इसलिए न वो दुख रूप है और न सुख। तो सुख रूप और दुख रूप क्या है? बड़ी विलक्षण बात कह दी। इसलिए वाल्मीकि जी ने जो रामायण में कहा, क्या सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, ये संसार में ही तो कहा, सुखस्य दुखस्य न कोपि परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। क्या मतलब? कोई भी हम जिसे समझते हैं सुख है, लेकिन सुख कब है? पदार्थ सुख रूप नहीं है, पदार्थ में सुख नहीं है, सुख किसमें? जब हमारी धारणा उस पदार्थ में बनती है और उस धारणा के अनुकूल पदार्थ हमको जब प्रतीत होता है तो वो हमें सुखद लगता, और हमारी जो धारणा बनी, हमारी जो मान्यता थी, उसके अनुकूल वह पदार्थ जो है प्रतीत नहीं हो पाया तो वही हमारे लिए क्या हो गया? दुख रूप। लोग कहते हैं है? पहले पहले बच्चे की शादी होके आती है तो सासू बड़ी प्रसन्न होती, उत्सव मनाती, लेकिन कुछ काल जब रह लेती और रह करके सासू ने जो अपनी मान्यता बना रखी थी, और यदि उसकी मान्यता की पूर्ति नहीं होती है तो क्या कहती है? कहा ये दुख रूप है, इसने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया, अब आप जाकर। सासू तो ये कहती, और उसका पति कहता है कि अब हम बड़े सुखी हैं, ठीक है। तो अब विचार ये करो कि उस में सुख है कि दुख है? तो क्या कहोगे? अरे भाई हमने बढ़िया है राजभोग लाए और बटवा दिया सब, और बटवा दिया, सबसे पूछा कैसा लगा तो सब क्या कहेंगे? अच्छा लगा, मीठा लगा, मतलब मीठा मूल उद्देश्य, तो मीठा की कहेंगे। ये तो कोई नहीं कहेगा कि खट्टा लगा, न ये कोई कहेगा कि नमकीन लगा। तो अब वो पदार्थ जब इतनी मिठास से युक्त है, मिठास धर्म उसके अंतर्गत है, तो सबको कैसा लगेगा? कोई भी खाए क्यों ना, सबको मीठा ही लगेगा ना। लेकिन अब यहां पर यदि उसके अंदर सुख विद्यमान है तो सारे परिवार को ये सुख मिलना चाहिए, यदि दुख विद्यमान है तो सारे परिवार को दुख मिलना चाहिए। एक कहता हमें सुखी सुख हो रहा है, दूसरा कहता हमें दुख हो रहा है, तो ये क्यों? तो उस पदार्थ में सुख और दुख नहीं, पदार्थ का तो जो स्वभाव है वही सबको मिलेगा। यदि मीठा है तो मीठा लगे, अब वो बात अलग है, है? कहते ना गुड़मार बूटी, माने उस गुड़ की प्रतिबंध का बूटी यदि तुम्हारे जिह्वा में विद्यमान है, मुख में विद्यमान है, तो क्या होगा? वो मीठा नहीं लगेगा, कड़वा भी लग सकता। क्या वो चीटी का दृष्टांत देते हैं, नमक की डेली डाले हुए तो उसे मिश्री भी कैसी लगती है? नमकीन लगी। तो अब जो है वो नमकीनता या वो कड़वाहट क्यों आ रही? कहने लगे वह पदार्थ तुम्हारे अंदर पड़ा है, वो पदार्थ ही वो तुमको क्या दे रहा है? कड़वापन दे रहा है, और वही नमकीन। इसी प्रकार से आपकी जो हृदयगत मान्यता, हृदय में जो नक्शा बना हुआ है, सारे पदार्थों में हम पहले ही नक्शा बना लेते हैं, सारी अपेक्षाएं हम पहले ही कल्पित कर लेते हैं, ऐसा हो तो उसे सुख मान लेते, और वैसा यदि न हो तुम्हारी कल्पना के अनुसार तो वही दुखद हो जाता। तो पदार्थ संसार का न दुख रूप है न सुख रूप है, सुख और दुख रूप क्या है? हमारे अंतःकरण की बुद्धि ने जैसा निर्णय लिया है भाई, इसीलिए कह दिया उन्होंने। कितना सुंदर शब्द कहा कि सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता, सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, किंतु कौन है? तो कहने लगी है, हमारी बुद्धि। अहं करोमि वृथाभिमान, और इसी प्रकार से हमने जो अहंकार कर लिया, किसमें कर लिया? कहा ये नक्शा बनाती कौन है? बुद्धि। और बुद्धि जो बनाती है उसी बुद्धि के साथ अहंकार कर लिया। क्या अहंकार कर लिया? यही स्टेशन मैं हूं, जागृति ही मैं हूं। और जब ये अहंकार कर लिया तो सुखी दुखी हो गए। ऐसे ही स्वप्नगत में जो अहंकार होता तो स्वप्न का दुख होता। अब बताओ, स्वप्न के अंतर्गत स्वप्न एक अवस्था है, लेकिन उस अवस्था को धारण किसने किया? एक राजा ने किया। स्वप्न एक राजा देख रहा, और राजा स्वप्न जब देख रहा है तो क्या देख रहा? कि मैं फुटपाथ का व्यक्ति हो गया। अब बताओ, वह फुटपाथ का व्यक्ति यदि हो जाए, हुआ तो नहीं है, लेकिन स्वप्न देख रहा है। अब स्वप्न के अंदर यदि जागृत का भाव आ जाए तो स्वप्न उसे दुखी कर पाएगा? जागृत का भाव यदि उसके अंतर्गत आ जाए तो वो स्वप्न दुखी उसे नहीं। तो वहां भी उसने अंतःकरण एक नया निर्मित कर लिया, और उसके अनुसार ही वो दुखी हो रहा है ना। यह कोई फटीचर जो है राजा बन जाए स्वप्न तो क्या सुख का अनुभव करेगा? लेकिन करता है। तो कैसे करता? क्योंकि वहां पर हमारे अंतःकरण की वृत्ति उससे तादात्म्य को प्राप्त। किससे तादात्म्य? कहा जो मैं नहीं हूं, जो मेरी अवस्था है, जो मेरी स्टेशन है, जो मेरी यात्रा का साधन है, उस साधन से हमने क्या कर लिया? तादात्म्य। ये सब संकेत किए। अब तब फिर कैसे समझना चाहिए? तो ये वेदांत तुम्हारी समझ में कैसे आए? देखो, संसार के अंतर्गत हम कभी जो है दो की निंदा करेंगे, दो की प्रशंसा करेंगे। कभी कहेंगे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, धर्म है, इसी में चलना चाहिए। लेकिन धर्म और मोक्ष भी बगैर अर्थ काम के सिद्ध होने वाला अब जो है चारों की उपयोगिता है, लेकिन उपयोगिता जो है वो उपयोगिता अवध्यात्मक है, सर्वथा चारों की उपयोगिता नहीं, लेकिन एक सीमा तक, एक अवधि तक चारों की उपयोगिता है। तो अब जहां तक उनकी उपयोगिता है वहीं तक उनका विनियोजन होना चाहिए। इस विनियोजन की शैली को भी बतलाया गया। आप भागवत को भक्ति का ग्रंथ कहते, लेकिन भागवत केवल भक्ति का ग्रंथ नहीं, भागवत में वेदांत रहस्य भी है, भागवत के अंतर्गत भी सब कुछ दिया हुआ। क्यों? पुराण जो है ही इसके लिए। पुरा अनीति पुराणम, जो हमारी प्राचीनता को अनुप्राणित करते हैं उनका नाम है पुराण। जो हमारी प्राचीनता है तो वो पूर्व शब्द जो क्या, तो प्राचीनता जो हमारी है उस प्राचीनता को अनुप्राणित करने वाला जो है वो पुराण, उसे जीवित रखने वाला। तो भागवत में विनियोजन बतलाया किसका? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। क्या बतलाया? वहां संकेत किया, धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थायोप कल्पते न अर्थस्य धर्मै कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता और जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यस्चेह कर्म भी। क्या अर्थ है इसका? चारों पुरुषार्थों की वहां चर्चा और विनियोजन बतलाया। का धर्मस्य ही अपवर्गस्य, कहा धर्म रूपी पुरुषार्थ हमारे जीवन में हो। कहा क्यों हो? क्या आवश्यकता है इस धर्म की? कहा इसके द्वारा अपवर्ग की प्राप्ति होगी। तो धर्म का विनियोजन हमें किसमें करना चाहिए? कहा अपवर्ग के लिए। अपवर्ग क्या है? तो अपवर्ग को बतलाते हुए क्या कहा? मोक्ष कह देते, लेकिन शब्द भी पद भी उसी हिसाब से देते शास्त्र के अंतर्गत, इसलिए पद शब्द का प्रयोग किया। वहां अपवर्ग शब्द का रूप क्या है? तो वहां बतलाया पूर्व पर का जो है ध्यान रखते हुए, तो कहने लगे न पवर्ग इति अपवर्ग। तो पवर्ग और नए समास कर दिया, तो जहां पर पवर्ग नहीं है, का पवर्ग नहीं है इसका मतलब क्या? तो पवर्ग में वर्ग में कितने वर्ण आते? पांच, प फ ब भ। तो पवर्ग नहीं है इसका तात्पर्य क्या? तब तात्पर्य बतलाया जहां पाप और पुण्य नहीं है, शुभ भी नहीं है और अशुभ भी नहीं है। पशब्द से क्या लिया? पवर्ण से, कि पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं, माने शुभ भी नहीं है और अशुभ भी नहीं। और जब न शुभ है न अशुभ है तो फल क्या होगा? आगे फ है भाई, या तो हमें अशुभ का फल मिलता है या शुभ का फल, लेकिन शुभ अशुभ है ही नहीं तो फल भी नहीं। और जब फल ही नहीं होगा तो फल होता है उसी के उपभोग को लेकर तो हम बंधित होते, जब फल ही नहीं है तो बंधन भी नहीं, और बंधन में ही तो भय है। भय कहां होता? बंधन को लेकर के ही भय। जब बंधन ही नहीं है तो भय भी कहां से होगा? और भय ही तो मृत्यु है, और जब भय नहीं है तो मृत्यु भी कहां से? ये जहां पर नहीं उसका नाम क्या है? ऐसे अपवर्ग की सर्वथा, अब जो बताओ ये जब स्थिति हो जाएगी तो दुख रहेगा उसके, तो ऐसे इस अपवर्ग की प्राप्ति के लिए हमें धर्म का विनियोजन करना चाहिए, धर्म का उपयोग करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा? जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाए, तुलसीदास ने कहा। लेकिन उसका अर्थ हम लोगों ने अपने ढंग से ही ले लिया। तुलसीदास ने तो ठीक लिखा कि सुख संपत्ति आदि कैसे प्राप्त होते हैं, किसको प्राप्त होते हैं, कहा धर्म ही स्वभाव बन गया है जिसका। लेकिन हमने वहां पर क्या कर लिया? संशोधन कर लिया। उसका सुख जो रूप था तो वो क्या सुख, उस सुख को तो हम नहीं समझे, और जो है लौकिक जो सुख संपत्ति थी उसी को हमने जो है लक्ष्य मान लिया, और उसके लिए हम धर्मात्मा बन गए। तो ये क्या हो गया?

0: और समय बहुत हो गया, चलो कल चर्चा करेंगे। हो
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन श्वेताश्वतर उपनिषद प्रेजेंटेड बाय Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: जगत के अंदर आज तुम्हारा शरीर में नहीं है, मन में नहीं है, बुद्धि में नहीं है। जगत के अंदर परिवर्तन होता है, तुम्हारे शरीर कहां से कहां आया, तुम्हारा बाल कहां से कहां आया, तुम्हारे विचार कहां से कहां तक आया, तुम्हारी बुद्धि कहां से कहां तक आ गई, तुम्हारा खान पान कहां से कहां तक आ गया। ऐसे परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है? प्रकृति का कार्य है। हाँ, द्वितीय स्थिति शक्ति ही सर्वे भाव क्षण परिणाम द्वितीय स्थिति शक्ति ही एकमात्र चैतन्य शक्ति है। इस सबका जो अधिष्ठान वो हुआ कि नहीं, अहम का बदला हुआ कि मेरा में बदला हुआ, ये बताओ मेरे को। अहम अहम में बदला, मैं लाल हूं, पीला हूं, काला हूं, ऐसा आया कभी? अहम अहम तो जैसा का वैसा है। ईश्वर भी अहम करते, आप भी अहम करते, अहम में क्या परिवर्तन हुआ? अहम मेरा में परिवर्तन हुआ, मेरा में बदलेगा। क्यों? मेरा ममाइटी। तो अहम अहम और मम ममाइटी विद्यते जंतु निर्ममाइटी विमुच्यते। अहम मुक्त करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि मुक्त करेगा, और ममाइटी बंध्यते जंतु मेरा ही बांधता है। संसार में बांधता कौन? बांधने वाला मेरा, छुड़ाने वाला अहम। कौन सा अहम? देह के साथ अहम जोड़ोगे नहीं होगा। कुटस्थ के साथ, ब्रह्म के साथ, आत्मा के साथ जो अहम जोड़ते हैं ना, अहम का तीन स्वरूप होता है, याद रखना। एक अहम परिवर्तनीय है, बनने वाला है, पतन की तरफ ले जाता है। आनी बात, एक अहम पतन की तरफ ले जाता है। तो अहम देहो हम, जब मनुष्य अपने को देह मानेगा तब पाप पुण्य करेगा, याद रखना। पाप पुण्य कब करता है? वो मैं शरीर हूं करके। जब शरीर हो तो शरीर के सुख दुख के लिए सब पाप पुण्य हम करते रहते। आनी बात, जो एक कुटस्थ में अहम होता है वो उन्नति का कारण, ऊपर ले जाने वाला है। अहम ब्रह्मास्मि मोक्ष का कारण, मुक्ति का कारण होता है। तो तीन प्रकार के अहम की प्रवृत्ति होती है। यानी बात, एक अहम होता है देह में, मैं शरीर हूं, लाल हूं, गोरा हूं, काला हूं, स्थूल हूं, दुबला हूं, पतला हूं, यानी बात मोटा हूं, तगड़ा हूं, धनी हूं, गरीब हूं। यानी बात, पापात्मा हम, पुण्यात्मा हम, धर्मात्मा हम, अधर्मात्मा हम, ये सब किसमें होता है? अहम में, देह में, देह को लेकर होता है। समझ गए ना? एक देह में, देह को लेकर ये सब होता है। आनी बात, ये देह के साथ जब हमारा अहम जुड़ जाते हैं ना, तो हमारा पतन का, गिरने का कारण होता है, स्वर्ग नरक आदि का कारण होता है। और एक अहम होता है साक्षी भाव, कुटस्थ भाव में, कुटस्थ विचार के विवेक से, देह से। उस समय वो देह, वो देह में जो अहंकार है ना, उससे थोड़ा अच्छा है, उससे भी श्रेष्ठ अहम है। कौन? ब्रह्म एव अहम, समशांत, सच्चिदानंद।

सद्रूप ज्ञानमिति उच्यते बुद्धि। क्या बोल रहे हाँ, ये देह हम में, देह में जो हम भाव है ना, इसको लेकर हम जीवित रह रहे हैं। आत्मा के रहने तो आत्मा क्या करता क्या नहीं करता हमको थोड़े देख रहा है। हम धंधा करने वाले हैं, हमारे धंधा से मतलब है हम में। हम नौकरी करने वाला, नौकरी से हमारे अहम में मतलब है, आएगी नहीं तो देह को लेकर के चलते हैं। तो आत्मा को लेकर के नहीं, आत्मा अनात्मा से छोड़ाएगा। देहादि अनात्मा है, देहादि क्या चीज है, अनात्मा है। तो अनात्मा बंधन का हेतु है, आत्मा बस मुक्ति का हेतु है, मोक्ष का हेतु है। तो आत्मा के साथ अहम को जोड़ दो और देह के साथ अहम को जोड़ दो तो देह में अहम के जोड़ देने से देहात्मा भाव होता है संसारी। भाई बाब, देह में अहम को जोड़ दोगे तो क्या बनेंगे, देहो हम, हाँ स्थूलो हम, कृशो हम, गोरो हम, खंजो हम, बधिरो हम, काणो हम, ये सब क्या चीज है, देह का धर्म। ये सब के साथ देह का धर्म। तो जब तक देह के साथ हम जुड़े रहेगा तब तक जीव बंधन में है, और देह से हमको छुड़ा करके जीव में ले जाओ, कर्ता भोक्ता में ले जाओ। अभी देखो, जब जीव में ले जाओगे, जीव हो हाँ, मैं करता हूं भोक्ता हूं, तो कर्ता भोक्ता जो है ना शुभ अशुभ कर्म करेगा, तो शुभ कर्म करने वाला जानता है कि शरीर स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। स्वर्ग में जाने वाला कौन, जीवात्मा। तो जीवात्मा स्वर्ग में कब जाएगा, मरने के बाद जाएगा, स्वर्ग में जाएगा मरने के बाद। कौन सा जीवात्मा स्वर्ग में जाएगा, इसमें आएगा अब अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाला, इष्ट और पूर्त कर्म करने वाला, इष्ट कर्म पूर्त कर्म। तो ये कर्म करने वाला जाएगा, जानता है कि ये शरीर जाएगा नहीं, तो इसीलिए अच्छा कर्म करेगा स्वर्ग आदि में जाने के लिए। और एक अहम होता है क्या, कर्तापन से भुक्तापन से छुटकारा पाता है। नाम कर्ता नाम भुक्ता अहम जीवा हा। तो जीव कहाँ जाएगा हा? तो मैं जो है ना अहंकार को यहां से छुड़ा करके अभ्यास में लगाएगा, आत्मा अभ्यास में लगाएगा, आत्मा आत्मरति आत्मा क्रीडक में लगाएगा, आत्मा मिथुन आत्मा आराम इसमें लगाएगा। तो अहम को जोड़ने का, अहम को लगाने का भिन्न भिन्न रास्ता है। देहाद में लगाओगे तो क्या फल मिलेगा, जीव में लगाओगे क्या फल मिलेगा, और आत्मा में लगाओगे क्या फल मिलेगा। कभी अहम को कुटस्थ में लगाओगे, ब्रह्म में लगाओगे, है नहीं बात, तो क्या होगा, मोक्ष मिलेगा। बात यह है, बात यह है, देखो रास्ता जो है ना, आप बीच में खड़े हो, चौराहे पर खड़े हो, रास्ता इधर एक बद्रीनाथ के लिए गया है, एक जो है ना स्वर्ग में के गया है, एक नरक में गया है, एक ब्रह्मलोक में गया है, चौराहे पर खड़े हो, किधर जाने का वहां लिखा हुआ है, किधर जाने का है, और जाना है ब्रह्मलोक में, और रास्ता पकड़ लिया आपने शिवलोक के, तो कैसे पहुंचोगे। आप कहोगे कि हम व्यवहार भी चाहे और मोक्ष भी चाहे, दोनों एक साथ नहीं होता है। किधर जाना चाहते हो आपको निर्णय करना पड़ेगा। क्यों लिखा है विवेक वैराग्य सरस्वती मोक्ष आदि, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, साधक के लिए लिखा है कि नहीं, तो हम कौन सा साधन करना